जो जोर उसके नाम नहीं आवे बारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खवा सुचे नाखिये वैन पिंडा धोए सुचे सही नानका जिन मन वसया सोए पड़ी।

आस पास उस पास डिजाएंगे केत नाप बीजे आस पास को करेंगे पास केत को प्रकाश होए खाए जाएंगे जल कहाँ फल कहाँ गगन तो गौन कहाँ काल के बनाए सब का।

0: हर हर मन मुठा मन मुठा मन मुठा
1: लोक महला पहला नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिकी सोए फिका दरगे सटके मोह तुका फिके पाहे फिका मूर्खा के पाना ले सजाए महला पहला
0: अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अट सरतीत जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिन्हें हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपती कर जाए परवा नहीं किसे केरी बा सचना दरवाट ऊपर कत मंगा जब देता खाई दे बान को कल में का हमा तुमा में डर ले लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पड़िया पे ही कर

0: एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आसक कांडिया साधी रहे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए आस ते होना के जली के वरते सो महला दूजा
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए नानक दोवे कुड़िया थाए न काई पाए पौड़ी
2: ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ

0: करे कनेरियां कसम ना पाए साग। आप गवाए आप गवाए सेवा करे ताकिश पाए मान। नानक जिसनो लगा दिसमिने लगा सो परवान भला दूजा।
1: जो जी होय सो गए मुह का कह बाओ बीजे बेख मंगे अमृत वेखुए न्याओ महला दूजा। नाले आने दोस्ती करे नावे रास जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वसवावे दूजी होवे पास साहिब से तीयुक न चले कहीं बने अरदा। कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिर्फ विकास महला दूजा।

एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक जापनी हर तारे पारा।

जपदाय पटले कर लकड़ी मुखे मुरली बजावट है जपदाय पटले कर लकड़ी मुखे मुरली बजावट है माखा काट लता बुजुर्ग मधुरी बाल बुलावत है रूज कर शाम सुंदर दी लकड़ी कमली पैंक पर।

मैं भगत कौराम साहब जंजी मिठड़े आवाज में कलाम दे रहे आकाशवाणी जी सिंधी सरिसा है। यह पेश है तफसरो। भारत नई दिल्ली में 26 मई 2026 ते क्वैट पढ़े वजीरन की गडजाणी कई। पढ़े मामले के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के पढ़े वजीर सुश्री पेनी वांग, जापान के पढ़े वजीर श्री तोशिमित्सु मोतेगी, अमेरिका के गृह सेक्रेटरी मेरे वजीर श्री मार्को रूबियो घणनि सियासी आलमी सियासी ए विच ओभर के मुद्दन ते गालियों कयूं। कोविड एक मुख्य मतबरी ए सुरक्षा ढांचो है जैमें चार मुख्य लोकशाही मुल्क शुमार हैं तैं में अची थो वे भारत ऑस्ट्रेलिया जापान ए अमेरिका तैंखे एक आजाद खुलल ए रिसलेंट इंडो पैसिफिक इलाके लिए बर्पा किया वो यह ग्रुप घणनि समूरी सुरक्षा के मुद्दन क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स ए माहौल में ईंदड़ तब्दीली जड़न मुद्दन ते पान में गडजाणी कन्दी है। संदस ढांचो जो है सुगराणी गडियल कम कर ग्रुप में कम करे तो जैमें उभरद टेक्नोलॉजीज साइबर सुरक्षा ए कुदरती आपदान वक्त राहत दियण वा मुद्दा अची था वन वेझो वार साल में क्वैड घणी सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू कई वन तो जी इंडो पैसिफिक में पेश पवंदड़ ललकार के दूर किया वे खास कर सामूरी सुरक्षा बुनियादी ढांचे के वधायण ए इलाकई गांडापो। अमेरिकी सूबाई सेक्रेटरी श्री मार्को रूबियो भारत में 23 मई ते आयो ए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कई। सेक्रेटरी रूबियो प्रधानमंत्री के घणनि मानिकताओं में थियल वाधारे ते अपडेट कर अची थे बचाव हिकमत अमली टेक्नोलॉजी व्यापार ए सीड़प तवान सुरक्षा गांडापो तैलीम ए मान जहा मान सा गांडापा। सेक्रेटरी रूबियो घणनि इलाकई ए आलमी मुद्दन ते अमेरिका के वीचार के वंडियो तैं में अची थो वे ओल एशिया में हालतू। प्रधानमंत्री भारत के लगातार बीह के दौरा त अमन वार्ता में भारत की हिमायत है हिंदर दौरा तकरार के गाल मतबरी जरिए दूर कर सकजे थो। प्रधानमंत्री सदर ट्रंप के पैंजे पुरजोश वधाई दिनों अजा तो साण अगते डी रो है। श्री रूबियो अमेरिकी सदर के नींड के प्रधानमंत्री के दिनों वॉशिंगटन डीसी की यात्रा कन। डॉक्टर जयशंकर अमेरिकी सेक्रेटरी से एक गडजाणी में ताजे पैंजे कैरिबियन यात्रा जा इम्प्रेशंस वंडिया। नारन में नारवारन वाधारन ते यूक्रेन तकरार ते पण मुआवज़ो रहो। पढ़े मामले के वजीर श्री रूबियो के बुधाया तो जिते बचाव ए सुरक्षा तावन है उते 10 साल की मुख्य बचाव भाईवारी ढांचे के ताजे अमल में आंदो वो है। पानी अंदर एक वसीय डोमिन अवेयरनेस रोडमैप के तैयार किया है जैसे बिन्हीं मुल्क सही कई बिन्हीं अगवान मेक इन इंडिया ते गाल इन अलावा ताजन हलन तकरार से पिण गाल माशी फ्रंट ते डॉक्टर जयशंकर श्री रूबियो जल्दी एक आरजी तक करार से पहुंचने से गाल जो बिन्हीं फायदेमंद थी दो। भारत अमेरिका तवाने मुद्दन से पण गाल भारतीय सरकार की यह बुनियादी जिम्मेवारी है 104 बिलियन पैंजे आदमशुमारी के घुर्जन के पूरा करे खेन पांच अंदर तवानाई जो लंग मैसर कराण सरकार जो मुख्य मकसद है। डॉक्टर जयशंकर

Secretary Rubio, and at the same time, ताज़े तमाने व्यापार जी सराह कई और जी आज्ञा कई एमपी सुबाई सेक्रेटरी मार्को रूबियो बैन नोता क्वेड अत्तर दी रहा है एन एक ठोस कार्रवाई कर रहा है और जो तो गुजरे साल जी भेट में असान जी को मकसद आए सो तमाने तावन के ऑपरेशन इस करना है जापान जी पड़ी वजीर तोशिमित्सु मोतेगी इशारो ननो त क्रिटिकल मिनरल्स से तावन खास करे ग्रीन तवानाइस एंड हाईटेक इंडस्ट्री ते तावन लाजमी आहे समस्यान भारत जापान ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जे क्वाड पाड़ी वजीरन जे गडजाणी ते हो ऑस्ट्रेलिया जे पाड़ी वजीर सुश्री पेनी वांग जाचो त ग्रुप अॼुकल्ह जेको आहे टेंजिबल आउटकम्स से डिलीवर कर रही है इनका अलावा एक आजाद खुलल दायम इंडो पैसिफिक पे पिण कम कर रही है तफसर बुधी रहा हुआ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ से। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। एशियन फिल्म लग मां आगाज कर रहे हैं राम पंजवाणी जी आवास में झूलेलाल उत्सवी सां।

बड़ी घोड़ा घोड़ा छा करूंगी, तो तुम पाकर बड़ी।

काफी मिनट मई आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे खास खास खबरों भारत चीन पाकिस्तान गडियल बयान में जम्मू कश्मीर ना अनवॉरंटेड रेफरेंस के थोड़ी छड़ो आए क्वाड मुल्कन इंडो पैसिफिक सामुंडी सर्विलेंस कोलैबोरेशन ने तावन के शुरू किया है दहशत अंग्रेज की हर रूप ए हर मैनिफेस्टो में निंदा कई है भारत ए अमेरिका मुख्य इकोनॉमिक सही कई जैसा सप्लाई माइनिंग एंड प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के सगारो बनाया वो रांदन के वजीर मनसुख मांडविया इंदड़ ओलंपिक रांदन में योग आसन के हिमायत दिनी है जो इंदड़ महीने अहमदाबाद में पहली वर्ल्ड योग आसन चैंपियनशिप थियण वाली है एशियन अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में वियतनाम में इंडियन ग्रैपलर्स मोहित कुमार ए चंद्र मोहन मेन्स फ्री स्टाइल वाकई में सोने जा बिल्ला हासिल कया

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधर असंजे प्रोग्राम जो वक्त पड़ोसी रहा है वरी अवं सा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे तेसी तक इजाजत सदाई गड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं।

0: reducing barriers to trade, tariffs, and non-tariff. It will open up a plethora of investment opportunities, but more significantly, will be the messaging that will go out with the free trade agreement or the comprehensive economic partnership. We will achieve a very good, fair, equitable, and balanced agreement, which will define the roadmap as the two economies power on.
1: India Meteorological Department has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. Royal Challengers Bengaluru stormed in the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 7:10 और पूरे 20 सेकंड, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत का, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे अजय कपिल द्वारा गाए भजनों का। सहयोगी कलाकार रहेंगे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी वादन विनय प्रसन्ना का, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर संगत दामोदर लाल घोष की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना अजय कपिल द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और सुबह के बज चुके हैं पूरे 7:33 और आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर। और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह की चाय कड़क होगी, मूड फ्रेश होगा, और इस गीत को सुनने के बाद आपकी जो सुबह है उसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो गया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम को, और इसके साथ ही बहुत सारी बातें भी आपसे शेयर करनी है।

आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और आप सबके लाइफ में भी ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मिलकर बातें करके आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। वैसे इसी बात पर मुझे एक बात भी याद आई है कि अक्सर हम अपने लाइफ में बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं इंसान की पहचान किस चीज से होती है? उसके व्यवहार से। आपका टैलेंट आपको ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाता, लेकिन आपका व्यवहार आपको ऊंचाई पर बनाए रख सकता है। यानी कि अगर आपके पास टैलेंट और बिहेवियर इन दोनों का मिश्रण है ना, तो फिर समझिए कि आपकी जीत पक्की है। क्योंकि कई बार आप ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपके साथ रहने वाले लोगों को आपसे दूर कर देता है। और कभी कभी हो सकता है कि आप हार गए हो, बहुत सारी मुश्किलें आपने तय करी हो, लेकिन आप हार गए हो, फिर भी क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा था, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, लोग आपको याद रखते हैं और वो आपकी हार में, आपकी जीत में हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिएगा।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के ऊपर और इसी पर मुझे एक कहानी याद आई है। हमेशा मैं आपको कोई ना कोई एक मोटिवेशनल ज्ञान या फिर एक कहानी जरूर सुनाती हूँ, तो मुझे एक कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी वो याद आई है कि एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें बहुत सारे ऑब्वियसली कर्मचारी काम करते थे, लेकिन उस कंपनी में सब में कुछ अलग सा ही ईगो था। वो लोग अपना काम करते थे, आते थे, चले जाते थे, एक अलग ही एटीट्यूड में रहते थे। लेकिन वहां पर काम करने वाले एक पियोन थे और उनका नाम था रामू काका। उनका बिहेवियर सबसे अलग था। वो जब भी जाते थे तो वहां पर एक गार्ड बैठते थे, उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, हमेशा उनको आते वक्त गुड मॉर्निंग बोलते थे, जाते वक्त बाय बोलते थे, अगले दिन मिलने का वादा करते थे और बहुत ही प्यार से वो सबके साथ रहते थे। उनका बिहेवियर उनको सबको ही बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि जो कंपनी थी वो जब शाम को जब शिफ्ट खत्म हुई तो फिर गार्ड जो है वो घबरा गया और भागता हुआ वो अंदर गया, तो सीधे मालिक के कमरे में चला गया और मालिक से बोला कि सर, रामू काका अभी तक लगता है ऑफिस से गए नहीं है, सब लोग निकल गए हैं, मुझे डर लग रहा है उनके लिए। तो कंपनी के मालिक ने बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, सब जा चुके हैं, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, तुम्हें क्या पता वो चले गए कि वो हैं। उसने कहा नहीं सर, वो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी आदत है सुबह आकर मुझे राम राम कहने की और जाते वक्त मुझसे बाय कहने की और अगले दिन मिलने का वादा करने की। उनका ये व्यवहार ही तो है जिसकी वजह से मैं हमेशा उनको मिस करता हूँ और मुझे पता है कि वो भी नहीं गए हैं, अगर वो जाते तो मुझे बाय करके जरूर जाते। ये सुनने के बाद कंपनी के मालिक ने खोजबीन शुरू करी और सच में उस गार्ड की बात बिल्कुल सच में, बेसमेंट में रामू काका फंस गए थे और वहां पर वो पाए गए बेहोशी की हालत में। उन्हें बाहर लाया गया और आप जरा सोचिए उनकी जान बच गई। उनकी जान क्यों बची? क्या उस गार्ड की वजह से? नहीं, उनकी जान बची उनके व्यवहार की वजह से, क्योंकि उन्होंने सबसे इतना अच्छा ताल्लुकात बनाए, इतने प्यार से सबसे मिलते थे, अपने मीठे व्यवहार की वजह से उन्होंने गार्ड के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उसे एहसास हो गया कि वो नहीं गए हैं और उसने उनकी

दोस्तों आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये तय करता है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए इज्जत कमाना सीखिए और अब जब भी अपने घर से निकले तो अपने से छोटे हों या बड़े हों, हर किसी को एक प्यारी सी मुस्कान और सम्मान जरूर दीजिएगा। यकीन मानिए, आप हो सकता है उनके घर में जगह न बना सके पर उनके दिल में जगह जरूर बना लेंगे और वो आपको हमेशा याद रखेंगे।

जी हाँ, मोहब्बत ही तो मोहब्बत से पुकार सकती है, यानी कि जो इंसान दूसरों से, खुद से, हर किसी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, पसंद करता है, और सबसे बड़ी चीज है कि जो लोगों का भला सोचता है, अच्छा सोचता है, वही तो पुकार सकता है इस तरह से। तो आप भी अपने दिल में मोहब्बत को बसाइए और लोगों से अच्छा व्यवहार बनाइए, क्योंकि ताकत जो है वो डर पैदा कर सकती है, लेकिन दिल जीतने हैं तो फिर अच्छा व्यवहार तो चाहिए ना।

और दोस्तों अब इस गीत के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत को बसाएंगे, यानी कि अच्छे व्यवहार का पालन करेंगे और खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो फिर गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसंख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
6: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
0: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
3: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
0: अमेरिका के वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
3: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है।

0: दस डब्बों वाली डीईएमयू रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरल में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल्स राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रूपये प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और आईपीएल

0: nuclear sector has undergone reform which would grow through nuclear energy. Our teams have been in discussion on critical minerals as well. Our defense exchange and exercises again have been taking place. Our maritime cooperation has been the centerpiece of that. We've had some talks on space cooperation.
1: NASA has released details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to the moon as part of the US plans to build a lunar base. Amazon founder Jeff Bezos' space company Blue Origin is one of the several companies picked to build the machines. The US wants to land Americans back on the moon before President Donald Trump leaves office in 2028. But NASA is competing with China to return humans to the lunar surface, meaning the space agency is under pressure to appear to be winning the new space race. China is forging ahead with its own plans to land humans on the moon by 2030. Yesterday, it launched its Shenzhou 23 spacecraft, sending a crew of astronauts to the country's Tiangong space station. Royal Challengers Bengaluru stormed into the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs set by Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans were all out for 162 with three balls to spare. Rahul Tevatia was the top scorer with 68 runs. For Royal Challengers Bengaluru, Jacob Duffy scaled 33 wickets, while Bhuvaneshwar Kumar, Razik Salamdar and Krunal Pandya took 2 wickets each. Earlier, Gujarat Titans won the toss and elected to field. Put into bat, Royal Challengers Bengaluru posted a massive 254 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Rajat Patidar top scored with an unbeaten 93 runs of 33 balls. Virat Kohli and Krunal Pandya added 43 runs each. For Gujarat Titans, Kagiso Rabada and Jason Holder took 2 wickets each. Rajat Patidar was adjudged the player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator in New Chandigarh, Mohali at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
2: Thank you, Pramod. Quad announces energy initiative, Fiji Port Project, headlines the Hindustan Times. While the Tribune headlines, committed to free and open Indo-Pacific, Quad unveils energy security initiative. And the Asian Age headlines, Quad unveils 4 key initiatives, expands energy, maritime ties. Another major story covered in most newspapers is the U.S. self-defense strikes casting shadow on Iran peace talks. The Asian Age headlines, talks under strain as U.S. strikes Iran, Tehran to retaliate. While the Tribune headlines, deal to end war may take a few days, says Rubio as U.S. strikes Iran again. The government forming panel on demographic changes caused due to infiltration is also a major story covered on the front page of most newspapers. The Times of India headlines, government panel to examine demographic changes. And the Hindu says, panel set up to study demographic change. The Indian Express headlines, HDFC Bank camouflaged crores as marketing spent to pay higher interest to state firm. The paper adds that violating RBI and bank norms, 45 crore extra interest was paid to Maharashtra State Road Development Corporation as sponsorship for road safety drive. The Indian Express in its editorial titled India First Can Converge with America First writes that against the backdrop of an uneasy phase in India-US relations over the past year or so, US Secretary Marco Rubio's visit to India signaled reassurance to New Delhi that Washington remains committed to a long-term strategic partnership. During his joint press conference with Rubio, Indian Foreign Minister Jaishankar acknowledged that the Trump administration has been forthright about pursuing an America First policy and said that Delhi too is guided by an India First approach. Convergence of interests may sustain cooperation, but India's standing in a fractured world will ultimately rest on the strength it builds at home, the paper concludes. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive division of electoral rolls. CBSC rejects claims circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heatwave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफवर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स 1 डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमन व कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
3: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रा वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आजादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये कुछ पेठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर जरूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
2: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी एसआईआर के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से एसआईआर के अमल के कानूनी जवाब को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का ये अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत چناؤ کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز کرتا ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ نے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ایس آئی آر عمل سے متاثر ہونے والے رائے دہندگان کی مشکلات دور کرنے اور شفافیت کو

0: नजर रेड अलर्ट जारी किया है और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकंड, और आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे राजपाल सिंह द्वारा गायन का राग बसंत मुखारी। तबले पर संगत रहेगी जुहीब अहमद खान की और हारमोनियम पर कौशिक मित्रा।

0: शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग बसंत मुखारी में गायन। कलाकार थे राजपाल सिंह। आपके साथ तबले पर संगत करी थी जुहेब अहमद खान ने और हारमोनियम पर कौशिक मित्रा ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: वेलकम टू साइंस मैगजीन। आकाशवाणी सेलिब्रेट्स 90 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंडियाज वॉइस टू नेशन एंड वर्ल्ड।

अलग कर दिखाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहर।

वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं, जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर को मस्कुरा कमेटी की सदारत सौंपी गई है। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉ शामिका रवि को कमेटी के मेम्बरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स वन डिवीजन के ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुदमुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी एसआईआर के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्याकांत और जस्टिस जयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कुरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवायल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से एसआईआर के अमल के कानूनी जवाज को यह दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का यह अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में एसआईआर अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने यह वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नजरसानी के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ यूआरएल cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकरीब तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्चिडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्चिडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हमनसब पेनी वोंग के साथ 17वीं वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की।
ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل، مغربی ایشیا کی صورتحال اور دیگر علاقائی

डॉक्टर अंजलि अपनी बेटी की शादी में मसरूफ है। सारे घर को रोशनी से जगमगा दिया गया है। मेहमान आने शुरू हो गए हैं, बारात भी आने वाली है, लेकिन अंजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो बार बार कभी खड़ी तो कभी मेन गेट की तरफ देखती है। अब तक तो शकील को आ जाना चाहिए था, आखिर आज उसे अपना फर्ज जो पूरा करना है। इतने सालों तक अंजलि अकेले ही शीना की परवरिश करती आई है। उसने शीना को मां और बाप दोनों का प्यार दिया। कुछ सोचते अंजलि अपनी माजी में खो गई। डॉक्टर अंजलि की शादी शकील से हुई थी। शकील का अपना कारोबार था, जबकि अंजलि एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। शादी के बाद शुरू के दिनों में शकील अंजलि से बेपनाह मोहब्बत करता। दोनों खूब मौज मस्ती करते।

0: शकील, नाश्ता तैयार कर दिया, अब खा लेना प्लीज। मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया है।
1: अरे अरे, इतनी जल्दी? अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा, थोड़ी देर रुक जाओ ना।
0: अरे मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ, अस्पताल पहुँचने में जरा सी भी देर हुई नहीं कि मरीजों की लंबी कतार लग जाएगी।
1: तुम्हारे साथ यही तो मुसीबत है, हमेशा वक्त की पाबंदी। अब हमें देखो, जब चाहे ऑफिस जाएं।
0: अच्छा जी।
1: नहीं भी गए तो घर बैठे टेलीफोन पर मुलाजिमों को हुक्म दे दिया।
0: अरे तुमने एक डॉक्टर से शादी की है, इतना खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा।
1: ठीक है ठीक है, तुम्हारा ये सितम भी सह लेंगे। हाँ। लेकिन हाँ, शाम को वक्त पर आ जाना।
0: क्यों?
1: एक दावत में चलेंगे।
0: अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
1: अच्छा बाय।
0: ओके।
2: शाम को अंजलि ड्यूटी ऑफ होने पर घर के लिए निकल ही रही थी कि एक इमरजेंसी केस आ गया। उधर शकील अंजलि का इंतजार करने के बाद अकेला ही दावत पर चला गया। देर रात जब अंजलि घर वापस आई तो शकील मुंह फुलाए बैठा था। अब तो रोज का यही सिलसिला चल पड़ा। अंजलि की मसरूफियत बढ़ती गई, वो सीनियर डॉक्टर जो बन गई थी। रूटीन ड्यूटी के अलावा उसे इमरजेंसी केसों से भी बावस्ता होना पड़ता। अब तो घर में उसे दो पल की भी फुर्सत नहीं मिलती। इससे शकील की परेशानी बढ़ने लगी। उसे अपने कारोबार बेशुमार दौलत पर गुरूर होने लगा। वो अंजलि की मामूली सी नौकरी का मजाक उड़ाता। अंजलि बेचारी आंसू के घूंट पीकर रह जाती। उसकी इस खामोशी से शकील का हौसला बढ़ गया और उसकी अय्याशी और बढ़ गई। उसने घर में ही महफिल जमानी शुरू कर दी।

0: ये सब क्या है?
1: मैं अपना बिजनेस डील कर रहा हूँ।
0: ये कैसा बिजनेस है? घर को तुमने क्लब बना रखा है।
1: ये सब मेरी बिजनेस पार्टनर थी। तुम भी तो अस्पताल में डॉक्टरों के साथ घिरी रहती हो। मैंने तो कभी टोका नहीं।
0: तुम मुझ पर शक कर रहे हो?
1: शक तो तुम कर रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तुम दिन भर अस्पताल में मसरूफ रहती हो। हाँ। मरीजों के बीच रहकर तुम्हारी जिंदगी भी ना मरीज सी बन गई है।
0: और तुम्हारी जिंदगी
1: पूरे ऐश में गुजर रही है। मेरे जहन में कोई टेंशन नहीं है। ये क्या बात हुई कि सारा दिन काम में जुटे रहो, अपने लिए वक्त भी ना निकाल सको?
0: इसका मतलब ये भी तो नहीं कि हमेशा अय्याशी में डूबे रहे? बस मैं अब ऐसे माहौल में नहीं रह पाऊंगी।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तुम चाहती हो मैं घर में बैठकर तुम्हारा इंतजार करूं? कब तुम आओ, कब तुम खाना बनाकर खिलाओ?
0: आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं? नहीं, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा।
1: मेरे पास बेशुमार दौलत है, बहुत बड़ा कारोबार है। तुम चाहो तो घर बैठकर पूरा ऐशो आराम हासिल कर सकती हो।
0: तुम्हें मुबारक हो ये ऐशो आराम। दूसरों की तिमारदारी करके मुझे जो सुकून मिलता है वो इस ऐशो आराम में नहीं मिलेगा शकील।
1: तो फिर लगी रहो तिमारदारी करने में। मेरे पास जो दौलत है उससे मैं हर खुशी खरीद सकता हूँ।
0: तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत गुमान है, लेकिन मैं तुम्हारी सेहत तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ।
1: तुम फिर अपनी डॉक्टरी नसीहतें देने लगी?
0: अरे और कुछ नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो।
1: मैं सिर्फ आज में जीता हूँ, आज में, समझी? कल क्या होगा मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: शकील अभी भी संभल जाओ वरना बहुत पछताओगे।
2: लेकिन शकील के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई, उसकी अय्याशी बढ़ती गई। अंजलि से उसकी रोज तकरार होती, फिर तो शकील हाथापाई भी करने लगा। आखिर अंजलि ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया।

इस दौरान शकील की कोई खबर नहीं आई। अंजलि ने सब कुछ भुलाकर अपनी नई दुनिया में कदम रख लिया। वो अपनी बेटी शीना की परवरिश करने लगी। वक्त बीतता गया, माँ बेटी दोनों सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती गई। जहां अंजलि बहुत बड़ी माहिरीन डॉक्टर बन गई थी, वहीं शीना अपनी तालीम पूरी कर कॉलेज में प्रोफेसर बन गई थी। एक दिन अंजलि अस्पताल में स्पेशल वार्ड का मुआयना कर रही थी तो एक केबिन में से उदास सी आवाज सुनाई दी।

0: ये तो शकील की आवाज थी। उसने केबिन के अंदर झांक कर देखा तो एक पतला दुबला बड़ी हुई दाढ़ी मैले कुचले कपड़ों में शख्स दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो वाकई वो शकील ही था। अपने चैम्बर में आकर उसने उस केबिन के डॉक्टर को तलब किया। उस मरीज की सारी केस हिस्ट्री सुनकर अंजलि तो जैसे एक बार की कांप गई। शकील को इतनी मुजीर बीमारी और वो भी आखिरी मुकाम पर, उस डॉक्टर ने तो पूरी उम्मीद छोड़ दी है। अंजलि सोचने लगी, आखिर ऐसे शख्स का यही अंजाम होना था। ऐसे लोगों को तो इससे भी बदतर मौत आनी चाहिए। दूसरी तरफ उसके जहन में डॉक्टर का फर्ज याद आ गया। मरीज जो भी हो, जैसा भी हो, डॉक्टर का फर्ज उसकी जान बचाना है। आखिर अंजलि ने शकील का इलाज शुरू कर ही दिया। लंबी जद्दोजहद के बाद ऑपरेशन कामयाब हुआ और शकील मौत के मुंह से वापस आ गया।
1: अब तुम ठीक हो जाओगे शकील, तुम्हें दोबारा जिंदगी मिली है।
2: कौन? ओह, डॉक्टर अंजलि, तुम?
1: हाँ।
2: मुझे माफ कर दो। हाँ? मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। देखो मुझे मेरे किए की क्या सजा मिली।
1: शकील, तुमने तो अपने आप को खत्म किया है।
2: सिर्फ जिस्म ही नहीं, मैं अपना सब कुछ गवा बैठा। दौलत, कारोबार, शान और शौकत, अपने बेगाने

0: सब मुझसे दूर हो गए। अपनी बददिमागी की वजह से मैं सभी कुछ खोता गया, मैं बर्बाद हो गया। अनिल,
1: तुम्हें अपनी बेशुमार दौलत का गुमान था ना?
0: सचमुच मैं अंधा हो गया था। तुमने घर छोड़ दिया तो मैं और दलदल में फंसता चला गया। मेरा कारोबार ठप हो गया, दौलत गई तो लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मैं अकेला रह गया।
1: खुदा का शुक्र है तुम आखिरी वक्त पर मेरे ही अस्पताल में आ पहुंचे, वरना तुम तो खत्म हो चुके थे।
0: मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।
1: मैंने डॉक्टर की हैसियत से अपना फर्ज पूरा किया। हाँ, अब तुम्हें भी अपना एक फर्ज अदा करना होगा। चंद रोज बाद मेरी बेटी की शादी है।
0: ओ, हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई?
1: हाँ।
0: मैं समझ गया तुम क्या चाहती हो। मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगा, जरूर।
2: बैंड बाजों की तेज आवाज सुनकर अंजलि वापस अपनी हकीकी दुनिया में आ गई। बारात आ चुकी है। सामने देखा तो शकील खड़ा था। अंजलि ने दुल्हन बनी अपनी बेटी से शकील को मिलाया। बाप बेटे के पहले मिलन से तीनों की आंखों में से आंसू बहने लगे। और फिर शादी की सारी रस्मों को पूरा कर शकील ने अपनी बेटी को रुखसत किया।

नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह।

0: अच्छा
1: अब आप कहाँ जा रहे हैं?
0: मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब मैं वापस।
1: बाप का फर्ज तो अदा कर दिया, बीवी को क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। नहीं शकील, आप मैं आपको मनमानी नहीं करने दूंगी।
0: बस अंजलि बस, मुझे और ताने मत दो, ये जिंदगी अब तुम्हारी दी हुई है।
1: इसीलिए अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती।
0: सचमुच अंजलि, तुम बहुत अजीम हो, बहुत बड़े दिवाली हो।

अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी जिसका उन्वान था फर्ज। तहरीर थी जनाब जितेंद्र पाल सिंह की और पेशकश पी एस फरीदी की थी। डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: जवां मोहब्बत फिल्म का नगमा आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। प्रोग्राम की अगली पेशकश शहनाई फिल्म से है।
1: जुल्फ से पानी।

आशु भोसले की आवाज में ये नगमा हमने आपको सुनवाया। फिल्म का नाम था हम सब चोर हैं। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर।

20 साल बाद फिल्म का नगमा अभी आपने सुना है हेमंत कुमार की आवाज में। मेरी पसंद प्रोग्राम आकाशवाणी की उर्दू सर्विस एयर कर रही है। अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राजकुमार।

रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा हमने आपको सुनवाया नाइट इन लंदन फिल्म से। अब सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम है अनुपमा।

मुलजिम फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इसके साथ ही आज का मेरी पसंद का ये शुमारा यही इख्तिताम पज़ीर हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। अब सुनिए ख्वाब और धुंध, इस उन्वान के तहत जुबैर रिज़वी की पेशकश।

0: शांति
1: जी,
0: तुम्हें आज ये सब कुछ कैसा लग रहा है?
1: बेहद खूबसूरत।
0: ये आज तुम्हें शादी का जोड़ा पहनने का ख्याल कैसे आ गया?
1: बस आज जी चाहा कि मैं इस जोड़े को पहन लूं। तुम्हें भी तो ये जोड़ा बहुत पसंद है ना?
0: हाँ, तुम वाकई इन कपड़ों में बड़ी खूबसूरत लगती हो।
1: और वैसे नहीं,
0: मेरा मतलब है आज कुछ ज्यादा ही हंगामा लग रही हो।
1: हंगामा तो अब शुरू होगा।
0: हाँ, कमरा तो तुमने सजा लिया है, ये नीले पीले हरे रंग बिरंगे गुब्बारे झालरे, मगर वो अपना दूल्हा कहाँ है?
1: पड़ोस में अपने दोस्तों को अपनी सालगिरह की दावत देने गया है।
0: अच्छा अच्छा, शांति
1: जी,
0: 4 साल कैसे पलक झपकते बीत गए।
1: हाँ सच, कल ही की तो बात है, राजीव घुटनियों चलता था, तमाशा करता था,
0: और अब खूब दौड़ता है, भागता है, मजे मजे की बातें करता है।
1: मुझे तो अब उस दिन का इंतजार है जब राजीव स्कूल जाने लगेगा।
0: तुम्हारा ये ख्वाब भी जल्दी पूरा हो जाएगा। हाँ।
1: पप्पू की मम्मी तो कह रही थी पब्लिक स्कूलों में दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक तो सिफारिश हो और दूसरे चंदे में देने के लिए भारी रकम भी।
0: मुझे मालूम है कि

0: किले के लिए सिफारिश भी चाहिए और चंदा भी। देखो शांति, सारा आवा खराब नहीं है। पब्लिक स्कूल वाले अच्छे जहीन और होशियार बच्चों को प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा। कूड़ा कबाड़ा भरेंगे तो उनकी साख खराब नहीं होगी।
1: वैसे अपने राजीव पर भरोसा तो मुझे भी है, लेकिन पप्पू की मम्मी की बातें सुनकर तो मेरा जी डूबने लगता है।
0: शांति, तुम जानती हो कि राजीव को बेहतरीन तालीम दिलाना मेरी जिंदगी का सबसे पहला मकसद है। मैं जिंदगी में बाजी हारने का नहीं, जीतने का कायल हूँ। हाँ,
1: लेकिन आप तन्हा ये बाजी कैसे जीतेंगे?
0: तो क्या इस स्ट्रगल में तुम मेरे साथ नहीं हो?
1: आपने गलत समझा। मेरा मतलब, मैं नौकर हो जाती तो राजीव की पढ़ाई का खर्च मेरी तनख्वाह से पूरा हो जाता।
0: देखो शांति, मैं तुम्हारी इस राय का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मुलाजमत तक राजीव की पढ़ाई को टाला नहीं जा सकता। हमें अपनी जरूरतों को कम करना पड़ेगा तो वो करेंगे। शांति, मैं अपने अधूरेपन को राजीव की जिंदगी के हवाले से पूरा करना चाहता हूँ। वो सब कुछ मैं उसे देना चाहता हूँ जो मुझे मेरे माँ बाप नहीं दे सके थे।
1: हमारी जरूरतें पहली हाथों की उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं।
0: अब हमारी जरूरतें बस एक हाथ की उंगलियों तक गिनी जा सकेंगी। हाँ,
1: याद आया।
0: क्या हुआ?
1: बातों में आप केक लाना ना भूल जाइएगा। जाइए, केक तैयार होगा, वक्त हो रहा है, बच्चे भी आते होंगे।
0: अरे हाँ, मैं तो वाकई भूलने लगा था, अभी लाता हूँ। तुम इतने सब बच्चों के लिए चॉकलेट के पैकेट बनाओ।
1: जी, जरा जल्दी आ जाइएगा।
0: हाँ हाँ, मैं अभी गया, अभी आया।

0: बहू, ओ बहू।
1: जी माँ जी।
2: अरे ये राजीव कहाँ गया?
1: अपने डैडी के साथ चिड़िया घर गया है।
2: अच्छा अच्छा, बहू ये मंदिर का प्रसाद है, जब आए तो खिला देना।
1: अरे राजीव के नाम के 4 दिए भी जला कर आई हूँ।
3: अच्छा अच्छा किया माँ जी।
2: अरे तुम लोगों को तो नए जमाने की हवा लग गई है, ये सब रईसों के चोचले हैं, भला हम क्या जाने इन सब बातों को।
3: माँ जी, बच्चों की सालगिरह मनाना तो खुशी की बात है, हमारा तो एक ही बेटा है माँ जी, कभी कभी उसकी जिद पूरी हो जाए तो क्या हर्ज है।
2: अरे बहू, बच्चों के जिद की कोई था नहीं, मैंने तो 8 बेटे पैदा किए मगर ये चोचले हमने नहीं किए। ऐसा करती तो मियाँ की सारी कमाई ऐसे ही धूम धड़ाके में लुट जाती, भला गरीबों के बच्चों का क्या जन्मदिन, झोपड़े में रहकर महलों के ख्वाब देखती हो। अरे अभी क्या है, अभी अभी तो एक ही बच्चा है, 3-4 और हो जाए तो होश ठिकाने आ जाएंगे, सब चोचले भूल जाओगी।
3: माँ जी, हमें दूसरों की तरह बीमार और जाहिल बच्चों की भीड़ नहीं लगानी।
2: हा? हा? ये क्या कह रही हो बहू? अरे यहाँ नंगा बीमार कौन बच्चा है, भगवान की दया है, सब राजी खुशी पल रहे हैं। क्या तुमने ऑपरेशन करा लिया है?
3: नहीं माँ जी।
2: तो फिर
3: राजीव हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी सपना है।
2: हा?
3: हमने तो सोच लिया है, हम उसे जी भर कर पढ़ाएंगे।
2: अरे तो क्या उसकी पढ़ाई के लिए तुम्हें कोई खजाना चाहिए?
3: हाँ माँ जी, आजकल बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने में बड़ा खर्च आता है।
2: बहू, विलायत भेजना हो तो दूसरी बात है, और अब तो कोई विलायत भी नहीं जाता, सब यहीं पढ़ लिख कर काबिल बन रहे हैं। अब तो मैंने सुना है स्कूलों में कोई फीस भी नहीं ली जाती।
3: माँ जी, काबिल वो बनते हैं जो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं।
2: ए तो बहू, ये क्या निराले स्कूल है? भाई तुम दोनों की बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती, मैंने 8 औलादे पैदा की और भगवान की दया से सब सुख चैन की रोटी खा रहे हैं।
3: लगता है भैया भाभी आए हैं।
2: जाओ बहू जाओ, दरवाजा खोल कर देखो, मैं छत पर बाल सुखाने जा रही हूँ, गीले बालों से मंदिर चली गई थी।
4: कैसी हो शांति?
3: अच्छी हूँ भैया, अपनी सुनाइए।
5: शांति, राजीव का जन्मदिन मुबारक हो, ये ना राजीव के लिए चॉकलेट्स का डिब्बा।
3: भाभी आप
4: तो... अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो कहाँ है? अरे भाई वो तेरा IAS बेटा।

0: दोस्तों को लेकर अपने डैडी के साथ चिड़ियाघर की सैर को गया है।
1: शांति, अपने भैया को भी मुबारकबाद दे दो।
0: किस बात की भाभी?
1: नया स्कूटर खरीदा है।
0: अच्छा, हाँ, मुबारक हो भैया। आप दोनों उसी पर आए हैं?
2: अरे नहीं, बस 3-4 दिन में आने वाला है।
0: भैया आपके तो मजे हैं।
1: ओहो शांति, मजे क्या खाक है। बस भगवान की दया है, काफी कुछ घर में आता है मगर पूरा ही नहीं पड़ता। अब देखो ना, कितने दिनों से सोच रही हूँ कि गले का सोने का हार बनवा लूँ, लेकिन जो आता है वो दराटे में खत्म हो जाता है।
2: कमला, तुम तो हमेशा की नाशुक्री हो। पिछले ही महीने तुमने अपने लिए 1000 रुपए की शॉपिंग की थी।
1: 1000 रुपए इस महंगाई के जमाने में ऊंट के मुंह में जीरा जैसे हैं। अब देखो ना, मैं तो 2 ढंग की साड़ियां भी नहीं खरीद सकी हूँ।
2: अच्छा अच्छा, छोड़ो ये बातें। शांति, तू बता क्या हाल है तेरे?
0: गाड़ी चल रही है भैया। भैया, राजीव के डैडी अब शाम को भी एक इनकम टैक्स वकील के दफ्तर में काम करने लगे हैं।
2: अरे तेरा मियां तो बिल्कुल बुद्धू है भाई। ईमानदारी से रुपया कमाने की सोचेगा तो उसे कोल्हू के बैल की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी।
0: उन्हें किसी और रास्ते पर चलना भी तो नहीं आता?
2: नहीं आता तो फिर जिंदगी भर कलर की ही करनी पड़ेगी।
0: भैया, क्लर्क तो आप भी हैं।
2: हाँ हूँ, मगर मैं लोगों के काम निकालने के बाद अपना हक मांगने से नहीं चूकता। तू समझती है सिर्फ तनख्वाह में 6 आदमियों का खानदान पल रहा है।
1: और हाँ, मैं तो अक्सर इनसे कहती हूँ कि शांति इतनी कम तनख्वाह में कैसे घर चलाती होगी।
0: पार्ट टाइम जॉब से भी कुछ मिल जाता है हमें, जैसे तैसे गुजर हो ही जाती है। हमने तो अपनी हर ख्वाहिश को मार दिया।
2: अरे, ये ख्वाहिश ही तो है जो जिंदगी बसर करने का लालच देती है शांति, उकसाती है कि जियो और जैसे जी सकते हो जियो।
1: भाई, मैं तो हर महीने कुछ ना कुछ बनवा आती रहती हूँ।
2: देखो शांति, खुद को जितना समेटोगी तुम्हारे जराए उतने ही सिमटते चले जाएंगे।
0: भैया, खुद को फैलाने की हिम्मत नहीं। हमने तो अपनी हदें बना ली है, उससे आगे कदम रखने का हौसला नहीं होता।
2: हमसे ये बंधा ठगा जीवन नहीं जिया जाता। अगर यूं जीता तो ना फ्रिज घर में होता, ना कलर टीवी, और स्कूटर खरीदने का सपना भी पूरा ना होता। भाई, जिंदगी अपने खुलेपन के लिए बहुत सी बातों का मुतालबा भी करती है।
1: देखो शांति, आज की दुनिया में इज्जत से जीना आसान नहीं है।
2: हाँ, अपने मियाँ से कहो वो बेटे को IAS YAS बनाने का ख्वाब छोड़ दे।
1: अब छोड़ो भी ये सब। शांति, ये बताओ तुम हमें क्या खिला पिला रही हो?
0: भाभी मैं तो
2: अच्छा कमला, तुम शांति से बातें करो। मैं अभी सामने वाली गली में वो जिनका मकान बन रहा है ना, उनसे काम की बात करके आता हूँ। भाई, उनके मकान का नक्शा पास होना है ना।
0: और फाइल आपके पास इटका है?
2: खूब समझी। अच्छा, मैं चला। कमला, तू जरा इसकी रसोई का इंस्पेक्शन करो, मैं चलता हूँ।
1: अच्छा जी, आओ भाभी, चलो।

0: मैं सोचती हूँ भैया ठीक ही कह रहे थे।
1: क्या कह रहे थे भैया?
0: जिंदगी को समेटना नहीं फैलाना चाहिए।
1: मैं समझ गया, भैया भाभी ने स्कूटर, कलर टीवी और फ्रिज की बातें की होंगी, साड़ियाँ और गहने खरीदने की खबर दी होगी।
0: मगर ये भी कोई जिंदगी है जो चार साड़ियों और दो पतलूनों में गुजारी जा रही है?
1: शांति, मेरे बस में होता तो मैं दुकानों पर लटकी और शोकेस में सजी हर खूबसूरत साड़ी तुम्हें पहना देता। किनारी बाजार का हर खूबसूरत जेवर तुम्हारी नजर करता, तुम्हारा दामन मसरतों के महकते फूलों से भर देता। मगर मैं एक अदना दर्जे का म्यूनिसिपल मुलाजिम हूं, मैं दौड़ा भी तो मेरे कदम कितनी जमीन नाप लेंगे। मैं दरअसल एक ऐसी कमजोरी नहीं बीमारी का शिकार हूं जिसे ईमानदारी कहते हैं, ऐसी ईमानदारी जो किसी को खोटा सिक्का देते हुए यूं डरे जैसे कोई बड़ा जुर्म सरजद हो रहा हो।
0: आप तो घर में रहते नहीं, दुनिया वालों की बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं। उस रोज पड़ोस की शादी में

0: दो पल ठहरना दूभर हो गया था। कानों में दो बालियां और उंगलियों में दो अंगूठियों के सिवा कुछ भी तो नहीं है मेरे पास पहनने को। कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है मेरे पास कि मेहमान बनकर बनी सवरी औरतों के बीच एतमाद से खड़ी रह सकूं।
1: शांति, जरा अपने नीचे वालों की तरफ भी देखो। अपने से ऊंचे लोगों की तरफ देखोगी तो तुम्हें हमेशा अपना कद छोटा लगेगा। हम जिंदगी की रंगीनियों से दूर बेरौनक साहिल पर इसलिए खड़े हैं कि हमारे सामने अपने बेटी की जरूरतों से भरी जिंदगी और उसके तकाजे और मुतालबे हैं। हमें राजीव को एक पुरबहार जिंदगी देनी है, एक ऐसा जीवन जिसकी हर सुबह फूलों की खुशबुओं से भरी हो।
0: लेकिन औलाद नालायक भी तो निकल सकती है।
1: हाँ, ये मुमकिन है। राजीव को एक बेहतर जिंदगी देने के पीछे मेरा ये जज्बा भी काम कर रहा है कि जो कुछ मेरे अंदर बनते बनते टूट गया था, जो चाहते हुए भी नहीं हो पाया था, जो अधूरापन, जो खला मेरी जिंदगी में इस मोड़ तक मेरा पीछा कर रहा है, वो राजीव का मुकद्दर न बने। राजीव राजीव बड़ा हो तो उसे वो सब कुछ तीखा खरा और खुरदरा न सुनना पड़े जो आज मैं तुमसे, अपनी मां से और जमाने से सुन रहा हूं।
0: मैं शिकायत नहीं कर रही हूं। औरत हूं ना, जब दुखों से भर जाती हूं तो आंसुओं की सूरत छलक पड़ती हूं। राजीव की जिंदगी और उसका रोशन मुस्तकबल तो मुझे भी प्यारा है।
1: तो फिर तुम क्यों ठहरे हुए जज्बों में झाग उठाती हो?
0: जब पूरा घर हमारे ख्वाबों पर पत्थर फेंके तो अंदर से हौसले की दीवार ढहती हुई महसूस होती है।
1: शांति, माँ हो या घर वाले, उन्हें हमारे मंसूबे से दिलचस्पी हो भी नहीं सकती। उन्होंने 8 औलादें पैदा की लेकिन ये सोचे बगैर कि उनका कोई सामाजिक मसरत भी है या नहीं। हमारे माँ बाप ने अपनी तमाम नासूदगियों का इलाज जिंसी आसूदगी से किया। हम और तुम पुरानी नस्ल की जिंसी भूख की कोख से पैदा हुए हैं।
0: काश हम भी जिंदगी के सर से आदर्श की चादर उतार कर नंगे सर जी सकते।
1: शांति, हमारा अलमिया यह है कि हमें जिंदगी की ना आसूदगियों के साथ साथ जिंसी ना आसूदगी भी मिली है। हम खुलकर जिंसी जीवन जी भी नहीं सकते। एक खौफ सा हमारे ऊपर तारी रहता है, 8 रेंगते हुए कीड़ों का खौफ।
2: पापा पापा,
1: क्या बात है राजीव बेटे?
2: पप्पू गुड्डू कह रहे थे आसमान है ना आसमान। हाँ? उसमें जो बादल है ना उनके पापा ने बनाए हैं।
1: वो कैसे बेटा?
2: उनके पापा जो सिगरेट का धुआं छोड़ते हैं ना वो ऊपर जाके बादल बन जाते हैं।
1: पप्पू गुड्डू और क्या कह रहे थे?
2: कह रहे थे उनके पापा ऑफिस में बहुत बड़ी मेज पर बैठते हैं। उनकी मेज पर रेड और सफेद रंग के टेलीफोन होते हैं। वो अपनी ऑफिस हवाई जहाज से जाते हैं।
0: राजीव बेटे, हवाई जहाज में बैठकर कोई ऑफिस नहीं जाता।
2: मम्मी, जो अफसर होते हैं वो जाते हैं। पप्पू गुड्डू कह रहे थे मेरे पापा बाबू हैं और सारे बाबू बस या साइकिल से दफ्तर जाते हैं।
1: मगर ये कोई बुरी बात नहीं, साइकिल तो एक सवारी है। हमारे मोहल्ले में कितने लोग हैं जो साइकिलों पर ऑफिस जाते हैं।
2: आप अफसर कब बनेंगे?
1: बन जाएंगे, नहीं बन सके तो तुम्हें तो अफसर जरूर ही बनाएंगे।
0: हाँ बेटे, तुम्हें अफसर बनाने की कोशिश में ही तो हम दोनों लगे हैं।
2: मम्मी, मैं अफसर बन जाऊंगा।
0: हाँ बेटे, तुम अफसर जरूर बनोगे।

0: कब से इंटरव्यू चल रहा है?
1: काफी देर हो गई है।
0: अब कौन सा रोल नंबर है?
1: 511 राजीव कुमार।
0: राजीव बेटा, अब तो तुम्हारा नंबर है, हम लोग अंदर जाएं?
1: हाँ जाइए।
0: मैं कमिंग सर?
2: यस प्लीज सिट डाउन।
0: थैंक यू।
2: आप पुराने शहर में रहते हैं?
0: जी हाँ।
2: आप काम कहाँ कर रहे हैं?
0: जी मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लास 3 ऑफिसर हूँ।
2: आपके पास अपना कन्वेयंस है?
0: जी नहीं।
2: देखिए,

0: स्कूल में पढ़ाई का खर्च काफी है, ये बात आपको मालूम है?
1: जी मैं पढ़ाई का बोझ संभाल लूंगा।
0: हमारे पास नर्सरी में कुल 30 सीटें हैं और दाखिले के ख्वाहिशमंद बच्चों की तादाद 300 से ऊपर ही है। दूसरे ये कि हम नर्सरी के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते, माँ बाप को अपने ही ट्रांसपोर्ट से बच्चों को स्कूल तक लाना ले जाना होगा। मुझे लगता है कि आपके लिए ये करना मुमकिन नहीं होगा।
1: लेकिन प्रिंसिपल साहब, पिछले सालों में तो आप नर्सरी के बच्चों को भी बस फराहम कराते रहे हैं।
0: देखिए, हमारी मजबूरियां हैं, हमें बड़ी क्लासों के लिए मजीद बसें दरकार हैं।
1: तो क्या मेरे बेटे का एडमिशन मुमकिन नहीं?
0: मैं तो ये नहीं कहूंगा।
1: प्रिंसिपल साहब, मैं तो बड़ा होपफुल था।
0: किसी और स्कूल में ट्राई कर लीजिए।
1: आप बच्चे से कुछ और पूछेंगे?
0: नो, थैंक यू।

0: राजीव बेटा, इस स्कूल में शायद बात बन जाए।
1: अरे पापा, ये तो बहुत बड़ा स्कूल है।
0: हाँ बेटा, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। भाई साहब, कौन सा रोल नंबर चल रहा है?
2: रोल नंबर 511।
0: मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर, ये मेरा बेटा है। क्या नाम है तुम्हारा बेटे?
1: राजीव कुमार।
0: गुड। तुम्हारी टाई का कलर कौन सा है?
1: ग्रे।
0: हाँ, दीवार पर लगी वो तस्वीर देख रहे हो आप?
1: जी।
0: पहचान सकते हो किसकी तस्वीर है?
1: बापू की।
0: गुड, वेरी गुड। अच्छा, 50 तक गिनती बोल सकते हो तुम?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
0: ओके ओके ओके ओके। अच्छा ये बताओ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं?
1: 7।
0: और साल का पहला महीना कौन सा होता है?
1: मालूम नहीं।
0: आपका बच्चा तो इंटेलिजेंट लगता है, पर आपकी मंथली इनकम बहुत कम है। आप क्लास 3 ऑफिसर हैं।
3: जी प्रिंसिपल साहब, मैं मैनेज कर लूंगा, प्लीज आप बस मेरे बच्चे को दाखिला दे दीजिए।
0: देखिए, मुझे आपसे हमदर्दी है, बेहतर हो अगर आप पुराने शहर के किसी सरकारी स्कूल में बच्चे का दाखिला करा दें, वहां कोई फीस भी नहीं लगेगी।
3: देखिए, मैं तो आपके स्कूल में बच्चे का दाखिला चाहता हूँ, ये मेरा एक पुराना ख्वाब है।
0: बच्चे को बेहतर स्कूल और बेहतर तालीम देने का ये जज्बा बहुत अच्छा है।
3: आपके स्कूल का एक तालीमी मयार है, इसका नाम है।
0: ये तो सही है, मगर सबसे ज्यादा दाखिले का प्रेशर भी हम पर ही है।
3: देखिए प्रिंसिपल साहब, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ।
0: आपका बच्चा डिजर्व करता है, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, वादा नहीं कर सकता।
3: प्रिंसिपल साहब, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज एडमिशन की उम्मीद दिला दीजिए।
0: राम कुमार जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है, बड़ी भीड़ है बच्चों की, आप प्लीज नतीजे का इंतजार कीजिए।
3: मैं दाखिले का फॉर्म और दूसरी मालूमात तो हासिल कर सकता हूँ।
0: हाँ, हमें इसमें क्या एतराज हो सकता है। आप ऑफिस में चले जाइए और सारी मालूमात वहां से हासिल कर लीजिए।
3: जी प्रिंसिपल साहब, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा।
0: मैं कोशिश करूंगा, आई विल सी टू हेल्प यू, पर चांसेस कम है।
3: प्रिंसिपल साहब, आप चाहेंगे तो दाखिला जरूर मिल जाएगा।
0: ओके ओके, आई विल ट्राई। नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज।

0: अरे आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? ये थैली में क्या है?
1: अभी बताता हूँ। ये बताओ वो अपना बेटा कहाँ है?
0: माँ जी के साथ ऊपर छत पर है।
1: अच्छा,
0: मैं बुलाती हूँ। राजी नीचे आ जाओ बेटा।
1: शांति
0: जी,
1: तुम्हारे ख्याल में मैं क्या ला सकता हूँ?
0: पहेलियाँ ना बुझाइए, बताइए ना।
1: ये देखो ये
0: यूनिफॉर्म। क्या राजीव का एडमिशन हो गया?
1: मुझे तो पूरी उम्मीद है, तभी तो ये यूनिफॉर्म लाया हूँ।
2: लो पापा मैं आ गया।
0: देखो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म लाए हैं।
2: पापा मगर ये तो सिर्फ कोट है।

0: बेटा बाकी चीजें बाद में लाएंगे, अभी तो बस इतना ही काफी है।
1: लो बेटा पहन के दिखा, यहाँ से शाबाश। कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा बेटा।
2: अरे राजीव को ये क्या पहनाया जा रहा है?
1: स्कूल का यूनिफॉर्म है माँ जी।
2: आए? तो क्या दाखिला हो गया बहू? अरे हाँ कुमार, तेरे नाम का एक खत डाकिया दे गया है।
0: कौन है खत माँ जी?
2: ये ले, मैंने साड़ी के पल्लू में ही बांध दिया था। ये ले।
1: किसका खत है?
0: लिफाफे पर तो राजीव के स्कूल की मोहर लगी है।
1: अच्छा जल्दी खोलिए ना और खुशखबरी सुनाइए।
0: आपका बच्चा जहीन और स्मार्ट है, हमारे स्कूल के नर्सरी सेक्शन में दाखिले के ख्वाहिशमंद बच्चों के बेपनाह रश और दबाव की वजह से आपके बच्चे का दाखिला मुमकिन नहीं हो सका। हम आपके बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं।
1: क्या होगा? इस स्कूल पर तो हमारा सारा दारोमदार था।
2: मैं ना कहती थी ये अंग्रेजी स्कूल सब रईसों के चाचने हैं। मेरी तो कोई सुनता नहीं, एक कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। अरे इस गली में सबने अपने बच्चों को वो क्या कहें, आई बस ऐसे वो बनाने के सपने देखे थे, मगर देख लो, अरे कोई पान बीड़ी की दुकान खोले बैठा है और कोई गली में खड़ा कपड़ों पर इस्त्री कर रहा है और कोई सिनेमा घरों पर टिकटों की बिलय कर रहा है। अरे जा बहू जा, बच्चा भी जीने में है, उसे वापस बुला ले बेचारा। और सुन, इन कपड़ों को लपेट कर थैले में रख दे।
0: शांति, माँ ठीक कहती है, राजीव को आवाज दे के वापस बुला लो।
1: जी राजीव बेटे वापस आ जाओ, बाहर मत जाना, यूनिफॉर्म गंदा हो जाएगा। राजीव,

0: शांति शांति
1: क्या बात है?
0: क्या राजीव सो गया?
1: सो तो गया, मगर यूनिफॉर्म का थैला अपने सीने पर रखकर सो रहा है।
0: मां सो गई?
1: हाँ, दालान की बत्ती बुझी हुई है।
0: शांति, प्यास लगी है, सारा जिस्म जल रहा है।
1: मैं अभी पानी लाती हूँ।
0: ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सारे बदन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी हो।
1: लो पानी पी लो। अरे तुम तो बहुत गर्म हो रहे हो।
0: शांति, हमने एक सुनहरे दिन की आमद के इंतजार में न जाने कितने अंधेरों की धूल अपने बदन पर डाली थी। हम ये जीवन चारों तरफ से खुद को कस के बांध के जी रहे थे। हमारी रातें भी हमारी ही खींची हुई रेखाओं में करवटें बदलती रही थीं। हम एक जिनसी घुटन का जीवन जी रहे थे कि हमारे असाब पर हमेशा ही एक तनाव रहा था, एहतियात का। लेकिन अब
1: क्या?
0: अब प्यासा रहना, अपने जज्बों को एहतियात की जंजीरों में बांधने से कोई फायदा नहीं। शांति, मेरे करीब आओ।
1: आप जज्बाती हो रहे हैं।
0: हाँ, मैं जज्बाती हो रहा हूं। 4 साल से इस जिस्म में उठते हुए तूफान पर हम बंद बांध कर उसका जोर तोड़ते रहे हैं। शांति, हम वो बादल हैं जो कभी खुलकर न बरसे। आओ शांति, मेरे सांसों से बहुत करीब, रेखाओं को मिटाने और खुले आंगन में नाचने की घड़ियां हमें आवाज दे रही हैं। शांति,

0: मैं यूं आपको टूटने नहीं दूंगी।
1: अब मुझमें कुछ भी साबित और सालम नहीं बचा शांति, अब ऐसा कुछ भी नहीं कि बस एक ही औलाद काफी है, बस उसी पर सब कुछ निसार कर दो, तन मन और धन।
0: मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी, मगर मैं आज की रात आपको बिखरने नहीं दूंगी।
1: माँ ठीक कहती है, उसने 8 औलादें पैदा की, सब जिंदा है, कोई नंगा भूखा नहीं।
0: तो क्या राजू भी उन्हीं की तरह पलेगा?
1: हाँ, राजीव भी गली में उन रेंगते हुए कीड़ों की तरह पलेगा जो बेसोचे समझे इस शहर के बेशुमार अंधे घरों में पैदा होते रहते हैं।
0: मैं जब टूटी बिखरी तो आपने मुझे जोड़ा, समेटा, और आप इतनी जल्दी हार गए।
1: माँ ठीक कहती है, इस गली के हर बाप ने अपने बच्चों को IAS बनाने का ख्वाब देखा ये सोचे बगैर कि उसकी आंख को ऐसे ख्वाब देखने का हक भी है या नहीं। सबके ख्वाब रेजा रेजा हो गए, अपनी बनी बनाई पहचान को मिटा के किसी नई और निराली पहचान के साथ जिंदा रहने की जद्दोजहद कितना कुछ मांगती है। और अब मेरे पास राजीव को देने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा शांति। शांति मैं थक गया हूं, मुझे अपनी बाहों में कस के समेट लो शांति, कस के समेट लो।
0: आप सो जाइए मेरी बाहों में, मैं ख्वाब बनकर आपकी आंखों में तैरती रहूंगी। ख्वाब जो धुन में खो भी जाते हैं और फिर अपनी सारी चमक के साथ हमारी आंखों में वापस लौट भी आते हैं।
1: तुम ख्वाबों के लौटने का इंतजार करो, मुझे तो नींद आ रही है।
0: तुम सो जाओ, मैं ये रात भी और रातों की तरह कल के सूरज के इंतजार में काट दूंगी। कल के सूरज के इंतजार में।

0: अभी आप सुन रहे थे ड्रामा उनवान था ख्वाब और धुंध। तहरीर जुबैर रिजवी की थी और पेशकश थी सरफराज अहमद की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: अब आप असगर अली से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हमनसब पेनी वोंग के साथ वजराए खारजा के फ्रेमवर्क के 17वीं मुजाकरात की मुश्तरक तौर पर सदारत की। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाले तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश करने वाले बड़े मुलजिम उदे को हलाक कर दिया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है और शतरंज में भारत के ग्रैंड मास्टर एनियान पनीर सेल्वम ने श्रीलंका में दौलत मुश्तरका चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिस दोनों टाइटल जीतकर सोने के दो तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपने हमनसब पेनी वोंग के साथ 17वीं वजराए खारजा फ्रेमवर्क मुजाकरात की मुश्तरक तौर पर सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुलकाहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी व कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी।

गया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करने के लिए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन बढ़ रहा है। वजीर मसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर मजकूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स वन डिवीजन की ज्वाइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुदमुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ़ से भी वाबस्ता है। आला सतह की यह कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजिया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था। ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर जरूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी पंडित नेहरू को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गाजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश तैयार करने वाले बड़े मुल्ज़िम मोहम्मद उदेई को हलाक कर दिया है। इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर के साथ एक मुश्तरक बयान में इसराइली फौज ने कहा है कि वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल कट्स ने इस कार्रवाई का हुक्म दिया था। इसराइल ने उदय पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली आम शहरियों और फौजियों की हलाकत, उन्हें अगवा करने और उनके जख्मी होने में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया था। मोहम्मद उदय ने हाल ही में इमरदाइन अल हद्दाद की जगह ली थी जो इसराइल के इससे पहले के हमले में मारा गया था। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हर उस शख्स को निशाना बनाता रहेगा जो 7 अक्टूबर के हमलों में मुलव्वस है। इधर इसराइल ने जनूबी लबनान में शदीद फजाई हमले किए हैं। मीडिया इतलात के मुताबिक कल इन हमलों में 31 अफराद मारे गए जबकि 40 जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में तेजी आने के तनाजुर में नेतन्याहू ने फौज को हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया था। इसी के बाद जनूबी लबनान में ये हमले किए गए हैं। हालिया हफ्तों में इसराइली फोर्सेज ने हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा लड़ाकों को हलाक किया है और ये मुहिम जारी रखने का अहद किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का यह मंसूबा है कि 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है।

सुना किशोर कुमार के साथ आशा भोसले को ये नगमा हमने आपको सुनवाया तीन देवियां फिल्म से। आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश जंतर मंतर फिल्म से है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

राजू भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में चा चा चा फिल्म का नगमा अभी आपने सुना। और अब सुनिए अजनबी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था गीत। अगली पेशकश समाप्त फरमाइए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। फिल्म का नाम है बातों बातों में।

0: किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में नगमा भी आपने सुना बातों बातों में फिल्म से। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1: जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान की जंग आजादी के रहनुमा भी थे और नए हिंदुस्तान के मेमार और इसके बानी भी। उनकी शख्सियत का हर पहलू 20वीं सदी की तारीख का एक मुनफरिद बाब है। जवाहरलाल नेहरू 20वीं सदी के ऐसे तारीख साज अदीब भी थे जिनकी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तानी अदबियात में दानिश्वरी की एक नई रिवायत का आगाज हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो तसानीफ छोड़ी हैं, उनके मौजूदात अगरचे तारीख से मुतालिक हैं, लेकिन इन किताबों को मुकम्मल तौर पर महज तारीख नहीं कहा जा सकता। नेहरू ने अपनी तहरीरों के जरिए एक ऐसे तख्लीकी शऊर को तश्कील दिया जिसमें जमालियाती एहसास के साथ तहजीब इंसानी के अजीम शान विरसे का इदराक शामिल है। जवाहरलाल नेहरू की किताब तारीख आलम की झलकियां पहली बार 1939 में अंग्रेजी में शाये हुई। इस किताब के अलावा जवाहरलाल नेहरू की तसनीफात में तलाश हिंद, उनकी आप बीती और मकतूबात के मजमूए शामिल हैं। तारीख आलम की झलकियां भी खतूत के उसलूब में लिखी गई, लेकिन इन खतूत में जवाहरलाल नेहरू के मुनफरिद उसलूब के साथ साथ वो जमालियाती एहसास भी मौजूद है जिसमें तारीख का जायका है, इंसानी तहजीब की दास्तान है, इंसानी कदरों का शऊर है और मुस्तकबिल की बिशारत है। एक मौर्रख का काम सिर्फ इस कदर होता है कि वो अपनी जात को बेताल्लुक रखकर वाकयात को दयानतदारी से दोहरा देता है, लेकिन एक हकीकत पसंद अदीब माजी के वाकयात में खुद अपने एहसास को शामिल करते हुए माजी और हाल के लम्हों में जीता है, सांस लेता है और अपनी तख्लीक के जरिए जमाने माजी और जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल के दरमियान एक रिश्ता पैदा करता है। यही वो अदबी और तख्लीकी कारनामा है जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तहरीरों के जरिए अंजाम दिया। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हिंदुस्तानी जहन अपनी धरती की तहजीब और आलमी तहजीब के माजी और हाल से बाखबर हो, उसे तारीख के तलख शीरी लम्हों का एहसास हो और वो अपने अहद के मसाइल से पूरी तरह बाखबर हो। जवाहरलाल नेहरू का ये तारीख साज कारनामा है कि उन्होंने दानिश्वरी की इस नई रिवायत को परवान चढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू की तख्लीकात के जरिए हिंदुस्तानी अदबियात में ये नया शूर और दानिश्वरी की नई रिवायत शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू अपने अहद के मुमताज अदीबों से बहुत करीब रहे।

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से आलमी खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीरे खारजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी नौइयत की जाम शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश तैयार करने वाले बड़े मुल्ज़िम मोहम्मद दुबे को हलाक कर दिया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की है जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत वहां भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मोहाली में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून ने मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़िश्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज

0: ये आकाशवाणी है। रेडियो वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आप हमें सुन रहे हैं। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी के इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वजराए खारिजा ने दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी नौयत की जामे शराकतदारी की पेशरफ्त का जायजा लिया है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गाजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश तैयार करने वाले बड़े मुलजिम मोहम्मद ओदे को हलाक कर दिया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत वहां भेजने का इरादा रखता है। और IPL क्रिकेट में आज शाम मोहाली में न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आपने उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियां सुनी। अब पहली मजलिस का वक्त खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
1: ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि हम कहेंगे कि खूबसूरत नजारों, बेहतरीन अदाकारी और लाजवाब संगीत का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी खुशबू आज भी इतने बरसों के बाद भी उतनी ही ताजा है जितनी उस वक्त में थी। और वाकई में गीतों को सुनकर आपको भी यही महसूस होगा।

जी दोस्तों, इस फिल्म जो फिल्म हम आज लेकर आए हैं मेरे सनम, अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की तो लाजवाब संगीत, और कहेंगे कि इस फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट था वो इस फिल्म का संगीत था। जी हाँ, कहानी और अदाकारी वो सब प्लस पॉइंट था, लेकिन उसमें संगीत का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और ये फिल्म के संगीतकार ओपी नैयर साहब और साथ में गायक मोहम्मद रफी साहब के सुनहरे जुड़ाव की सबसे बड़ी और कहें कि सबसे आखिरी फिल्म भी रही, क्योंकि इसके कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी। और हुआ ये था कि रफी साहब एक रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा लेट से पहुंचे और उसके बाद नैयर साहब नाराज हो गए। बहुत सालों तक उन्होंने मोहम्मद रफी साहब के साथ काम ही नहीं किया और उसके बाद ओपी नैयर साहब ने अपनी आवाज को चुना महेंद्र कपूर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, रफी साहब जो कि ओपी नैयर साहब की आवाज थे, हर फिल्म में वो हट गए और उनकी जगह पर महेंद्र कपूर साहब को लिया गया। लेकिन अभी इस फिल्म की हम बात करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। फिल्म जो है ये हमारी, इस फिल्म का सबसे जो ब्लॉकबस्टर गाना जो हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं, जिसमें विश्वजीत एक खुली जीप में नजर आते हैं चलाते हुए। उसकी शूटिंग के दौरान विश्वजीत को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन ये सीन शूट होना था गाड़ी चलाते वक्त, तो इसका जो एक उपाय निकाला गया कि गाड़ी को एक टो ट्रक से खींचकर आगे आगे चलाया जा रहा था और विश्वजीत सिर्फ स्टेयरिंग घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि वो व्हील को संभाले हुए और गाड़ी वही चला रहे हैं। और वाकई में वो इतने परफेक्शन के साथ में किया कि कोई भी इस चीज को पहचान ही नहीं पाया कि विश्वजीत सचमुच में गाड़ी चला रहे हैं या फिर ये एक्टिंग कर रहे हैं। ये था उनके एक्टिंग का जादू। तो लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा ब्लॉकबस्टर गीत।

जी दोस्तों, फिल्म मेरे सनम और विश्वजीत साहब ने जो स्टाइलिश सफारी सूट पहना है, गले में मफलर और हाथ में सिगार वाला लुक, भाई वाह, जो लुक था वो उस वक्त में लोगों ने एक फैशन ट्रेंड सेट कर दिया था। और स्पेशली दिल्ली और मुंबई के जो कॉलेजेस थे उसमें लड़कों ने उनके इस लुक को इतना कॉपी किया कि हर कोई इसी अंदाज में नजर आता था। लेकिन आपको मालूम है, विश्वजीत इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म के जो मेकर्स थे उनकी पहली पसंद थे सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब। भाई हूँ भी क्यों ना, उनका मिजाज जो था वो बिल्कुल इस फिल्म के मिजाज जैसा था। गाने उनके रोमांटिक अंदाज पर बिल्कुल फिट बैठते थे, लेकिन कई वजह ऐसी रही कि जिस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म आकर गिरी विश्वजीत की झोली में, जिन्होंने इसे अपने करियर की सबसे यादगार फिल्म बना दिया। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए सुनते हैं खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे सनम से।

जी दोस्तों, फिल्म मेरे सनम में विश्वजीत साहब के अंदाज के तो सब दीवाने रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में विलन का किरदार निभाया था प्राण साहब ने, और उनका स्टाइलिश अंदाज, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी जबरदस्त थी कि लोग हीरो के साथ

साथ उनके अंदाज के भी दीवाने हो गए थे, और साथ ही साथ मुमताज जो थी इस फिल्म में, उनके साथ उनका चुलबुलापन जिसने इस फिल्म में लगा दिए थे चार चांद। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में मुमताज ने कमली नाम का एक नेगेटिव किरदार निभाया था, एक वैम्प का किरदार निभाया था जो कि प्राण के साथ मिलकर हीरो को फंसाती है। और इस फिल्म में उनके ऊपर गीत भी फिल्माया गया था, वो गीत हम आपको सुना चुके हैं, और वो इतना हिट हुआ था कि इसने मुमताज के करियर को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और यही फिल्म थी जिसके बाद मुमताज लीड एक्ट्रेस के रूप में आने लगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी और भी किरदार हम आपको बताएंगे। और अगर हम बात करें फिल्म की कहानी के लिए, तो जो फिल्म की कहानी है वो भी बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत सी है, और इसकी शुरुआत होती है थोड़ी सी गलतफहमी के साथ। साधना यानी कि आशा पारेख अपनी माँ और अपनी सहेलियों के साथ जाती है कश्मीर घूमने के लिए, जहां पर भारी बारिश होती है और उनको रुकना पड़ता है एक लॉज में जिसका मालिक होता है कुमार, कुमार यानी कि विश्वजीत। यहां पर गलतफहमी की वजह से साधना और उसकी माँ कुमार को एक चोर समझ लेती है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है, और यही झगड़ा जो होता है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। धीरे धीरे साधना को कुमार की अच्छाइयों का एहसास होता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब इस फिल्म के विलन श्याम यानी कि प्राण और उसकी साथी कमली यानी कि मुमताज मिलकर कुमार को फंसाते हैं और उसकी जो जायदाद है उसको हड़पने की साजिश करते हैं। कुमार की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं साधना के सामने ताकि वो दोनों अलग हो जाएं, लेकिन कुमार सभी साजिशों को हटाता है, सबका पर्दाफाश करता है, अपने आप को बेगुनाह साबित करता है, और हमेशा की तरह से हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों प्रेमी एक साथ मिल जाते हैं। ये थी इस फिल्म की खूबसूरत सी छोटी सी कहानी। और भी बहुत सी चीजें हैं हम आपको बताएंगे, हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेश भी हम तक आए हुए जिनके संदेश भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पिपरिया से जुड़े हमारे साथ कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम देवांगन, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्लिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि मेरे सनम के कई खूबसूरत दृश्यों और गानों को कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माया गया था और इस फिल्म की शूटिंग सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होने से ठीक पहले पूरी गई थी। शूटिंग के दौरान वहां का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो रहा था, लेकिन पूरी टीम ने मुश्तैदी से काम किया और इस दौरान अभिनेता शशि कपूर भी अपनी फिल्म जब जब फूल खिलेगी वहां पर शूटिंग कर रहे थे। बहुत खूब बब्लिश जी, खूबसूरत जानकारी के लिए। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वयं सिंगल दलजीत सिंह, राजदीप गुरनूर, गुरलान, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

और ये अगला जो संदेश है वो हमारे पास बबलेश जी का, उन्होंने एक बार फिर से बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मुमताज जी उस वक्त साइड रोल और स्टंट फिल्मों की हीरोइन मानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म से उनकी तरक्की हुई और वो काफी आगे पहुंची। मुकेश भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कनेरा मोहल्ला पटियाला से। अगला जो संदेश है इसको हम तक पहुंचाएगा गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी जी ने। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े दतरेंगी भट्टापारा से। सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागर कोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से। अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया, अनिता सिमरन मुखिया जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गढ़ नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। पारगंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हुए हैं। ग्राम शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुश्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरू चौक पैटर्न से जुड़े हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव के साथ। छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली से जुड़े हैं मोहम्मद इशाह, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौशल, अल्ताफ, नीलोफर फातिमा के साथ। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिलम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। मालियान सरदनाज मेरठ से। जिला बालो छत्तीसगढ़ ग्राम भाई भोईनापार लाटा बोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं देवनारायण साहू, योगिता गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई, गंगाराम साहू के साथ। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से। नगेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्वला नवानकर, विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद फूल वाले, जूही इकबाल, इमरान कापसेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से, बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, अंशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत वर्मा दतरेंगी से जुड़े हुए हैं, शांति देवी, लीलावती, विनीता रुद्र वर्मा के साथ। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन जी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर और रिजवान परवीन हमारे साथ जुड़े हैं। गांव फरियासी जिला हसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। और ये अगला संदेश हम तक आया है और उसको पहुंचाने वाले हैं बीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमीला बेन भावसार, भावेश कुमार सनी, जयमिन कुमार भावसार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत मक्कर हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर पंजाब से। और मोहम्मद सईद अब्बासी जी जुड़े हमारे साथ। निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजाना बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचाया है। ये है भारत मक्कर, कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया से। अगला संदेश आया है डीबी राणा, नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश फजल का पंजाब से, भूषण खेरा, विशाल, विशु, गीत इनको अच्छे लग रहे हैं। और ये अगला जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। तो संजय डिंगिया, निमन डिंगिया, अपार डिंगिया हमारे बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े।

जी दोस्तों, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और ओपी नैयर साहब की रूहानी धुने मशरूम सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज और मोहम्मद रफी जी और आशा जी की आवाज में इस फिल्म को चार चांद लगा दिया और उस दौर को सुनहरे दौर में बदल दिया। लेकिन वक्त अब तेजी से बदल रहा है और हमें यानी कि मुझे यानी कि स्प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुकती हैं और अब मुझे इस सफर को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन यादों का जो ये सफर है उसको लेकर वापस से आऊंगी, जाइएगा कहीं नहीं। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ फिर से एक बार हाजिर

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।

0: उच्च अदालत ने आसाराम में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। वो इस समय अस्थायी जमानत पर ने जिसमें एक हफ्ते की शुरू में 7 दिन वधा दिया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 होर नौजवानों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने हम तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर के अहिल्या नगर तो कुल 13 नौजवानों को गिरफ्तार किया। लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज सिरूरो ने भी नीट प्रथम लीक मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई मुताबिक उसने मुलजम पीवी कुलकर्णी तो एक कोचिंग सेंटर के मालिक के पेपर समेत 3 विद्यार्थियों को रसायनिक विज्ञान के प्रश्न प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाई। दूजा गिरफ्तार मुलजम तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे के कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी के भौतिक विज्ञान फैकल्टी मैंबर है। उसमें लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न गिरफ्तार मुलजम मनीषा हवालदार तो मिले सन। सीबीआई ने हम तक 49 थानों की तलाशी ली है तो कई अपराधिक दस्तावेज, लैपटॉप तो मोबाइल फोन जब्त किए ने। इस महीने भी केंद्रीय ने मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में पैथो ने विस्तार से नीट परीक्षा पेपर लीक तो एग्जामा विस्तार स्थापित की गई थी। केंद्र ने कहा कि देश में हूं तक इबोला वायरस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। सेहत मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस मामलों के मद्देनजर स्थिति पर नेड़े नजर रखी जा रही है। सूत्रों मुताबिक हाल ही में युगांडा तो वापस आए एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच के इलाज के बाद रखा गया। उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सेहत मंत्रालय संबंधित राज्य अधिकारियों से तालमेल करके इस वायरस की नेड़े निगरानी कर रहा है तो विश्व सेहत संगठन के दिशा निर्देशों मुताबिक सारिया जरूरी कार्रवाइया कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चौकस को पूरी तरह तैयार है। सारे मुताबिक एंट्री पॉइंट जनतक सेहत प्रणाली च स्क्रीनिंग जांच के उपाय जारी है। नागरिकों को गलत जानकारी न फैलाउन जानकारी लिए सिर्फ अधिकारक के स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी गई है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैनेडा के अपने दौरे के दूजे दिन टोरंटो कैनेडा के सीनियर नेताओं और संस्थागत निवेशकों कई उच्च पदरी मीटिंग की। उद्योग मंत्री ने कहा कि मीटिंग का उद्देश्य केवलले सहयोग को दूंगा करना और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश के टेक्नोलॉजी भाईगलों को उत्साहित करना। इस मौके श्री गोयल ने कैनेडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू नाल मजबूत सरकार उद्योग सहयोग वालों संचालित एक मजबूत व्यापारिक वातावरण प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों धिरों ने 2020 तक तवल्ले व्यापार में 50 अरब डॉलर तक वधाने के अपने साझे टीजे की पुष्टि की है। दोवें देश इस साल इस तीर तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए को पूरा करने भी सहमत हुए हैं। इस बाद दोनों देशों के मंत्रियों की सह प्रधानगी हेठ कैनेडा भारत निवेश कोल में मीटिंग हुई। इस विच पेंशन फंड बैंक समेत प्रमुख कैनेडियन वित्तीय निवेशकों के नाल नाल दोनों देशों के सीनियर सरकारी नुमाइंदे भी शामिल रहे। इस खबरों तुम आकाशवाणी पर सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @PIRRNEWS जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNE-EIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @PIRR जलंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक च सिक्किम यूनिवर्सिटी के सप्तम कन्वोकेशन च मुख्य मेहमान वजों शिरकत करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ते मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धामी भी इस समारोह च शामिल होंगे। साढ़े पत्रकार मुताबिक तीर्थी विभागों में लगभग 14,000 डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। 285 होनहार विद्यार्थियों को सोने के चांदी के तमगे भी दिए जाएंगे जिन्होंने 199 औरतें शामिल ने। इस तो पहले राष्ट्रपति नाथूला का निर्धारित दौरा खराब मौसम कारण रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वड्डे तो वड्डे टीचे भी निरंतर कोशिश पूर्वक तो मजबूत इच्छा शक्ति न प्राप्त किए जा सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट से एक संस्कृत शुभाष्टम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग इस भावना से प्रेरित ने कि भारत में नवी ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वक्त हिस्सों में चल रहे तापमान के दरमियान लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लोग खुद में हाइड्रेटेड रखन और बाहर जाने के लिए अपने नाल पानी जरूर लेके जान। गर्मी कारण होने वाली वाधिया मुश्किलों बारे श्री मोदी ने कहा कि अजिहे मौसम च संवेदनशीलता एक वड्डा सहारा बनती है। उन्होंने कहा कि कोई भी पैसा हो उसने एक गिलास पानी जरूर पिलाओ। उन्होंने सारे को अपने परिवार के करीबियों के संपर्क में रहने और उनकी तंदुरुस्ती की जांच करते रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने तेज दोपहर की धूप में बाहर जाने से बचने और जितना हो सके आराम करने की सलाह दी है। श्री मोदी ने लोगों को जानवरों और पंछियों को ध्यान में रखते हुए अपने घर, छतों, दुकानों और दफ्तर के बाहर पानी से भरे हुए बर्तन रखने की सलाह दी। श्री मोदी ने उन्होंने लोगों के जालियों की सलाह की जो अपने घर और दुकानों के बाहर घड़ों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उन्होंने पी सके। श्री मोदी ने सारे को इन मुश्किल समय दौरान पूर्ण संवेदनशीलता और हमदर्दी एक दूजे का ध्यान रखने की अपील भी की। पिछले कई दिनों तो अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे पंजाब हरियाणा के चंडीगढ़ में आने वाले दिनों मौसम के बदलाव बारे एक खुशखबरी है। चंडीगढ़ से भारतीय मौसम विभाग ने मौसम च महत्वपूर्ण राहत की भविष्यवाणी करद कल तो मई के अखीर तक तेज बारिश गरज चमक न कुछ थावां ते गड़ेमारी और 60 तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार न तेज हवावां बारे येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए ने। इस दौरान अतों सूबे केन्द्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ च मौसम गर्म ही रहेगा। पिछले 24 घंटों च पंजाब के बठिंडा 45.8 डिग्री सैलसीयस नाल सब तों गर्म रहा, हरियाणा के सिरसा च वध तों वध तापमान 40 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। भारतीय फौज ने 15 घंटों तों वध समय तक चले इस लगातार रात के ऑपरेशन ते दिन भर लगातार कोशिशों तों बाद हवाई सेना कसौली के सिविल अधिकारियों ते चंडीगढ़ प्रशासन ते होर स्थानक एजेंसियां नाल मिलकर तालमेल करके कसौली के पछमी ढलावां ते गुलबर्ग केवल ते अपर माल खेत्रां च लगे इक जंगल की अग तों काबू पा लिया। बीते कल दोपहर 3 बजे अग लगन तों बाद भारतीय फौज दी कसौली सिद्धू ने संगले जंगलां अते मुश्किल इलाकां च अग दे फैलाव नूं रोकण लई तुरंत कार्रवाई कीती। पछमी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने जा रहे हादसों की समीक्षा की। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर इनवान पन्नी वसेलवन ने श्रीलंका में रैपिड के बल्टीज दोनों खिताब जीतते दो सोने के तमगे अपने नाम कीते ने। उन्होंने एक फार्मेट फिल्ड च 6.5 अंक प्राप्त करके दोनों श्रेणियों च चैंपियन बनने का मान हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में कल मोहाली के न्यू चंडीगढ़ विखे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला शाम 7:30 बजे एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स नाल होगा। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव कमिश्नर वालों करवाई गई वोटर सूचना की विशेष टीबर स्कोर SIR प्रक्रिया की वैधता में बरकरार रखा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले दो होर मुलजमान किया गिरफ्तार। केन्द्र ने कहा देश हुण तक इबोला वायरस की बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वालों देश के वक्त हिस्सों चल रहे तापमान के मद्देनजर लोगों को सावधानी बरतने की अपील। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला शाम 7:30 बजे मोहाली विखे एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स नाल। इस दिन आई राष्ट्रीय खबरों का एक बुलेटिन खत्म होता है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 6:20। नमस्कार।
1: आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं माजिद अली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका इरादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। तफसील से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जावे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी की गुंजाइश रखी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों में खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीकाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबकत नहीं रखता। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियार से तजावुज किया है। اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.

0: चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजर सानी का काम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव फहरिस्तों का मुसविदा 5 अगस्त को शाये किया जाएगा और हतमी चुनाव फहरिस्त इस साल 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। दिल्ली के आला चुनाव अफसर ने कहा कि खसूसी नजरसानी का असल मकसद यह है कि कोई भी अहल शहरी चुनाव फहरिस्त बाहर न रह जाए और गैर अहल वोटर फहरिस्त में शामिल न होने पाए। जनाब अशोक कुमार ने कहा कि बूथ सतह के अफसर अगले महीने की 30 तारीख से घर घर जाकर दिल्ली चुनाव फहरिस्तों की तस्दीक करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनोग्रेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाति सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी को निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वो जिसमें पानी की कमी न होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वो अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम भी करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकोनी छतों दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उस सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राजस्थान छत्तीसगढ़ साहली आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख झारखंड ओडिशा तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मिश्र के खत्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 3-4 दिन के दौरान केरला माए लक्षद्वीप मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा रॉयलसीमा जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और शुमाल मिश्र के बाद हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान पेपर लीक मामले में 2 और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और आलिया नगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। CBI के मुताबिक उसने 3 तलबा की मुलजिम PV कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था जिसमें मुलिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के

0: निशानी होने पर सवाल उठाया है और ये भी कहा है कि वो गैर जानबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवता नैनी अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह लेने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फतेह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहानात के पेपर लीक मामले में 2 और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests 2 more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And now the news in detail. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The court said free and fair elections depend on accurate and credible electoral rolls and observed that the Election Commission's revision exercise aims to remove possible errors and duplication caused by migration, urbanization, and decades without an intensive revision. On the Supreme Court upholding ECI's decision to undertake SIR of voter rolls that started in Bihar, BJP leader Nitin Kohli, I beg your pardon, Nalin Kohli has said that the Election Commission is mandated under the constitutional scheme to take care

0: In badminton, India's top player HS Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, saying it is in consonance with the Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in the eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end Midday News.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया

0: 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इस पर जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनोग्रेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वह फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से यह भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारैक्काल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस

0: के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभो मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमापार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो एक ही कलाकार की करते हैं हम शुरुआत और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

चतुर नाद करके चुला किया चतुर

कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का सभी का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हिंदी सिनेमा में हमने एक से बढ़कर एक कलाकार देखे। किसी ने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया और तो किसी ने अपनी ट्रेजेडी से हमें रुलाया। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता या शानदार फिल्म मेकर ही नहीं थे बल्कि वो एक मुकम्मल इंसान थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी की हर परीक्षा को हंसते हुए मुस्कुराते हुए पार किया। जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं मदर इंडिया के बिरजू पड़ोस के सीधे साधे भोला और असल जिंदगी के मसीहा सुनील दत्त साहब के बारे में।

0: గారే గారే
1: గారే
0: గారే గారే
1: గారే గారే గారే గారే గారే గారే గారే
0: ఎక్క చతుర నార అమ్మ చోరగలది ఎక్క చతుర నార అమ్మ పకరగలకది.
2: जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं कलाकार सोहेल दत्त साहब या कहें कि बलराज दत्त जी के बारे में. पंजाब के झेलम जिले में जन्मे बलराज दत्त, जिन्हें दुनिया ने आगे चलकर सुनील दत्त के नाम से जाना, उन्होंने प्रसिद्धि पाई सुनील दत्त के नाम से. अगर हम देखें तो उनकी जो जिंदगी का सफर है वो किसी फिल्मी सफर से कम नहीं. विभाजन का दर्द सहकर जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब बिल्कुल खाली थी, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था. आपको मालूम है, फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त साहब ने बहुत संघर्ष किया. फिल्मों में आने से पहले दत्त साहब बस डिपो में चेकिंग क्लर्क का काम किया करते थे और उसके बाद उन्होंने रेडियो सैलून में एक बेहद लोकप्रिय उर्दोष यानी कि आरजे के रूप में अपनी पहचान बनाई. यानी कि जिस माइक से आज आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कभी इसी माइक के सुल्तान हुआ करते थे सुनील दत्त साहब. जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लेकर आज हम कर रहे हैं इस सफर के बारे में बात. तो सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से.

जी दोस्तों, आरजे बने रेडियो में और साथ ही साथ बस में टिकट कलेक्टर भी बने, लेकिन उसकी किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। और शायद यही वजह थी कि निर्देशक महबूब खान की कालजयी फिल्म मदर इंडिया आई और इस फिल्म ने सुनील दत्त साहब की तकदीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर्दे पर बागी बेटे बिरजू का किरदार निभाकर उन्होंने जो तहलका मचाया, उसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर एक और वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर दिए। सेट पर लगी भयानक आग से जब उन्होंने नरगिस जी की जान बचाई तो वो सिर्फ रियल लाइफ के नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो बन गए और दोनों की ये पावन मोहब्बत बाद में शादी के खूबसूरत बंधन में बदल गई।

आप जुड़े कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति और हम बात कर रहे हैं दत्त साहब के बारे में। सुनील दत्त साहब जिनके अभिनय का दायरा इतना बड़ा था, जिसमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, वक्त जैसी फिल्मों में जहाँ उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाए, बहुत ही गंभीर किरदार निभाए, वहीं दूसरी ओर पड़ोसन का भोला बनकर उन्होंने सबको हंसने पर मजबूर किया। बिंदु के प्यार में पूरी तरह पागल, बालों में तेल लगाया हुआ सीधा साधा भोला, कौन बोल सकता है उसे, बिल्कुल भी नहीं। और इतना ही नहीं, बतौर निर्देशक उन्होंने यादें जैसी अनोखी फिल्म बनाई जिसमें पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही अभिनेता थे और वो थे खुद सुनील दत्त साहब। ये प्रयोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके अलावा रेशमा और शेरा जैसी बड़ी बड़े बजट की फिल्म देकर उन्होंने सिनेमा को एक अलग और नया नजरिया दिया जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिली इस तरह की फिल्में बनाने की।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब के बारे में, उन सुनील दत्त साहब के बारे में जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो कि 2 घंटे की एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि एक एक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर के। जी हाँ, और भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि दुनिया के सिनेमा में, पूरे विश्व के सिनेमा में एक ऐसा स्पेशल, एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और वो फिल्म थी यादें। इसके बाद डाकुओं के जीवन पर उन्होंने फिल्म बनाई मुझे जीने दो, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी क्लासिकल फिल्म रेशमा और शेरा जैसी फिल्में जिन्होंने सिनेमा और विजुअली बेहद रिच और रियलिस्टिक बनाया। जिस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी एक गूंगे का किरदार दिया था। 70-80 के दशक में वो जानी दुश्मन, शान, परंपरा जैसी मल्टी स्टारर और बहुत से दमदार किरदारों में नजर आई, और उसके बाद इस शानदार सफर, फिल्मी सफर का आता है आखिरी पड़ाव। 2003 में निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS के साथ। पूरे 16 साल के बाद वो बड़े पर्दे पर नजर आए, और वो भी अपने बेटे संजय दत्त के साथ। उनके साथ रियल लाइफ में भी पिता बनकर आए फिल्म मुन्ना भाई MBBS में, और फिल्म में जब उन्होंने संजय दत्त को दी जादू की जप्पी तो वाकई में वो सीन ऐसा था कि हर किसी को, हर देखने वाले को रुला दिया इस सीन ने। उनके 5 दशक लंबे इस फिल्मी सफर में सबसे ज्यादा भावुक और यादगार शॉट रहा यही मुन्ना भाई MBBS का। और अगर हम देखें पीछे मुड़कर कि किस तरह संजय दत्त, जो सुनील दत्त साहब का एक सफर रहा, एक क्लर्क रहे, एक RJ रहे, एक रोमांटिक हीरो बने, एक डाकू बने, कॉमेडियन बने, और उसके बाद में बने क्रांतिकारी फिल्म मेकर, कहेंगे कि उनका जो सफर था वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जानदार शानदार था। और दोस्तों, उनका सफर तो जानदार शानदार रहा, और उसी तरह से शानदार जानदार हमारे श्रोताओं के संदेश भी हैं जो हम तक पहुँचे हुए हैं, और उसी में से एक ये संदेश हम ले लेते हैं। सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम ने हमें संदेश भेजा है गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से। हमारे साथ जुड़े हैं गांव रजौनी, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और परिवार के सदस्य। गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गन्नौर UP से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभापुर कैंट से दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं हमारे साथ, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं। पाटगंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन टलुनायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक अल्ताफ और इनके साथ हैं खदीजा बेगम, आफरीन कौसर, नीलोफर फातिमा के साथ। अपरकोट मौला

चौकुटी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े मोहम्मद सईद अब्बासी जी और इनके साथ है निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजा परिहर के साथ। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए, सुदर्शन मुखिया नेता सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और राजकुमार टूडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ रामनगर कोहरा जिला राजनांदगांव से, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं मलकापुर से, नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मुरियकर हमारे साथ जुड़े हैं और ये जो अगला संदेश है उसको भेजने वाले हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाहजीनगर देगलूर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे के साथ। अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं हमारे पास उदय भान पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों सुनील दत्त साहब के बारे में हमने आज जाना समझा और सुनील दत्त साहब के बारे में यही कहेंगे कि उनका मदर इंडिया से शुरू हुआ ये सफर लंबा चला, काफी शानदार रहा, जानदार रहा और उन्होंने सफर में न सिर्फ फिल्में की बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए, देश के लिए भी बहुत कुछ किया। सुनील दत्त साहब एक महान आत्मा 25 मई 2005 को हमसे दूर हो गई लेकिन उनकी अपनी फिल्मों, अपनी इंसानियत और अपनी नेकी के जरिए वो आज भी हमारे सभी के दिलों में जिंदा हैं। तो दोस्तों सुनील दत्त साहब को हमारी तरफ से शत शत नमन। कार्यक्रम का जो सफर है अब यहीं तक, अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए उन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म से, आशा जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत, और फिल्म का ये गीत आपको जरूर पसंद आएगा उम्मीद करती हूँ कि लता जी और मुकेश जी की आवाज में है मिलन फिल्म से ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है और ये गीत को सुनते ही याद आती है सुनील दत्त साहब की वो खूबसूरत सी प्यारी सी भोली सी सूरत। तो इसी गीत के साथ मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की

देखते हुए अपने घरों की बालकोनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले दो दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शिमाल मशरकी खित्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का भी इम्कान है। राजस्थान में जारी शदीद गर्मी के पेश नजर रियासत के 5 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा डिवीजन और शेखावती खत्ते के कुछ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि रियासत के ज्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागपुर, बीकानेर और दौसा समेत कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री से ऊपर चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने कहा है कि मुल्क में अभी तक इबोला वायरस के मर्ज का कोई वाकया पेश नहीं आया है। सेहत के मरकजी वजारत ने कहा है कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इस बीमारी के फैलने के बाद से इबोला की सूरत हाल पर गहरी नजर रखी जा रही है। जराए का कहना है कि हाल ही में एक शख्स युगांडा से आया था और इस शख्स में जिस्म में मामूली दर्द होने की अलामत पाई गई थी, लिहाजा उसे बेंगलुरु में देखभाल और तिब्बी इलाज मुआलजे के लिए सरकारी एपिडेमिक डिजीजेस हॉस्पिटल में अलग थलग रखा गया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद किलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी इको निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर मसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा भी किया। तजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत काबिल कदर इकतसादी तरक्की कर रहा है। उन्होंने ये बात टोरंटो में एक इस्तकबालिये में इजहार ख्याल करते हुए कही जिसका एहतमाम टोरंटो में भारत के कौंसल खाने ने किया था। इस इस्तकबालिये में कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तिहानात पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल पर गौर करने से इनकार पर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने शदीद नुक्ताचीनी की है। सोशल मीडिया एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ईरान से वाबस्ता किसी भी सफारतकारी में इस्लामाबाद का रोल मसला पैदा कर सकता है। अमरीका के सेनेटर ने दावा भी किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फिजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। अमरीका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी सालिस होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे प्रवर्तथेनी अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर

और जी आप सुनिए दहलीज फिल्म की गजल महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह की गाई हुई, कलाम है हसन कमाल का, मौसीकी रवि की।

लीजिए मेरी पसंद प्रोग्राम के आखिर में सुनिए दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म की गजल मौसीकी रविंद्र जैन की। आवाज हेमलता की।

मैं जो कुछ देख रहा हूं उस सब के बावजूद हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में मेरा यकीन बहुत पुख्ता है। सच तो यह है कि अगर मेरे अंदर ये यकीन न होता तो मेरे लिए मौसर तरीके से काम करना भी मुमकिन न होता। हालिया वाकयात ने मेरे बहुत से पुराने ख्वाबों को मुंतशर किया है, मगर एक बुनियादी नसबुल ऐन मेरे साथ है और कोई वजह नहीं कि मैं

तुम मुसलमान हो, मैं एक हिंदू हूं। हम अलग अलग अकीदे रख सकते हैं या चाहें तो कोई भी अकीदा न अपनाएं, लेकिन वो मुश्तरका तहजीबी मीरास जो तुम्हारी भी है और मेरी भी है, वो हर हाल में हमारी रहेगी। हमारा माजी एक है, इस माजी ने हमें आपस में बांध रखा है। फिर ऐसा क्यों हो कि हाल और मुस्तकबिल हमें एक दूसरे से दूर कर दे।

0: साहबो, नेहरू जी ने ये अल्फाज आज से 40 बरस पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों और असातिज़ा को खिताब करते हुए कही थी। इन लफ्जों में छुपा हुआ संदेशा आज भी हमारे लिए बामानी है।
1: और साहिबो, इन लफ्जों का सिलसिला हमें दूर उफ्तादा यादों की एक बस्ती का रास्ता दिखाता है। वो बस्ती भी अलग अलग सिमतों से आती हुई लहरों को एक दूसरे से मिलाती है।

0: गंगा और जमुना के संगम पर बसा हुआ शहर इलाहाबाद, जहां मुगल बादशाहों ने बाग बनवाए और किले और मकबरे और मस्जिदें।
1: इस शहर का एक और नाम प्रयाग है, जहां कुंभ का मेला लगता है और जहां मुकद्दस गंगा और जमुना के अलावा एक अनदेखी लहर सरस्वती के नाम से जानी जाती है।

0: नेहरू जी का जन्म इसी शहर में हुआ था। यूनिवर्सिटी के करीब से एक सड़क जो संगम की तरफ जाती है, इसी सड़क पर एक खूबसूरत हवेली है, आनंद भवन।
1: आनंद भवन सिर्फ एक इमारत नहीं, एक तारीख भी है। नेहरू जी के बचपन और लड़कपन की बहुत सी यादें आनंद भवन से मंसूब हैं। इस इमारत में कितने मौसम झेले, दुख के और सुख के, गुलामी के और आजादी के, ये इमारत हमारे सफर की गवाह भी रही है।

अगर कोई भी मेरे बारे में कुछ सोचना पसंद करे, मैं चाहूंगा कि वो इतना जरूर कहे कि इस शख्स ने अपने तमाम तर दिल और दिमाग के साथ हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के लोगों से मोहब्बत की और इसके बदले में इन लोगों ने भी उस पर अपनी मोहब्बतों की बारिश की।

0: नेहरू जी की शख्सियत के कई रूप हैं। एक सियासी मुदब्बिर,
1: एक दानिश्वर,
0: एक सामाजिक कारकुन,
1: एक कौमी नेमार,
0: एक फलसफी,
1: एक अदीब
0: और एक ख्वाब परस्त।

0: इस शख्सियत के कितने रूप हैं और हर रूप के कितने रंग।
1: श्री प्रकाश ने कहा था,
0: नेहरू जी को अपने बारे में बातें करने की आदत नहीं, अपनी अजमत को उन्होंने

0: सहूलत के साथ संभाल रखा है कि वो बजाहिर आम इंसानों जैसे दिखाई देते हैं। हर जगह हर माहौल में खुश और मतमईन, अपने गिर्दोपेश से अच्छी तरह हम आहंग।
1: नेहरू जी के एक दरीना रफीक, एक मुमताज सहाफी चिलापति राव के लफ्जों में,
0: उनकी शख्सियत बहुत मजबूत और मिली जुली थी। तालीम के लिहाज से अंग्रेज, सकाफत के एतबार से मुसलमान और पैदाइश के लिहाज से हिंदू, इस एक वहदत में कितनी कसरतें आबाद थी
1: और कैसी जिंदा तवाना फाल शख्सियत थी। एक शख्सियत जिसने अजमतों के हिसार में भी अपनी इंसानियत को महफूज रखा। अपने एक दोस्त के लफ्जों में,
0: जवाहरलाल बहुत सुबह सवेरे उठ बैठते थे, कुछ वर्जिश करते थे, फिर नाश्ता। मुख्तलिफ औकात के खानों में सबसे ज्यादा मजा उन्हें नाश्ते के वक्त आता था। खुद दलिया खाते, मेहमानों को बड़ी नफासत के साथ तराश कर फलों की काश्त पेश करते जाते, दिलचस्प कहानी सुनाते।
1: नाश्ते के बाद वो नीचे उतरते और बाहर जाते, मिलने वालों की एक भीड़ जमा होती,
0: उनसे फारिग होकर अपने पालतू जानवरों की फिक्र,
1: फिर दफ्तर की तरफ। एक एक मिनट का हिसाब मुकर्रर था।
0: सरकारी ओहदेदार, बैरूनी मेहमान या दूसरे लोग, उनसे मुलाकातें। इतने में दोपहर आ जाती।
1: दिन का खाना बहुत हल्का होता था, कभी हिंदुस्तानी कभी मगरबी, फिर एक वक्फा आराम का
0: और फिर दफ्तर के काम। इस तरह शाम हो जाती।
1: शामों को कभी लोगों से मुलाकात और मजाकरात, कभी किसी जलसे से खिताब, कभी वक्त मिला तो कोई कल्चरल प्रोग्राम देख लिया।
0: खतों किताबत के मामले में भी वो बहुत चौकस थे, आने वाले हर खत का जवाब देते थे। बहुत से खत बोलकर लिखवाते, बहुत से खत खुद लिखते।
1: ये एक गैर मामूली इंसान की रोजमर्रा आम जिंदगी का बजाहिर आम सा खाका था। इसी खाके में हमें कई गहरे, घने, पुरतेज और पुरअसरार नक्श भी नजर आते हैं।
0: वो आंखें जिन्होंने नेहरू जी को देखा था, हमें बताती हैं
1: कि महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन की तरह आम आदमी में उनका यकीन बहुत मुस्तहकम था। वो आम आदमियों से आम आदमी की सतह पर मिलते थे, गुस्से या धमकी के बजाय हर एक को दलीलों से कायल करते।
0: उन्हें मामूली से मामूली काम करने में तकलीफ न होता, नौकरों को ना वक्त कभी जहमत न देते,
1: आम आदमियों के अंदाज में बात करते, गहरे मसलों को भी सीधी सादी जबान में पेश करने का फन खूब जानते थे।
0: उनकी मजहबियत भी अक्सर गैर मजहबी थी। अपने रवैयों की हर सतह पर वो एक सेक्युलर इंसान थे। उन्हें यकीन था कि मुस्तकबिल पर साइंस और रूहानियत दोनों की हुक्मरानी रहेगी।
1: वो अफसरदा भी होते थे, कभी नाराज और दिल बर्दाश्ता भी, मगर एक अनोखी ताकत उनके अंदर मौजूद थी। हर हाल में अपने सुकून को वो कायम रखते थे। ये सुकून एक गहरी रियाजत, एक दाखिली तरबियत का तोहफा था।
0: नेहरू जी खुदा के मजहब से ज्यादा इंसानियत के मजहब में यकीन रखते थे। वो मुदब्बिर थे, सियासतदान नहीं। अकल से ज्यादा भरोसा उन्हें बसीरत पर था।
1: नेहरू जी की शख्सियत एक तख्लीकी इंसान की शख्सियत थी। जिंदगी के आम मामलात में उनका रवैया एक जदीद इंसान का रवैया था, साइंसी और अकलियत पसंदाना, मगर उनकी बसीरत मंतिक अक्साइंसी फिक्र से आगे जाने की ताकत भी रखती थी।
0: मुमताज मौर्रिख टॉइनबी ने कहा था, नेहरू के लिए सियासी जिंदगी अपने अहमियत के बावजूद उनकी अपनी हस्ती का सबसे बड़ा अंसुर नहीं थी।
1: अकलियत की तरह सियासत भी नेहरू जी के नजदीक अपनी हुदूद रखती थी।
0: उनके लिए सियासत अपने गिर्दोपेश के लोगों की खिदमत का एक वसीला थी,
1: और फिर खिदमत का ये सिलसिला भी अपने वतन की हदों से आगे पूरे इंसानी बिरादरी तक जा पहुंचा।
0: ये शख्सियत एक वसी कसर जिहाद शख्सियत की तरह एक साथ कितने रंगों को समेटती थी,
1: एक साथ कितने सिमटों में सफर करती थी खुशबू की तरह।

0: जिन आंखों ने नेहरू जी को देखा है उस शख्सियत को उसके हर रूप में सामने लाती है। एक रूप यह है,
1: दिल्ली में एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेट पंडाल में मौजूद थे। खुले इजलास में रेला जो आया, धकापेल शुरू हो गई।
2: पंडित जी पहले तो मजमे को नागावारी से घूरते रहे, दो तीन बार गुस्से में होंके फिर कूद कर मजमे में पहुंच गए। धपा धप लोगों के कांधों पर हाथ मारने लगे, जिस कांधे पर भी हाथ पड़ा वो नीचे बैठ गया।
1: बेगम अनीस किदवाई का बयान है कि अपनी इब्तदाई जिंदगी में पंडित जी शोलाए जवाला थे, मगर जंगे आजादी में शरीक हुए तो हैरत होती थी, इतने सुलह जो कैसे हो गए। बादशाहों जैसी मुतलब्बिन मिजाजी रखते हुए ऐसे मुस्तकिल मिजाज जमहूरियत पसंद कैसे हो गए।
0: ये एक हैरान कर देने वाली हस्ती थी। एक तरफ जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बरकतों से अच्छी तरह बाखबर,
2: दूसरी तरफ साइंसी फिक्र की नारासाई का एहसास भी।
0: एक तरफ एक नए मुआशरे की तामीर का हौसला,
2: दूसरी तरफ माजी और हाल में एक नए रिश्ते की तलाश।
0: एक तरफ हकीकत पसंदी पर जोर,
2: दूसरी तरफ एक ख्वाब परस्त और रूमानी।
1: प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फारूकी के लफ्जों में,
2: पंडित जी हिंदुस्तान की आबरू, मशरक की इज्जत और तहजीब व तरक्की की अलामत थे। उन्होंने तारीखी तसानीफ का गरा कद्र जखीरा छोड़ा है और अपने अदबी जौक, जादते फिक्र, साइंसी मिजाज और नफसियाती बसीरत से फिक्र इंसानी को समझने की कोशिश की है।
0: उन्होंने तारीख को वाकयात की खतौनी नहीं बनाया, बल्कि उसे कौमी हाफजे की बाजियाफ्त का जरिया बनाया है।
1: इसीलिए ये फैसला दुश्वार है कि वो बड़े दर्जे के सियासतदान थे या मुअर्रिख या अदीब।

0: नेहरू जी ने एक कौम को बनाया, एक नए माशरे, एक नए तरक्की पसीर कल्चर की दाग बेल डाली, एक नए जहन की तश्कील की
1: जो हर तरह के तवहमात से आजाद हो,
2: जो अपने मुश्तरका मीरास में यकीन रखता हो,
1: जो मजहबी इदाइयत, तासब और फुरका परस्ती और जहालत के खिलाफ सरगर्म हो,
2: जो तारीख के एक मुसबत और रोशन तसव्वुर से बहरावर हो,
1: जो माजी और हाल और मुस्तकबिल के रिश्तों को समझ सके,
2: जो पुराना भी हो और नया भी,
1: जो अपने हाल में गुम ना हो और अपने माजी और अपने मुस्तकबिल दोनों को अजीज रखता हो।

0: नेहरू जी की तसानीफ में इसी जहन का इजहार हुआ है।
1: रात दिन की मसरूफियतों के बावजूद अपनी जिंदगी के एक बड़े हिस्से में कैदोबंद की सख्तियां झेलते रहने के बावजूद,
0: समाजी तामीर और कौमी इर्तिका के कामों में मसरूफ रहने के बावजूद,
2: नेहरू जी ने अपने ख्यालों और ख्वाबों के चिराग रोशन रखे।
1: उन्होंने संगलाख जमीनों में फूल उगाए।
0: ये वाकया अहमदनगर के किले में असीरी के जमाने का है। वक्त का सही मसरफ क्या हो, रफीकों ने फैसला किया सहन जो वीरान पड़ा हुआ है उसमें एक बाग लगाया जाए। मौलाना आजाद की जबानी ये कहानी सुनिए।
2: जमीन की दुरुस्तगी का मामला इतना आसान न था। अहाते की पूरी जमीन दरअसल किले की पुरानी इमारतों का मलबा है। जरा खोलिए और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े और चूने और रेत का बुरादा हर जगह निकलने लगता है।
1: तख्तों के दाग बेल डालकर दो दो तीन तीन फीट जमीन खोद दी गई। बाहर से मिट्टी और खाद मंगवाकर उन्हें भरा गया। कई हफ्ते इसमें निकल गए। जवाहरलाल सुबह शाम फावड़ा और कुदाल हाथ में लिए कुहकुंदन और काह बर आवर्दन में लगे रहते थे।

ये किताब 1944 के अप्रैल से सितंबर तक 5 महीनों के दौरान मैंने अहमदनगर के किले में लिखी थी। मुझे नहीं मालूम कि लोग अपनी तहरीरों के बारे में क्या महसूस करते हैं। मैं तो जब अपनी ही पहले की लिखी हुई कोई चीज पढ़ता हूं तो एक अनोखी सनसनी का एहसास होता है। ये एहसास उस वक्त और शदीद हो जाता है जब उस तहरीर ने कैद खाने के अजीबो गरीब माहौल में जन्म लिया हो और उसे कैद के बाहर की खुली फजा में पढ़ा जा रहा हो। मैं अपनी इस तहरीर को पहचान तो लेता हूं मगर पूरी तरह नहीं। लगता है किसी और के लिखे लफ्ज हैं जो जाने पहचाने से हैं। लिखने वाला मुझसे करीब तो था

और कोशिशों का दायरा एक साथ कितनी दुनियाओं में फैला हुआ है। खुशबू की एक लहर है जो अपनी हदों में आने वाली हर शय को, हर शख्स को एक संदेशा दे जाती है। यह संदेशा सिर्फ एक शख्स का नहीं, एक कौम की इज्तिमाई तारीख और तहजीब का संदेशा भी है। रास्ते की हर दुश्वारी, हर दीवार को पार करती हुई उस लहर का सफर अभी जारी है।

मुझे जो सुनी होटल फिल्म का तो गाना आशा भोसले और मोहम्मद मनोहर उदास की आवाजों में, नगमा निगार इंदिवर मौसीकी उषा खन्ना की।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश हम हिंदुस्तानी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ, तर्ज बनाई है उषा खन्ना ने।

यह लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गुलिस्ता हमारा फिल्म का नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी एस डी बर्मन की।

पसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

और यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, अब क्या होगा फिल्म का टाइटल सॉन्ग, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों का गाया हुआ मौसीकी उषा खन्ना की।

0: परियों सा कहां से लाई हो बोलो।
1: अब क्या होगा फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। और इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी है। अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के अख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इमकानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गजा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है और उसने ही 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मनसूबा साजी की थी। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आइन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीकाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम गैंगटोक में सिक्किम यूनिवर्सिटी के सातवें जलसा तकसीम असनाद में मेहमान खसूसी होंगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि 33 मजामीन में तकरीबन 14,000 डिग्रियां अता की जाएंगी। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी इको निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वो जिस्म में पानी की कमी न होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वह अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। राजस्थान में जारी शदीद गर्मी के पेश नजर रियासत के 5 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा डिवीजन और शेखावती खत्ते के कुछ हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री से भी ज्यादा हो सकता है। हमारे नवनिगार ने खबर दी है कि रियासत के ज्यादातर हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से अब्राहम समझौते में शामिल होने के सवाल पर गौर करने से इनकार पर रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राम ने शदीद नुक्ताचीनी की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राम ने कहा कि ईरान से वाबस्ता किसी भी सफारतकारी में इस्लामाबाद का रोल मसले पैदा कर सकता है। अमरीका के सेनेटर ने यह दावा भी किया कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं। अमरीका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वो गैर जानबदार नहीं हो सकता क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। ग्राहम ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो अब्राहम समझौते पर शामिल होने की सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का वाज तौर पर जवाब दे। इससे पहले पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने के नजरिए को रद्द कर दिया था। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गजा में हमास की फौजी शाख के नए सरबराह और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की साजिश तैयार करने वाले बड़े मुलजिम मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है। इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर के साथ एक मुश्तरक बयान में इसराइली फौज ने कहा है कि वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा इसराइल कार्स ने इस कार्रवाई का हुक्म दिया था। इसराइल ने उदय पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली आम शहरियों और फौजियों की हलाकत, उन्हें अगवा करने और उनके जख्मी होने में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था। मोहम्मद उदय ने हाल ही में इजादीन अल हद्दाद की जगह ली थी जो इसराइल के इससे पहले के हमले में मारा गया था। इसराइल के वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल हर उस शख्स को निशाना बनाता रहेगा जो 7 अक्टूबर के हमलों में मुलविस है। इधर इसराइल ने जनूबी लबनान में शदीद फदाई हमले किए हैं। मीडिया इत्तलात मुताबिक कल इन हमलों में 31 अफराद मारे गए जबकि 40 जख्मी हुए। ड्रोन हमलों में तेजी आने के तनाजुर में नेतन्याहू ने फौज को हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया था। इसी के बाद जनूबी लबनान में ये हमले किए गए हैं। अकवाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवतन नैनी अकवाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान पर शदीद नुक्ताचीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वाटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरक अहद का अदा किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। इसराइल की फौज का कहना है कि उसने गजा में हमास की फौज के नए सरबराह मोहम्मद उदय को हलाक कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 5 बजे चाहते हैं। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: FM बैंड 103.6 MHz से आकाशवाणी दा ए अमृतसर केंद्र ए। नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस सिंधी ए पंजाबी सेवाई। शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा दे प्रोग्राम शुरू हुंदे ने। सामीन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराय की प्रोग्राम झोंक माहिती।

साईं झूलेलाल दी इबादत विच गाया वंजन वाला है गीत दमादम मस्त कलंदर। माता ही कोई सिराय की बिरादरी विच इंझा बंदा होसी जे ना सुन रख्या होसी। बहु वड्डे वड्डे गायका ने एक गीत गाया है। अज असाकू रूपेश चोपड़ा जी एक गीत गा के सुने सन दमादम मस्त कलंदर।

सखी शाबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाले मेरी पत रखियो बाला झूले ला।

सेवर दास सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर ईदा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर।

पंजे मां में बालड़े आईया बला झूले लालड़े पंजे मां में बालड़े आईया बला झूले लालड़े सिंधड़ी दा सेवन दा सती शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर।

देवड़ दास सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर द पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो।

लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सखी शाबाज कलंदर।

कैया चौका लाया हाय रात दमे लुटी जान दिए हाय रात दमे लुटी जान दिए मैं कमली दा ढोला मैं

आख गयो वे साई मुड़े ना आयो, आख गयो वे साई, आख गयो वे साई मुड़े ना आयो।

वाह जी वाह, बहुत बढ़िया रुपेश चोपड़ा जी। निंदर ते कईयां हाय कईयां झोंका लाइया। हम असा तुहाडे कन्नों एक बी फरमाइश करे सू, एक बिया सूफी गीत।

मार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है, इश्क पे महा बरोबर इश्क दाता तखेरा, भा सड़ेंदी कख का मेनू इश्क सड़ेंदा जेड़ा, मार डाढ़ी इश्क आतिश लाई है।

हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, हुल हुला के इश्क जुआया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, मोहब्बत डाडा शोर मचाया, था था नाच नचाई है यार डाडी, इश्का आतिश लाई है यार डाडी, इश्का आतिश लाई है, ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच न समाई है यार डाडी,

इश्क जो आवा मैं सर चाई, शर्म हया पहले सट लियाई, शर्म हया पहले सट लियाई, इश्क नु मलामत लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है, ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है यार डाडी, इश्क आतिश लाई है, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, थी गदागर मस्त करेंदा, थी गदागर मस्त करेंदा, इश्क अवेड़ा बहन न देंदा, थी गदा

यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी, सीने दे विच ना समाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है, यार डाडी इश्क आतिश लाई है। ओ सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई

0: वाह जी वाह वाह वाह वाह, रुपेश चोपड़ा जी बहुत वधिया, यार दाढ़ी इश्क आतिश लाई है, बहुत वधिया सूफी संगीत तुसा सा कुछ सुनवाए असा को इजाजत देवो, हम प्रोग्राम खत्म थी दा वेला थी गए, मैं तो रुपेश चोपड़ा जी आप सब सुनने वाले का नु इजाजत मंगने हैं, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, वल मिलसू एजे ही कोई बे प्रोग्राम दे नाल, राम राम जी।
1: सामीन हुनी तुसी सुन रहे सी सराय की प्रोग्राम झोक माही दी, हुन वेला हो गया प्रोग्राम देश पंजाब दा।

Ganga.

ਦੁਨੀਆਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ।

गलांदोरिया ते होते गुलाबी ना तू बतला दे मक्खियां शराबी

ਲੱਗ ਲਾਮਕ ਜਾਣ ਸਾਰੀਆਂ

0: अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम
0: राम राम। तो लोकेंद्र भाई,
1: हाँ अरुणेश भाई,
0: आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज हम अपने इस कार्यक्रम कृषि जगत लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि हमारे जो श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, वो जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी नई नई जानकारी देते हैं अपने किसान भाई बहनों को। तो एक ऐसी ही योजना है AGRI उड़ान योजना, तो क्या इस योजना के बारे में आइए कुछ बताते हैं।
1: बिल्कुल अरुणेश भाई, देखिए एग्री उड़ान योजना एक कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। और यह कार्यक्रम जो है इसका नीति आयोग और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के सहयोग से संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है अरुणेश भाई, मैं हम बता दें कि इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक समाधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
0: बिल्कुल लोकेंद्र भाई, आपने सही जानकारी दी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो नीति आयोग है और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के सहयोग से ये एग्री उड़ान योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत जो खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप्स हैं और उनसे जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो है एक तरीके का मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अलावा जो एक तकनीकी सहायता भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसों की जरूरत है तो फाइनेंसर यानी निवेशक भी चाहिए होता है, तो निवेशकों से जुड़ने का अवसर भी दिया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो ये योजना जो है ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देती है जो हमारे किसानों की आय को बढ़ा सकें, खेती को आधुनिक बना सकें। और इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है और हमारे किसान भाई बहनों की जो खेती से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाता है।
1: बिल्कुल, हमारे भाई बहन इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं।
0: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि लोकेंद्र भाई आप जानते ही हैं, हमारे जो किसान भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, वो उनको भी पता ही है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की सफल यात्रा करने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। और इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO। और इस संगठन द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा सम्मान दिया गया है और उस सम्मान का जो प्रतिष्ठित सम्मान है एग्रीकोल।
1: तो कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुनते हैं इसको, उसमें क्या क्या है और उसने बता रही है संध्या गुप्ता।
0: आइए सुनते हैं कृषि समाचार दर्शन।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक नेताओं को प्रदान किए जाने वाले इस सम्मान से इस बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सम्मानित हुए हैं। FAO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू द्वारा यह पदक प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि को भारत के किसानों को समर्पित किया है। इस सुखद समाचार से भारत के कृषि क्षेत्र में खुशी की लहर है और कुछ किसान मित्रों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रसन्नता को हमारे साथ साझा किया है।
3: ईश्वर दयाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव सांवली का रहने वाला हूं और 40 सालों से जो है कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूं। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इस महान निदेशक के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला पदक से नवाजा गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा सम्मान है, जो मोदी जी की योजनाओं के द्वारा भारत में जो FPO का निर्माण किया गया और सभी किसानों को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया जिसे किसान उत्पादक समूह के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ साथ जहर मुक्त खेती के बारे में किसानों को जागृत किया गया जिसके द्वारा लागत में कमी एवं फसलों के

0: अंदर न्यूट्रेंट की जो कमी थी उसको दूर किया गया, उसके अंदर जो नुकसान जहर फसलों से होते थे उसको जैविक तौर पर करने से जो है उनसे छुटकारा मिला। इसके साथ साथ मोदी जी ने जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको हमारे दैनिक भोजन की सूची है उसमें शामिल किया गया, और इसके साथ साथ किसानों को आय में भी उसका फायदा हुआ। और मोटे अनाज जिनको पहले लोग कम यूज करते थे अपने भोजन में, जबकि गुणवत्ता में वो आम रूटीन की जो गेहूं एवं चावल है उससे बहुत ज्यादा गुणकारी है। और इस सारे परिवर्तन का श्रेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और उनको जो सम्मान जो है रोम के अंदर उपराष्ट्र महानिदेशक के द्वारा दिया गया, ये भारत के किसानों का ही सम्मान है। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, और इसी प्रकार से वो हमारे किसानों को जागरूक करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने किसान भाइयों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी वो इसी प्रकार से निरंतर किसानों को उन्नति के मार्ग पर लेते चले आएंगे। धन्यवाद।
1: मैं एसपी महोदय गाजियाबाद से, मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक खासतौर से कृषि क्षेत्र में समग्र विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने, किसानों का स्तर ऊंचा करने, खाद्य शेष की जमा बढ़ाने के संबंध में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाता है, जो आज रोम में माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये सम्मान हमारे देश के समस्त किसानों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान प्रतीत हो रहा है, और पूरे देश के लिए बड़ा सम्मान और गौरव का विषय है। सारे लोग बड़े ही उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इधर के वर्षों में लगातार सरकार द्वारा किसानों को दिए गए सहयोग के कारण और उनके मार्गदर्शन के कारण कृषि में काफी उन्नति हुई है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को सरकार ने आर्थिक सहायता समय समय पर प्रदान की है। भारत में एक समय ऐसा था कि अन्न की बड़ी कमी हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये निश्चित है कि जब देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है तभी यह संभव हो पाया है, बिना कृषि उत्पादन के बढ़े ये चीजें संभव नहीं हो पाती। इधर के सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो उनमें भी कृषि का ही काफी योगदान रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री ने तमाम प्रयासों से, तमाम मार्गदर्शनों से लोगों को उत्साहित किया, सहयोग प्रदान किया, तकनीकी विकास में वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान रहा है। और कुल मिलाकर के आज ये एक अच्छा दिन आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो पूरे देश के किसानों के लिए गर्व और फख्र का विषय है, और हम सब इससे बड़ा आनंदित और आह्लादित महसूस कर रहे हैं। इस सम्मान से निश्चित है एक प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिकों को भी, किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी, और उसका जो एक समग्र रूप देखने का मिलेगा कि कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, फलों के उत्पाद को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, और उस माध्यम से भी देश में विदेशी मुद्रा आएगी, जिसका कुल मिलाकर के जो एक असर होगा वो किसानों की उन्नति होगी। इधर के सालों में सरकार के लगातार प्रयासों और मार्गदर्शन से कृषि तकनीक में बड़ा विकास हुआ है और किसानों ने उसको अपनाया भी है। और पहले खासतौर से सिंचाई के साधन इतने सीमित हुआ करते थे, किसान फसलें तो बो लेता था लेकिन उसकी सिंचाई उचित न हो पाने के कारण फसलें सूख जाती थी, उत्पादन उतना हो नहीं पाता था। लेकिन इधर के 4-5 वर्षों में सरकार ने सौर ऊर्जा चालित पंपिंग सेट्स को बढ़ावा दिया है, सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, नहरों का विस्तार हुआ है, नलकूपों का विस्तार हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित नलकूपों के माध्यम से तो हम लोग खुद भी अपने गाँव में देखते हैं कि काफी परिवर्तन आया है, बिजली पर निर्भरता घटी है, तकनीकी के सहयोग से खेती में तो आमूलचूल परिवर्तन आया है।
2: मैं किसान मनसाराम यादव, ग्राम संसारा, पोस्ट बीजापुर, ब्लॉक हैदरगढ़, जिला बाराबंकी। माननीय प्रधानमंत्री जी को रोम में कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च

0: करते हैं। हम सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। हम किसान भाइयों ने प्राकृतिक खेती और फ्री अन्न की खेती, समस्त खेती हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देते हैं।
1: नमस्कार, चित्रकूट से योगेश जैन, प्रगतिशील किसान। आज हमारे क्षेत्र के सभी किसान बहुत प्रसन्न है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को रोम में खाद एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एग्रीकोला पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। FAO के माध्यम से इस सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई, अपने उत्पाद किसान स्वयं बाजार में बेच सकें ऐसी व्यवस्था की। पहले जो किसान बिखरे हुए थे वह संगठित हो गए हैं तथा FAO के माध्यम से वह अपना उत्पाद देश एवं विदेश में भेज सकते हैं तथा अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह पुरस्कार माननीय मोदी जी ने किसानों को समर्पित किया है। उसमें भारत में वर्तमान सरकार ने टिकाऊ कृषि, सिंचाई संसाधन एवं प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को जीरो बजट की एक जो प्रोत्साहित किया है, किसान कम खर्च में अच्छा उत्पाद अपने खेतों में कर रहे हैं। बुंदेलखंड जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसके 8 जिलों में प्राकृतिक खेती हो रही है। चित्रकूट में मैं स्वयं इसका चैंपियन फार्मर हूँ। इसके उत्पाद में रासायनिक खाद एवं दवाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य लाभ का सबसे बड़ा फायदा है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, हम अपने जो मिलेट्स, बाजरा और सभी अन्न को भूल गए थे, बाजरा में तो सर्वाधिक सरकार ने जोर दिया है और उसके 11 लाख किसान है पूरे देश में, उनको प्रोत्साहित किया है और एक अच्छा उत्पादन हम लोगों ने दिया है सरकार को, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है और हम अपने मिट्टी को भी जीवित कर रहे हैं। किसानों को भी अच्छा मूल मिल रहा है। इसी प्रकार पशुपालन में भी इस सरकार ने पशुओं को बीमारी के लिए जो जितना अच्छा प्रबंध किया है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी अब किसानों के द्वार पे आती है तथा जो पशु अपने संसाधन से किसान चिकित्सालय नहीं ले जा सकता था, वह भी अब एम्बुलेंस के माध्यम से जाकर अच्छी चिकित्सा मिल रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस सरकार को तथा मोदी जी के मिले हुए पुरस्कार को। उन्हें बधाई है कि वह भारत के अलावा भी विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हम किसानों की सभी की दुआएं उनके साथ हैं। देखिए, अपने देश में सम्मान पाना या अपने क्षेत्र में सम्मान पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब विदेश में कोई सम्मान मिलता है, हम ही लोग हैं अगर बाहर कहीं सम्मान पाते हैं तो उसकी एक अलग ही महक, एक अलग ही चमक होती है। माननीय मोदी जी को रोम की धरती में जिस प्रकार का सम्मान मिला है, उससे देश का भी नाम बढ़ा है तथा देश के किसानों का सीना चौड़ा हुआ है और मस्तक गर्व से ऊंचा उठा है कि नहीं, खेती घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है और जो खेती में किसान हट रहा था वो पूरी तन्मयता से जुड़ रहा है। सरकार पूरा जो साथ दे रही है, कंधे से कंधा मिलाकर किसान भी चल रहा है और कृषि प्रधान देश हमारा रहा है और बीच में कुछ भ्रांतियां गड़बड़ियां आई थी, अब पुनः कृषि प्रधान की ओर जा रहे हैं सभी किसान।
2: नमस्कार, वंदे मातरम। मैं किसान नरेंद्र सिंह राठौर पिछले 14 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और मैं धार जिले के मध्य प्रदेश में निवासरत हूं। अभी हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय रहा है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश यात्रा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी को यह समझ लिया हमारे पूरे देश के किसानों को एक सम्मान मिला है, ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एग्रीकोला पदक में सम्मानित किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा सम्मान को भारत के लाखों किसानों को, अन्नदाताओं को समर्पित किया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे लिए बड़ी एक उपलब्धि है और मैं पिछले 14 से 15 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ, जो एक पहल है आत्मनिर्भर भारत की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भर जो कृषि है, आत्मनिर्भर भारत है, ये वो सपना देखते हैं। तो इस सपनों को पूरा करने के लिए मेरी एक पहल है पिछले 14 सालों से और मैं कई किसानों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती जो होती है वो हमारे स्वयं के, जो हमारे देश में जो चीजें हमें

0: है, जैसे गाय है, गोबर गोमूत्र है, जो प्राकृतिक संसाधन उनके आधार पे प्राकृतिक खेती होती है, इसमें किसी भी बाहरी इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मतलब निर्भरता इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और ये जो कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, ये पूरी तरह से गो आधारित है, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके इसको करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को काफी सहयोग दे रहे हैं। और ये हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि इतना बड़ा सम्मान वो भी विदेशी धरती पे हमारे प्रधानमंत्री को मिला। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित होने पर आप सभी किसान भाइयों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शुभनंदन लाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो लोकेंद्र भाई, अभी हमारे किसान भाई बहनों ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि समाचार दर्शन के बारे में सुना और ये पता चला इससे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन विभाग यानी FAO द्वारा एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार साल 2026 के लिए दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और अपने जो है श्रोताओं का मनोरंजन कराते हैं।
3: बिल्कुल अरुणेश भाई, अब सुनवाते हैं ये उपदेश कलाकार है शिवराम।
4: ईश्वर भजन किया कर बंदे जो

0: अरुणेश भाई, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे शिवराम सिंह
1: जी। लोकेन्द्र भाई, और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम कृषि जगत का समय समाप्त हो रहा है, तो आइए
0: इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब गजलों के कार्यक्रम में सुनते हैं ये पहली गजल।

0: आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रात सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अम्बेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और

0: पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के बजट में घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पारदर्शिता, जवाबदेही और तय समय सीमा के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। बैठक में मॉनसून की तैयारियों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जलभराव की समस्या को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय और पोताई की व्यवस्था, पौधरोपण अभियान, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा संबंधी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो मंडे और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का गंभीरता से पालन करने की अपील की, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने लोगों से भरपूर पानी पीने, शरीर को हाइड्रेटेड रखने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पशु पक्षियों का भी ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि घर, छत, बालकनी, दुकान और आसपास उनके लिए पानी तथा छांव की व्यवस्था जरूर करें। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: इसमें हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनोग्रेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने आज शाहबाद डेयरी के सी ब्लॉक, सुनहरी चौक और लाला स्कूल रोड क्षेत्र में सड़क तथा नाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य मुख्यमंत्री विकास निधि के अंतर्गत किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: श्री सिंह ने बताया कि शाहबाद डेयरी क्षेत्र में लंबे समय से खराब सड़कों, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में कोई भी ऐसे ब्लॉक नहीं छोड़ा जाएगा जहां पीने के पानी की समस्या बनी रहे। श्री सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। श्री सिंह ने अधिकारियों को सड़क निर्माण की समय सीमा करना पहले से तय करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि कोई सड़क लंबे समय तक अधूरी या खुदी हुई पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
4: वैसे तो इसी साल लगभग सबात डेरी का 90% काम पूरा हो जाएगा। दूसरा, भवाना से लेकर सबात तक की नई ड्रेन, जिससे कि हमारे भी गलियारों में नालियां भरी रहती है, नाले साफ नहीं होते क्योंकि बाहर पानी नहीं निकल पाता, तो बड़े नाला, जिसके कारण से भविष्य के अंदर पूरे सबात डेरी के अंदर कभी भी नालों में पानी नहीं दिखाई देगा, ऐसी व्यवस्था भी। एक छोटा हॉस्पिटल बनाने की भी बात, लाल बिल्डिंग को इसी वर्ष खुलवाकर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी हम शुरू कर देंगे।
3: श्री सिंह ने जानकारी दी कि भवाना से शाहबाद डेयरी तक आदर्श ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। आजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि राजौरी गार्डन विधानसभा में लगभग 1,33,00,000 रूपये की लागत से अंबेडकर चौपाल का निर्माण कराया जायेगा, वहीं हरिजन चौपाल का काम 1,08,00,000 रूपये की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही लगभग 1,42,00,000 रूपये की लागत से डब्ल्यू चौक, खयाला स्थित शमशान घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और बेहतर जन सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
5: प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई भी काम ये हमारा नहीं छूटेगा। ये ऐसा भवन होना चाहिए और यहाँ पे अपने कार्यक्रमों के अलावा भी आदमी सुस्ता सके, बैठ सके, बात कर सके, और जितने भी यहाँ पे भवन बनेंगे, चौपाल बनेंगे, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, सारे एयर कंडीशन। क्या ये कि पानी कम आ रहा है, कहीं से भी लाना पड़े मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा।
0: श्री सिरसा ने कहा कि चौपालों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि खयाला गांव में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन, बड़ी सीवर लाइन और सड़कों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन सड़कों और सर्विस लेन का भी पुनर्निर्माण कर रही है जिन पर पिछले 20 से 25 वर्षों में काम नहीं हुआ था।
5: जो सड़कें आज तक आपने बनती नहीं देखी थी, चाहे हनुमान मंदिर के सामने सूरज की लाइट डालने हो या पश्चिम घाट की तरफ जो नाले की तरफ सड़क निकलती है, ये कभी बनी नहीं थी। हमने आकर पिछली बार भी उसके काम शुरू किए। अब गांव के अंदर सारे नाले की बड़ी सड़कें नाले डालने का, सारे गांव के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज डालने का काम चल रहा है और इसी तरह पीने की पानी और सीवेज की लाइनें डालने का काम चल रहा है। हमारे इलाके के अंदर जितनी चौपालें हैं और जितने कम्युनिटी सेंटर हैं सबको अपग्रेड करने का काम चल रहा है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा, वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही ब्रिटानिया चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक किया जाएगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो रेल 10 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इससे पहले भी 8 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए थे, जिससे अब कुल 18 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 अतिरिक्त फेरे और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक 8 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। NCRTC ने कहा कि इससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम होगा और सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2,90,000 कार्ड वय वंदना योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
3: इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की नगद रहित स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार इसके तहत अब तक 46,900 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपचार में अब तक 86,22,00,000 रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा हुआ है। योजना के तहत राजधानी के 233 अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है।

0: में 181 निजी और 52 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हीट वेव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोकनायक अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 14 विशेष बिस्तर और 70 बिस्तर का डिजास्टर वार्ड तैयार किया गया है। अस्पतालों में ORS, कूलिंग पैड और आपात सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
1: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज दक्षिणी जोन के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम की संयुक्त टीम ने PWD और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सड़कों तथा फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे, प्लेटफार्म और ठेलों को JCB मशीनों की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और पार्कों की दीवारों के आसपास किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर लगभग 9,58,000 रूपये की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 ग्राम वजन के 4 सोने के सिक्के भी बरामद किए। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों को उन्नत साइबर प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में किया गया। पुलिस के अनुसार इस साझेदारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, साइबर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य भर्ती तकनीकों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को न्यू उस्मानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिस पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दिन के समय बादल छाये रहने की संभावना है, शाम और रात के समय हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। कल अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु, जो केंद्रित है कोविड-19 के दौरान जन जागरूकता और सही जानकारी के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए के वार्ष्णेय और उनसे बातचीत कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। सन्नाटा, बंद दरवाजे, खामोश सड़कें और हर चेहरे पर एक अनजाना डर। समय था वर्ष 2020 का, जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी के सामने खड़ी थी जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। हर दिन आती खबरें, बढ़ते आंकड़े और मन में उठता एक ही सवाल, अब क्या होगा। उस कठिन दौर में जब लोग अपने घरों में कैद थे, जब अपनों से दूरियां ही सुरक्षा बन गई थी, तब एक आवाज

0: आवाज लगातार लोगों तक पहुंच रही थी। विश्वास की आवाज, साहस की आवाज, वो आवाज थी आकाशवाणी की आवाज। आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार नहीं सुनाए बल्कि डर के अंधेरे में उम्मीद का दीप भी जलाया। कभी डॉक्टर्स की सलाह हो, कभी कोरोना से जुड़ी अफवाहों को दूर करना हो, तो कभी अकेले पड़े लोगों को ये एहसास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला जैसे विशेष कार्यक्रमों ने देश के गांव गांव शहर शहर तक सही जानकारी पहुंचाई। लोग सीधे विशेषज्ञों से जुड़े, सवाल पूछे, समाधान पाए और फिर भरोसा भी हासिल किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम याद करेंगे उस दौर को जब रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का साथी बन गया था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, जब कोविड का आगाज हुआ और सबसे पहले ये चीन के वुहान में ब्रेक हुआ था और जनवरी 2020 में पहला मामला भारत में आया और उस समय ऐसा लगा पूरे देशवासियों को जैसे जैसे दिन आगे बीतते चले गए कि अब समस्या गंभीर होने वाली है। लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और फिर मीडिया में इसको लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी और आकाशवाणी ने भी समाचारों के माध्यम से और फिर कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर जानकारी दी। उस समय आप आरएमएल में थे, किस तरीके से देखते हैं उस माहौल को, कैसे याद करेंगे पहले?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मेनली शुरू तो 20 में हुआ था, लेकिन इसका नाम हमने कोविड-19 क्यों रखा, क्योंकि जो फर्स्ट केस था वो 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में रिपोर्ट हुआ, जो कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 दिन के बाद बताया कि भाई ये सार्स कोरोना वायरस 2 है। पहले सार्स कोरोना वायरस 1 हुआ था, लेकिन उसमें म्यूटेशन चेंज हो गए और ये नोवेल वायरस है। नोवेल का मतलब है फर्स्ट टाइम ही अब ये वायरस इस जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ आया और ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस था। इसका इतना था कि अगर आप किसी पेशेंट के नजदीक आ गए और उसको खांसी, जुकाम, बुखार इसके मुख्य सिम्टम थे, तो 100% जो है वो ट्रांसमिशन था। तो बहुत ही कम समय में लगभग पूरे संसार के सारे देशों में ये वायरस फैल गया। तो लोग पैनिक में आ गए कि भाई ये कोई अलग डिजीज है। उससे पहले डॉक्टरों को भी नहीं पता था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। जैसा आपने ठीक कहा कि हमारे देश में जो सबसे पहले केस हुआ वो 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट हुए, जो वुहान से ही हमारे 3 केरल के स्टूडेंट थे, वो जब लौटे तो वो वहां से इन्फेक्शन लेके आए और उन्होंने वहां पे जो है इन्फेक्शन करा। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये कुछ सीरियस हो रहा है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया, तो सरकार ने पूरे देश में ही लॉकडाउन की स्थिति ला दी।
0: 18 मार्च 2020 को कोरोना को लेकर एक विशेष पहल की गई आकाशवाणी की तरफ से। आकाशवाणी समाचार की अवधि बढ़ाई गई, पहले 15 मिनट के मुख्य समाचार होते थे जो 3 मेजर बुलेटिन हैं, उनकी अवधि बढ़ाकर आधे घंटे की गई और फिर कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से कोरोना जागरूकता श्रृंखला, जो रात को 9:30 बजे का कार्यक्रम आता था, वो 18 मार्च 2020 से शुरू किया गया। आपने उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के तौर पर लोगों को जन जागरूकता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उस दौर को आप कैसे याद करते हैं जब लोगों में भ्रम की स्थिति थी, डर की स्थिति थी, घर की चौखट ही लक्ष्मण रेखा बन गई थी, तो आकाशवाणी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जो कोरोना जागरूकता सीरीज जो आपने शुरू करी, रोज ही ये प्रोग्राम रात को 9:30 बजे जो आता था और ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, जैसे ओपन प्रोग्राम था, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है सवाल पूछ सकता था, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा था, तो रोज नई जानकारी आ रही थी, डॉक्टरों के पास भी जानकारी आ रही थी, जो साइंटिस्ट हमारे दे रहे थे, पब्लिक को भी हम उसी तरीके से जो है वो जानकारी आगे ट्रांसमिट करते थे। और रेडियो जो है शुरू से ही विश्वास का एक माध्यम रहा है और इसकी रीच हर जगह तक है। पूरे हमारे इतने बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ के करीब का कंट्री है, सब जगह टेलीविजन की रीच भी नहीं है और माध्यम की भी रीच नहीं है, पर रेडियो हर जगह है, शुरू से ही सुना जाता है। और जिस तरीके से हम देखते थे कि जो हमारे श्रोता थे वो बड़ी दूर दूर से सवाल पूछते थे, तो ये उनका इंटरेस्ट दिखाता था और सब तरीके के सवाल पूछते थे, क्योंकि वो जो डर बैठा हुआ था उसको भी उनको दूर करना था या कोई जागरूकता थी, तो हर तरीके का सवाल था कि भाई

0: कैसे हम इससे बचें बीमारी से, क्या क्या सुरक्षा के उपाय करें, कैसे बीमारी का इलाज हो सकता है या क्या सावधानियां करनी, तो ये सवाल बहुत आए और इसमें मैं समझता हूं कि जो ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही।
1: उस समय सरकार भी बीच बीच में दिशा निर्देश जारी करती थी, चाहे देश के नागरिकों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, सैनिटाइजर को लेकर हो, मास्क पहनने को लेकर हो या फिर बाजार में जाने को लेकर हो। जब ये दिशा निर्देश आते थे तो बतौर प्रोफेसर, बतौर आरएमएल में एक वरिष्ठ चिकित्सक के नाते, आप कैसे सोचते थे कि कैसे इस जानकारी को हम श्रोताओं तक पहुंचाएं?
0: हाँ देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो जो पीपीई किट पे जैसा आया, तो ये तो देखिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थे जो हमेशा पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे हैं। तो बहुत से लोग पूछते थे हम पीपीई किट पहने, तो हमने कहा भाई ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन मास्क जरूर था, क्योंकि ये जब तक सारे विश्व से जानकारी आ चुकी थी कि जो हमारा N95 मास्क है वो लगभग 95% वायरस को रोक सकता है, लेकिन चूंकि वो महंगा था तो बहुत से श्रोता ये थे कि भाई हम फिर N95 अगर नहीं अफोर्ड कर सकते या कई जगह वो मिलते भी नहीं थे तो फिर कौन से मास्क पहने। तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होते थे जो कि लगभग 70% उस वायरस को रोकने में मदद करते थे। कई जगह जैसे रूरल में था कि भाई वो इतने अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, मास्क भी नहीं मिल पा रहे थे, तो सिंपल कॉटन के मास्क थे तो वो भी जो है लगभग 50% के करीब बीमारी को रोकते थे। तो यही जो जागरूकता लोगों को हम लोगों ने दी कि भाई जो भी मास्क अगर आप अफोर्ड कर सकते तो N95 कर लें, नहीं तो कोई भी मास्क पहने। काफी देखिए रिसर्च हुई और ये देखा गया कि अगर जो है बिना मास्क के दो व्यक्ति मिलते हैं और एक को भी इन्फेक्शन है तो दूसरे को लगभग 100% इन्फेक्शन होने की संभावना है, लेकिन अगर एक व्यक्ति मास्क पहन लेता खासतौर से जिसको बीमारी है और दूसरा नहीं पहनता तो उसका इन्फेक्शन रेट जो है कम से कम जो है 25% कम हो जाता है। अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहन लेते हैं तो इन्फेक्शन रेट 75% गिर जाता है, और अगर N95 पहन लेते हैं तो वो 95% से कम गिर जाता है, लेकिन कोई सा भी मास्क जो है वो आपको प्रिवेंट करेगा। फिर मास्क के बारे में भी भ्रांतियां थी, क्योंकि मास्क गीले हो जाते थे, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, सैनिटाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, एल्कोहल बेस्ड बहुत सी चीजें थी कि भाई उनसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं, या एल्कोहल टाइप के बहुत से हमारे सैनिटाइजर थे कि उससे हम अपने हाथ को साफ कर सकते हैं अगर साबुन कहीं पे नहीं मिलता। वैसे तो साबुन सबसे अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई जगह अगर नहीं है या मार्केट में आप जा रहे हैं आपको लगता है किसी इन्फेक्टेड चीज के कॉमन में आ गए तो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध थे, लोग उससे करते थे, उससे वायरस मर जाता था। तो ये जानकारियां देने में, और चूंकि ये जानकारियां रोज नई नई आती थी, क्योंकि देखिए एक साथ तो ये रिसर्च हो नहीं सकती कि कौन सा मास्क वायरस रोक लेगा, कितना रोक लेगा, तो अल्टीमेटली ये था कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो दूरी बना के रखिए। सबसे बड़ा यही मैसेज उस समय का था कि भाई पॉसिबल हो तो दूरी बना के रहिए, मतलब आइसोलेशन जिसको हम बोलते हैं। घर में तो आइसोलेशन हो नहीं सकता इतना आसान, लेकिन घर में भी ये था कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो वो अगर हमारे पास सुविधा है तो उसको अलग कमरे में रख दें, उसका वॉशरूम अलग हो, उसको भोजन वगैरह या दवाई वगैरह बाहर से ही दे दें, और वो मास्क जरूर पहन ले, बाकी लोग भी पहन सके तो अच्छी बात है। और समाज में भी ये था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उसके लिए पहले तो लॉकडाउन ही कर दिया, लॉकडाउन का पर्पज ही यही था कि भाई एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सारा ट्रेवल बंद कर दिया, सारी ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, और उसका फायदा भी हुआ, उससे जो इन्फेक्शन था उसकी स्प्रेड रेट काफी कम हो गया, और लोगों में फिर डर तो रहता है क्योंकि देखिए हर आदमी अपना घर भी नहीं बैठ सकता, उसकी रोजी रोटी भी रहती थी, तो उनको फिर यही कहा गया कि किस तरीके की आप जो है अपनी सुरक्षा के उपाय करके और किस तरीके से आप आ सकते।
1: उस समय डॉक्टर वार्ष ने ऐसा कहा जाए कि सूचनाओं की बाढ़ सी भी आ गई थी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें पोस्ट हो रही थी कि अगर आप ये काढ़ा पी लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, इस तरह के मास्क पहनने से नहीं होगा, या फिर छूने से कोरोना आपको हो जाएगा, आपके घर में कोई है तो उसे दूरी बनाकर रखें, एक तरीके से एक अकेलापन भी मरीजों में आ रहा था। आपको क्या लगता है आकाशवाणी ने इन सोशल मीडिया पर जो भ्रामक विज्ञापन चले या जिन्हें मिथक भी हम कह सकते हैं, इन मिथकों को तोड़ने में कितनी अहम भूमिका निभाई?
0: नहीं, बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि देखिए आपने सारे विशेषज्ञों को बुलाया जो अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ थे, जो साइंटिस्ट थे, मेडिकल साइंटिस्ट थे, रिसर्च वाले थे, और उनको जो भी जानकारी मिलती थी वो साइंटिफिक जानकारी होती और उसके जरिए हम देते थे, तो ये जो इस तरीके की जो बहुत सी भ्रांतियां थी उनको तोड़ने में हमें मदद मिली। क्योंकि कई बार लोग हमने देखा कि अखबार भी जो है छूने से डर रहे थे, दूध के पैकेट भी है उनको भी छूने से डर रहे थे, फल कोई बाजार से लाए कि पता नहीं हमको इससे भी ना इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं होता। इन्फेक्शन हमेशा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस था, ये इन्फेक्शन हमेशा जब ही होगा जिसको कोरोना है, और जब वो खांसता है छींकता है तो ये वायरस के जो पार्टिकल है उसके थूक में या खांसी में बाहर आते हैं और ये उसको इन्फेक्टेड करते हैं। तो अगर ये एस सच नहीं है तो एक दूसरे को छूने से या पास में रहने से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, जो व्यक्ति बीमार है उसको जरूर हम कहते थे कि भाई आइसोलेट कर दें, जो सबसे बढ़िया सुरक्षा का उपाय था। और सरकार की भी यही गाइडलाइन थी कि अगर किसी को भी कोरोना जैसे सिम्टम हो रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको टेस्ट करा लेना चाहिए तुरंत। और सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई हुई थी सारे सरकारी अस्पतालों में, बाकी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध थी। और उसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत ही अपने को आइसोलेट कर दे, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो काफी व्यक्तियों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस तरीके की जो साइंटिफिक हमने नॉलेज दी और जो भ्रांतियों को तोड़ा, इसमें मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का सबसे बड़ा योगदान।
1: और जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे श्रोता जो हैं वो फोन कॉल के जरिए सवाल पूछते थे, जो उनका डर था, जो उनका भ्रम था, बाहर निकलें कि ना निकलें, किससे मिले किससे ना मिले, क्योंकि रोजी रोजगार भी एक ऐसा विषय था जिसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता था। आपको क्या लगता है, जब इस तरीके से इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ हो रहा था, विशेषज्ञों के साथ हो रहा था, उससे भी भरोसा बढ़ा, आकाशवाणी ने उसमें भी अहम भूमिका निभाई?
0: हाँ, देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि एक मोनोलॉग होता है। अगर मैंने एक बात सिर्फ आपको कह दी तो आपके मन में हो सकता है कोई जिज्ञासा हो वो दूर नहीं हो पाती, लेकिन जो डायलॉग होता है, जैसे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लाइव पूछ रहे हैं, उसी समय उसके मन में कोई सवाल आया और उसी समय हमने उसका तुरंत जवाब दिया, तो हमेशा जो डायलॉग में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। बीच में जैसे एक क्वेरी के साथ मान लीजिए मैंने एक जवाब दिया, उसके मन में एक दूसरी क्वेरी भी है, उसका भी उसी समय जवाब मिल गया, तो उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कोरोना जागरूकता प्रोग्राम है इससे शायद बढ़िया जो है नेशनल लेवल का प्रोग्राम कोई सा भी नहीं था।
1: फिर बीच में कई सारे कोरोना की लहर भी आई, पहली लहर उतनी ज्यादा मारक नहीं थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई जो डेल्टा की लहर थी, उसमें मौत के मामले काफी देखे गए, पूरी दुनिया में देखे गए और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा, लेकिन सरकारी प्रयासों ने बहुत हद तक उन आंकड़ों को कम करने में और लोगों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहां आकाशवाणी ने कई सारे प्रयास किए, लोगों के साथ मैसेज भी किए, बातचीत भी किए, व्हाट्सएप पर भी सवाल मंगाते थे कि अगर आपकी कोई समस्या हो। उस समय जो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव था और जागरूकता के नजरिए से देखें तो कितनी अहम भूमिका आप मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक अस्पताल में उस स्थिति में थे जहां बहुत सारे दबाव आपको झेलने पड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि शुरू में तो इस तरीके का जब वायरस आया तो वो हल्का था, उसकी स्ट्रेन थी वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा कर रही थी गले के और ये, लेकिन जब एक साल के बाद जो है मार्च 21 में जो वायरस था वो म्यूटेशन कर चुका था और वो डेल्टा वायरस था, इसी का नाम हमने डेल्टा रखा, और वो इतना हाईली इन्फेक्टेड भी था, प्लस उसने निमोनिया कर दिया, और निमोनिया के करने से जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो उसमें भर्ती सबको करना पड़ा, तो उस समय बिस्तरों की उपलब्धता बहुत कम हो गई, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज पड़ने लगी, और दवाइयां भी पता नहीं थी कि कौन सी दवा काम करेगी, तो जो भी नई नई रिसर्च आती थी सब करते थे, लेकिन कोई भी दवा 100% इफेक्टिव नहीं हो रही थी, तो लोगों में बहुत ही ज्यादा डर फैला होता, और डर इस बात का भी था कि जैसे किसी को पॉजिटिव हो गया, थोड़ी भी सांस फूल ली तो वो ये चाहता था कि मेरे को भर्ती कर दिया जाए जिससे कि मैं सुरक्षित जगह पहुंच जाऊं, पर इतने बिस्तर तो थे नहीं, हमारा इतना बड़ा देश था, तो उसमें जो एश्योरेंस देना था कि भाई किस स्टेज पे जो है आप अपने घर में जो है पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ले लें, उस समय ये चल गए थे ऑक्सीजन नापने के यंत्र, तो उससे अपने ऑक्सीजन नापते रहे और बुखार को नापते रहे, अगर आपका ऑक्सीजन जो है गिरता है 95 से नीचे आ जाता है या 90 नीचे तो फिर तुरंत भर्ती करें, अगर उस बीच में रहता है तो आपको हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, तो उससे लोगों का पैनिक कम हो गया, और सरकार ने कहीं हेल्पलाइन भी कर दी जिसमें पेशेंट अपने घर से ही जो है अपनी बात के बुखार कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है वो करता था, तो उससे एश्योरेंस मिलता रहता था, और इस तरीके के एश्योरेंस में आपका भी जो प्रोग्राम था जागरूकता प्रोग्राम, इसने बहुत ज्यादा मदद करी, और हम काफी मरीजों को ये एश्योरेंस दे पाए कि सबको भर्ती होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश बहुत बड़ा देश है, इतने बेड कहीं सडनली उपलब्ध नहीं हो पाते, तो उन लोगों को जरूर बेड मिल जाए जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और जिनको हम ऑक्सीजन से या और सुविधाओं से बचा सके, लेकिन चूंकि पैनिक में बहुत से लोग जो इतने गंभीर नहीं है वो भी भर्ती होना चाहते हैं, तो उस चीज को रोकने में कि भाई आपको इतनी तुरंत आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके के जो जागरूकता प्रोग्राम है उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की।
1: जब घर में कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग उसकी केयर के लिए आ जाते हैं, उसको साथ देते हैं, चाहे शारीरिक उसकी सेवा करते हैं या फिर

0: साथ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी पहन के कर रहे हैं जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं होता, और एक दूसरे एनवायरमेंट में कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने प्रियजन से मिलना चाहते हैं तो आपको वो पीपी किट या सब चीज तो उपलब्ध नहीं कराई जा सकती सब जगह, तो आपको इन्फेक्शन होने का। तो एक घर में अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसके चार प्रियजन मिले तो पता लगा चारों के चारों व्यक्ति दो। तो ये चीज समझाने में और आपका ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा मददगार रहा। और उस समय देखिए कई ऐसी परिस्थितियां आ गई जो पहले कभी किसी ने सुनी नहीं। इनफैक्ट कई बार जो है मृत्यु होने पर उनको एक अलग तरीके के जो है उसमें पैक करके बॉडी को सीधा शमशान गृह तक पहुंचाया जाता था और किसी को भी उससे नहीं मिलने दिया जाता था, न उनके अटेंडेंट को न किसी को, और उसको जिससे कि वायरस किसी को भी न फैल जाए। तो ये बहुत ही अजीब तरीके की स्थिति थी, लेकिन इसमें उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या पूरे देश में इसी तरीके का हो रहा है तो ये मैसेज समाचार पहुंचाने के लिए कि ये उनके अपने हित के लिए, तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली जितने भी आपके माध्यम है, आपका ऑल इंडिया रेडियो तो बहुत बड़ा रीच रहा, अखबारों के माध्यम से भी, टेलीविजन के हर माध्यम से यही कोशिश दी गई कि भाई ये कुछ अलग ही तरीके की परिस्थिति है और इसको अलग तरीके से ही जूझना पड़ेगा।
1: उसके बाद एक दौर आया जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। WHO ने कहा कि वैक्सीन को लेकर दुनिया के कुछ देशों में काम चल रहा है, इस पे टेस्टिंग भी चल रही है, तीन चरणों में टेस्टिंग की जा रही है, पहले जानवरों पर, उसके बाद कुछ स्वयंसेवकों को आगे किया गया कि जो लोग स्वेच्छा से इसकी टेस्टिंग कराना चाहते हैं। उस समय भी एक बड़ा भ्रम का दौर आया कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन सही है नहीं है, इस भ्रम को दूर करने में बतौर विशेषज्ञ किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा था तो ये चीज जो साइंटिस्ट कम्युनिटी उनको समझ में आ गया कि इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है और इससे बचने का तरीका कि हम जल्दी से कोई वैक्सीन डेवलप करना। लेकिन वैक्सीन डेवलप करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है साइंस में, लेकिन इस कोरोना में बहुत तेजी से वैक्सीन डेवलप हुई और कई जगह जैसे फेज 3 ट्रायल होती है उसके बाद ही हम अप्रूवल करते हैं। तो खासतौर से जैसे हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन थी, कोवैक्सीन थी, उसकी फेज 3 ट्रायल भी नहीं हुई पर उसको इमरजेंसी जो है अप्रूवल दिया गया। दूसरी वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड थी, उसके 3 ट्रायल आ चुके थे और उसको दिया। और उससे जो है 16 जनवरी 2021 से सबसे पहले हमारे देश में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन लोगों को डर था, उनको पता है पूरी जांचें हुई नहीं है, वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये डर उनका जेन्युइन था। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई जो वैक्सीन है शुरू में वो 1 करोड़ जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट मेन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबसे पहले हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। इसके 2 बातें हुई, एक तो ये होता है कि हेल्थ वर्कर सबसे ज्यादा रोज ही चूंकि उनको पेशेंट के कांटेक्ट में रहना, तो ना चाहते हुए उनके इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो सकता, और दूसरे ये है कि लोगों में ये भ्रांति दूर करने में कि भाई जो खुद मरीजों की सेवा कर रहे हैं जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं तो इसके मतलब ये सुरक्षित है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई, सारे उन्हें मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर थे, एम्स में सबसे पहले शुरू हुई, हमारे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू हुई और भी सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई, और सबसे पहले डॉक्टरों ने और हेल्थ वर्कर ने लगाई। और उसमें रोज लिस्ट आती थी सरकार की तरफ से कि भाई इन इन लोगों को आज लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता कम थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सबसे पहले बैचों में आके जो है वो वैक्सीन लगवाई, उससे ये मैसेज गया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसको सबको लगवाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो डर बैठा हुआ था कि वैक्सीन हम ना लगवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से और बीमारी हो जाए, हमें कोरोना वैक्सीन लगवाने से हो जाए या हमारी हालत और खराब हो जाए या और कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए, तो वो भ्रांति दूर करने में काफी मदद मिली। और इसमें डेफिनेटली जो ऑल इंडिया रेडियो का जो आपका जागरूकता सीरीज थी उसने बहुत ज्यादा मदद की।
1: वैक्सीन को लेकर यह भी था कि वैक्सीन लगवाने के 2-3 दिनों तक आपको माइल्ड फीवर भी आ सकता है, कुछ लोग उससे भी डर रहे थे, और कुछ तबका यह भी कह रहा था कि जो लोग हार्ट की समस्याओं से परेशान है, किडनी की समस्याओं से परेशान है, उनकी स्थिति और खराब भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले आपके भी प्रकाश में आए होंगे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए ये भ्रांतियां पहले भी नहीं, ये वैक्सीन नहीं है, ये उससे पहले कई और वैक्सीन भी रही, उनमें भी जो है ये भ्रांतियां एक समाज में रही कि हम पोलियो की वैक्सीन ना लगवाएं, कि हम और वैक्सीन ना लगवाएं, कहीं इससे हमारे को ये खासतौर से जो फर्टिलिटी का इशू है, ये बड़ा इमोशनल इशू है, लोगों में ये गलत जागरूकता है कि वैक्सीन लगवाने से हमारी फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है या हमको और सीरियस बीमारियां हो सकती है। प्लस देखिए जैसे वैक्सीन का होता है, ये जब भी वैक्सीन होती है तो 100% सुरक्षित नहीं होती।

0: जब तक होती है। पुरानी भी कई वैक्सीन है उनमें भी जो है 10 लाख में एक आध केस ऐसा होता है जिसमें हमारे नर्व अफेक्टेड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तो लोग उसी चीज से डर जाते हैं, अरे देखो एक तो हो गया ना 10 लाख में तो। लेकिन जब यही एश्योरेंस दिया कि भाई ज्यादातर केस में सिर्फ आपको हल्का सा जहां पे इंजेक्शन लगा वहां आपको दर्द हो सकता है, 24 घंटे या 48 घंटे तक आपको शरीर में दर्द हो सकता है या बुखार हो सकता है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर जैसे जैसे इसकी जानकारी बढ़ गई, देखिए जब लाखों लोगों को वैक्सीन लग गई और चूंकि उसकी रोज रिपोर्टिंग होती थी, डेली जो है उसकी ये होती थी कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है अगर उनको कोई भी सिम्टम हो रहे हैं तो उसको रिपोर्ट करें, मतलब केवल सिंपल इवन बुखार भी है, शरीर में दर्द है, उसको भी रिपोर्ट करें। तो जब ये रिपोर्टिंग से धीरे धीरे हो गया कि किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। शुरू में रेसिस्टेंस था लेकिन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर लोगों ने जो सेकेंड डोज भी लगनी थी वो भी काफी लोगों ने लगवा ली, पहले जो है फर्स्ट डोज से भी हिचक रहे थे, फिर काफी लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली, फिर सेकेंड डोज भी जो है बूस्टर जिसको हम बोल रहे थे वो आपको लगना था, सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन का लगना था और 4 महीने के बाद जो है ऑक्सफोर्ड का जो कोविशील्ड का लगना था, तो वो शुरू में डरे हुए थे लेकिन बाद में वो भी लगवा ली। तो ये सब भ्रांतियां दूर करने में या लोगों को मदद करने में या उनके मन से जो डर को हटाने में ये जो जागरूकता सीरीज है, क्योंकि रोज ही जब इस तरीके के प्रोग्राम जाते थे, रोज नए नए डाटा आते थे, तो उससे लोगों में जो है भय की स्थिति कम होती चली गई और वो आगे आके जो है वैक्सीनेशन कराने लगे।
1: लगभग 500 से ज्यादा कार्यक्रम और आकाशवाणी समाचारों की अलग अलग पहल से कोशिश की आकाशवाणी ने कि लोगों को जागरूकता पहुंचाई जा सके, सही जानकारी दी जा सके। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आकाशवाणी की हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम लोगों की भ्रांतियों को दूर करें। कोरोना से जुड़ी एक भ्रांति अभी भी डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के जहन में है कि हमने वैक्सीन लगवाई थी इसलिए अब हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हमने वैक्सीन लगाई थी इसलिए माइग्रेन हो गया, उससे पहले तो हम ठीक थे, वैक्सीन लगाने के बाद ही ये समस्या हो गई। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे इस तरह की समस्याओं को लेकर या इस तरह की मनस्थिति को लेकर, क्या कहेंगे आप?
0: हाँ देखिए, बिल्कुल ये भ्रम रहा काफी दिनों तक और अभी भी बीच बीच में हमारे समाज में चलता रहता है या मीडिया में आता रहता है, लेकिन इस पर फिर काफी रिसर्च की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रिसर्च करी, हमारे यहाँ आर एन इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च हुई और ये पाया गया कि किसी तरीके से कोविड की वजह से ना तो हार्ट की बीमारियां बढ़ी ना ही किसी और तरीके की बीमारियां बढ़ी, बल्कि कोविड की वजह से लाखों लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है कि देखिए जो कोविशील्ड थी उसमें कुछ केसेस जरूर रिपोर्ट हुए कि यहाँ पे क्लॉटिंग हुई, जो कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कहा था कि रेयर एक्सेप्शन है कि कुछ लोगों में क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्रेन में क्लॉटिंग वगैरह हो गई थी, पर वो जैसे 10 लाख में एक केस या उस तरीके का था, तो वो हर वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है। फॉर्चुनेटली कोवैक्सीन जो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन थी उसके साथ कोई भी जो है ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ।
1: जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक कोरोना हुआ, बहुत कमजोर भी हो गए, बहुत तरह की समस्याओं में भी आ गए, जो ये कार्यक्रम अभी हमारा सुन रहे हैं उनकी ओर से ये सवाल कि जो लोग बहुत लंबे समय से कोरोना से परेशान रहे हैं, क्या उनको भविष्य में किसी तरह की और स्वास्थ्य समस्याओं का डर है, हिचक है, क्या ध्यान रखें?
0: सही बात है कि देखिए जिन लोगों को पहले से काफी बीमारियां थी, जैसे किसी को डायबिटीज की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, लंग्स की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी, उन लोगों में जब कोविड हुआ तो वो सीरियस हुआ और वो हॉस्पिटलाइज हुए। अनफॉर्चुनेटली करीब 1.5-2% लोगों की डेथ भी हो गई और जो उसमें बच गए वो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने आईसीयू में रहे और वो वहां का जो अनुभव है वो बहुत ही जो है दुखदायी होता है। उससे बढ़ गए तो वो डर हमेशा बना रहता है उनके घर में, प्लस वो क्रॉनिक बीमारियों से वैसे भी जूझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ अब उनको मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप कुशल चिकित्सक के पास जाएं और उसका निदान करें, केवल अपने मन में वो उस दुविधा को ना रखें या ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जो आपको गलत तरीके की सूचना दे रहे हैं और उससे डर से अपनी मानसिक स्थिति को भी और शारीरिक स्थिति दोनों को भी खराब कर।
1: बहुत संक्षेप में आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना ने आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत छवि पेश करने में भी अहम भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल, देखिए कोरोना सबसे बड़ा था कि जहां हमने वैक्सीन जो है अपनी इंडिजिनस वैक्सीन इतने कम समय में बनाई और कई देशों को एक्सपोर्ट भी की, क्योंकि जो कोविशील्ड भी थी वो भी रिसर्च तो टेक्नोलॉजी इंग्लैंड की थी लेकिन सबसे ज्यादा बनी हमारे यहाँ और हमने उसको बाद में एक्सपोर्ट भी किया। हालांकि जब वो शॉर्टेज हो गई थी तो उसको कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट रोकना पड़ा। तो ये हमारा जो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा था क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं बना पाते तो हमारे इतने 140 करोड़ के देश में बाहर से वैक्सीन लाना बहुत मुश्किल था।

0: क्योंकि जो बाहर की वैक्सीन थी, स्पुतनिक वैक्सीन थी, मॉडर्ना वैक्सीन थी या और थी, वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी और हमारा देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
1: कोरोना का वो दौर शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उस कठिन समय में हमने ये भी देखा कि सही जानकारी सही समय पर कितनी जिंदगियां बदल सकती है। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं दी बल्कि हौसला दिया, डर के बीच भरोसा जगाया और दूरी के दौर में लोगों को जोड़े रखा। डॉक्टर प्रोफेसर ए के वार्ष्णेय, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से हमारे श्रोताओं को एक बार फिर जागरूक किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफर सिर्फ प्रसारण का नहीं बल्कि विश्वास का इतिहास है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
2: अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु सुन रहे थे, जो केंद्रित था कोविड-19 के दौरान जन जागरूकता और सही जानकारी के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए के वार्ष्णेय और उनसे बातचीत कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और तुषार पाराशर, संयोजक थे प्रमोद कुमार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज

0: है। सबसे पहला जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप्स है उसमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.pdcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मेंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मेंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना दिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission.

से भर जाएंगे आप, शम में रिसालत है फैज आका हम आगीर है किस कदर, जब उठेगी सरे हश्र उनकी नजर। फैज आका हम आगीर है किस कदर,

حضرت سلطان مدینہ چشم کرم حضرت

یا شاہ مدینہ صلی علی، یا شاہ مدینہ صلی علی،

اب حد سے بڑھے ہیں رنج و الم، لو جلد خبر مختار امم، اب

जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों के सिवा कुछ पास नहीं। जीने की मुझे अब आस नहीं, अशकों

0: लहर जारी रहने का इम्कान जाहिर है। महकमे मौसमियात ने कल मशरिक मध्य प्रदेश और विदर्भ में शदीद गर्मी की लहर के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। कल दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी गर्मी की लहर चलने के हालात रहेंगे। म्यूनिख में मुनक्कदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ऐशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिन 50 पॉइंट्स में से 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल यह रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। ईशा ने फाइनल के दौरान शुरू से ही अपनी बरतरी बरकरार रखी और शानदार अंदाज में टाइटल अपने नाम किया। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किद होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रे आजम के एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन काउंसिल की मीटिंग एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई, जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रूपये से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि यह मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करती है। और असम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और वो इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात। पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स।
2: समय इंसान की सेहत को कायम रखने में पेट एक अहम रोल अदा करता है। इसके अंदर आंतों का गुच्छा हमारे निजाम हाजमे में एक अहम रोल अदा करता है। इस पेट के अंदर जरा भी इन्फेक्शन हो जाए और अगर हम उस पर तवज्जो ना दें तो ये जख्म बन जाता है, जिसे हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। आइए देखें कि अल्सर कैसे पैदा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो समीन, आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद।
2: और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर पेट के अल्सर से हमारी मुराद क्या है, ये होता क्या है?
3: देखिए, जो पेट की हमारी भीतर की जो हिस्सा होता है उसमें एक झिल्ली होती है, म्यूकोसा होता है, लाइनिंग होती है
2: जी।
3: तो इस लाइनिंग में अगर किसी तरीके का व्यवधान आ जाए, जो ये स्मूथ लाइनिंग होती है, अगर इसमें कोई दरार आ जाती है, छेद सा हो जाता है, तो उसको हम जख्म या अल्सर, जैसे बाहर जख्म हो जाता है इसी तरीके से भीतर जख्म हो जाता है, तो उसको हम अल्सर बोलते हैं।
2: अच्छा, तो आखिर ये होता कैसे, क्यों हो जाता है?
3: इसी वजह से कि इसमें जो आपने कहा कि दो इसमें इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो खाना हमारा स्टमक या आमाशय में जाता है और उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। तो छोटी आंत का एक हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा है उसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ये अल्सर दो जगह ज्यादा होते हैं, एक तो आमाशय में होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं,
2: आमाशय
3: हिस्सा शुरू में जिसमें खाना पहले जाकर रुकता है और वहां पर शुरू का डाइजेशन होता है, और उसके बाद आंतों का जो पहला हिस्सा है उसको ड्यूडेनम अल्सर कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि जो हमारा खाना पचाने के लिए शरीर को एसिड की जरूरत पड़ती है, तो जो हमारा पेट का पेट है या आमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो काफी पावरफुल एसिड होता है, उसको सीक्रेट करता है डाइजेशन के लिए। इसके अलावा कुछ और एंजाइम होते हैं जो पेप्सिन होते हैं, उनको भी सीक्रेट करता है, जो कि हमारे फैट को जो मतलब बसा है या और कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन उनको पचाने के काम आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, लेकिन संतुलन जरूरी होता है। जब अगर हमारा इनका संतुलन बिगड़ जाता है,
2: बैलेंस जैसे
3: और ये बहुत ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होने शुरू हो जाते हैं, तो वो भीतर की जो झिल्ली होती है उसको ही गला देते हैं, वो गल जाती है तो फिर वो अल्सर बन जाता है।
2: जी जी,

0: इसमें जो आपने अभी ड्यूडिनम की बात की, एक अल्सर यहाँ हो गया, एक आंध्र गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तो इन दोनों में कुछ फर्क
1: होता है? जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है चूंकि शुरू में ही होता है
0: जी जी,
1: तो ये वाला अल्सर में जो दर्द होता है, जैसे अल्सर के जो मुख्य लक्षण होते हैं पेट में दर्द हो जाना, खाना खाते ही दर्द हो जाना, या कई बार दर्द नहीं होता तो भारीपन आ जाता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, कई बार ये दर्द पीछे कमर की तरफ भी चला जाता है
0: जी, ठीक है,
1: और कई बार पेशेंट को उल्टियां भी होनी शुरू हो जाती
0: हैं, सिम्टम है,
1: सिम्टम है
0: जी जी।
1: तो जब गैस्ट्रिक अल्सर में होता है कि जैसे ही मरीज खाना खाता है उसको दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शुरू का हिस्सा है, जैसे ही वहां खाना पहुंचा वैसे ही खाने को पचाने के लिए एसिड का सीक्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर जख्म ऑलरेडी पड़ा हुआ है और तो इसलिए वो तुरंत ही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन जो ड्यूओडेनम जैसे जो आंतों का पहला हिस्सा है वो चूंकि अभी दूर है, वहां खाना 2 घंटे के बाद पहुंचता है, तो उसका जो दर्द होता है वो 2 घंटे के बाद शुरू होता है खाना खाने के बाद, ठीक है ना। और जब खाना पच जाता है और अगर लंबे समय तक आप भूखे रहें तो फिर भी दर्द होना शुरू हो जाता है वहां पे, तो इसलिए उसको हम हंगर पेन भी बोलते हैं एक तरीके से, जब भूखे हो। हाँ, और कई बार जैसे जब खाना खाते हैं तो वो दर्द गायब हो जाता है, ये भी एक अल्सर के पेन का लक्षण होता है।
0: अच्छा,
1: तो ये तो लक्षण है, पर अगर हम इसको सही तरीके से पहचान करना चाहते हैं तो आजकल हमारे पास एंडोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हम पेट के मुंह के जरिए पेट में डाल देते हैं और ये एक फाइबर ऑप्टिक नली होती है जिसमें लेंस लगे होते हैं, तो जो भी डॉक्टर होता है वो लेंस से देख सकता है कि पेट के किस हिस्से में अल्सर है। एक तो हमें डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है, डायरेक्ट सीधा हम उसको देख सकते हैं कि इस जगह पे अल्सर है। इसके अलावा अगर अल्सर बहुत बड़े साइज का है या उसमें कई बार जैसे कोई ग्रोथ नजर आ रही है तो वहां से उसमें इंच बायोप्सी भी ले सकते हैं, जांच के लिए हम टुकड़ा भी ले सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: और आजकल जैसे पहले हम अल्सर को ये मानते थे कि भाई ज्यादा कॉफी पीना, चाय पीना, शराब पीना, ये इनकी वजह से अल्सर हो जाता है, लेकिन हमने अब ये देखा कि उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होता है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी कहते हैं, और लगभग ड्यूओडेनम के 99% लोगों में वो बैक्टीरिया पाया जाता है, और गैस्ट्रिक अल्सर में वो लगभग 70% मरीजों में, तो उस बैक्टीरिया को भी हम वहां से टेस्ट कर सकते हैं, उसको वहां से लेके कल्चर भी कर सकते हैं, कुछ उसकी जांच के लिए टेस्ट होते हैं, यूरिएज वगैरह टेस्ट होते हैं, वो हम टेस्ट करके ये बता सकते हैं कि ये बैक्टीरिया वहां पे मौजूद है या नहीं
0: जी जी।
1: तो ये स्थिति सर्जरी की बनती है। तीसरी चीज ये होती है जहां सर्जरी की जरूरत पड़ती है कि कई बार क्रॉनिक अल्सर है, धीरे धीरे करके लंबे समय तक चल रहा है और आपने पूरा इलाज नहीं करा, तो थोड़ा थोड़ा अल्सर जो है वो भरता चला जाता है, लेकिन जो नली होती है जो पेट हवा से लेके और ड्यूओडेनम के बीच में जो छेद होता है वो धीरे धीरे करके ब्लॉक होना शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो जिसको हम गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, तो जब वो ऑब्स्ट्रक्शन होने में क्या होता है तो मरीज का खाना आगे जाते ही, तो जब भी खाना खाता है वहीं रखा रहता है और उल्टियां होनी शुरू हो जाती है।
0: तो किस तरह का
1: जी, इसमें मिर्च मसाले वाले जैसे बहुत ज्यादा तले हुए चीजें
0: नहीं लेने चाहिए,
1: मिर्च मसाले वाली बहुत ज्यादा तेज है, शराब है, सिगरेट है, और दवाइयां जैसे मैंने अभी बताई पेन किलर दवाइयां, स्टेरॉयड, ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए।
2: सो आप सुन रहे थे हेल्थ टिप्स, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरुआत। सवेन अब पेश है अदबी नशिस्त के तहत तहकी और उसकी बुनियादी अनासिर मौजू पे ये गुफ्तगू। शुरुआत हजरात है डॉक्टर शहनाज अंजुम, प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद हुसैन, प्रोफेसर अब्दुलरहमान और मोहम्मद नुमान खान।
3: سامعین کرام، یہ ناچیز قاضی عبدالرحمٰن ہاشمی اس مذاکرے میں موجود ہمارے علاوہ 3 حضرات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہمارے اس مذاکرے میں پروفیسر شہناز انجم صاحبہ ہیں جو اس میں شرکت فرما رہی ہیں، پروفیسر شاہد حسین صاحب اور پروفیسر نعمان خان صاحب۔ آپ سبھی حضرات اپنے کاموں کی وجہ سے بے حد معروف اور جانے پہچانے دنیا ادب میں بہت سمجھے کہ اہمیت اپنی رکھتے ہیں اور جانے پہچانے لوگ ہیں۔ تاہم یہ میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز انجم اس وقت صدر شعبہ ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈپارٹمنٹ آف اردو کے، سید پروفیسر شاہد حسین صاحب جے این یو میں سینٹر آف انڈین لینگویجز کی صدارت کر چکے ہیں، وہاں پر آپ ماشاء اللہ آپ بھی اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے پروفیسر نعمان صاحب NCERT کے شعبہ اردو کے انچارج ہیں، وہاں پروفیسر ہیں۔

0: हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने फरमाया कि दोनों के बगैर मेयारी अदब की तख्लीक मुमकिन नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: न तो तहकीक के बगैर
1: मेयारी
0: अदब में भी जाहिर है।
2: डॉक्टर आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल
1: काम किया है नस्र पे, उर्दू नस्र पे अच्छा काम किया।
2: डॉक्टर साहब मैं भी यही अर्ज करना चाहती हूँ, प्रोफेसर शाहिद साहब और प्रोफेसर नोमान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि तहकीक और तनकीद दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है, बल्कि मेरा ख्याल ये होगा कि तहकीक तनकीद और तखलीक तीनों के रास्ते मुतवाजी हैं, साथ साथ चलते हैं तीनों और एक दूसरे पर असरअंदाज भी होते हैं ये लोग। तहकीक बहुत सब्र आजमा चीज है, बहुत मेहनत तलब काम है। तहकीक का मतलब ये होता है कि हम पुरानी चीजों को खोजें तलाश करें, और तनकीद का फर्ज ये है कि ईमानदाराना तरीके पर उसकी अच्छाई बुराई को वाज़े कर दे। लिहाजा हमारे यहाँ तहकीक के बगैर तनकीद मुमकिन नहीं है और किसी के यहाँ भी मुमकिन नहीं है,
0: किसी भी अदब में
2: मुमकिन नहीं है। तो हमारे यहाँ भी तहकीकी एतबार से बहुत पुराने जमाने से ये सिलसिला चला रहा है। हमारे यहाँ मौलवी अब्दुल हक साहब ने कितने मकतूतात तलाश किए सबरस का और दीगर चीजों के, और उन पर तहकीक की और मुकदमे लिखे उन पर, तो वो उनका तनकीदी अमल है कि जो उन्होंने उस नुस्खे की खूबियों और खामियों को।
1: मैं चाहता हूँ कि चूंकि तहकीक और तनकीद दोनों मौजूद बहस है इस वक्त, तो मुख्तसर हमें तनकीद की जो रवायत हमारे यहाँ रही है उस पर भी कुछ रोशनी डालनी चाहिए। चांद से जब हम हाली और शिबली से इसका आगाज करते हैं तो वो मरहला वो है कि जब हमारे यहाँ एक तरह का डिडैक्टिक जो है वो अमल शुरू हुआ, यानी उस पर जो अखलाकियात है वो बहुत हावी है। आप जानते हैं कि हाली में जो उनकी सिफारशात हैं नकदों के लिए, नकदों के लिए
2: जी डॉक्टर साहब करना चाहती हूँ मैं भी कि आपका फरमाना दुरुस्त है, हाली और शिबली के बगैर हम तनकीद का तसव्वुर नहीं करते, गरचे तस्करों में तनकीदी असरात हमें मिलते हैं और इसके अलावा आब हयात हमारे पास मौजूद है जिसमें तनकीद भी है,
1: तफसील में
2: वहाँ नहीं जा रहे हम। लेकिन शिबली ने हमारे यहाँ मशरिकी तनकीद को फरोग दिया और हाली मगरबी तनकीद से मुतासिर थे और उन्होंने उन उसूलों की पैरवी भी की है और मुकदमा शेर व शायरी में उसके लिहाज से,
1: लेकिन उनकी वगैरह कुछ लिमिटेशन भी थी।
2: जी लिमिटेशन कुछ मजबूरियाँ भी थी।
0: शिबली ने इसी वजह से जमालियाती पहलू पर ज्यादा
2: जोर दिया
1: है। एक पहलू तो ये हो गया, एक तनाजुर तो ये हो गया, एक स्टेज ये थी। उसके बाद आप देखते हैं कि एक नए दौर में उर्दू तनकीद या तहकीक दाखिल होती है और वो है तरक्की पसंद और
2: छत्तीस।
1: हालांकि 15 में उनका इंतकाल हुआ था हाल ही का, और जाहिर है कि उसके बाद 36 और 15 के दरमियान काफी वक्फा है, तो बीच में बहुत सी तनकीद जो है लिखी गई, लेकिन वो भी क्लासिक की तनकीद है हमारी।
3: जी जी।
1: और उसमें जो अहम नाम है वो कलीमुद्दीन अहमद का हो सकता है, आर मसूर का हो सकता है, सीनियर लोगों में। लेकिन यह है कि अब उसके बाद जो तरक्की पसंद दौर शुरू होता है उसमें जो मुमताज नाम है उन सब से आप सारी दुनिया वाकिफ है, सैयद शाम हुसैन साहब और हमारे समझिए के
0: लेकिन
3: कड़ी जो है न्याज फतेहपुरी मजनू और मेहदी इफादी
2: बिल्कुल
3: कड़ियां हैं,
0: लेकिन
3: उनकी वजह से जो सिलसिला चला है। जी
0: नहीं, बहुत से नाकदीन है और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इस दरमियान बहुत से
3: नाम है।
0: जी बहुत से लोग आए, लेकिन कलीमुद्दीन अहमद ने जो ये कह दिया कि उर्दू में तनकीद माशूक की महबूब कमर की तरह है,
3: उनके मुताबिक
0: इसके बारे में क्या कहते हैं?
3: नहीं, उनके मुताबिक तो ये बात भी तो कही गई कि वो तो अंग्रेजी की एनक से उर्दू अदब को
2: परखते हैं,
3: तो जाहिर इंसाफ कैसे हो सकेगा? उर्दू अपने उर्दू का एक मिजाज है,
1: मैं रहा था कि तनकीद जो तरक्की पसंद दौर में जो तनकीद सामने आई उसमें मुमताज हुसैन मोहम्मद हसन साहब का बड़ा, लेकिन यह है कि वो बाकायदा जो प्रोफेशनल है कि जो हमारे लिखने वाले हैं,
0: लेकिन तरक्की पसंद तनकीद का नजरिया बिल्कुल बदल गया,
3: बिल्कुल
0: इसलिए कि वो अदब की अफादियत पे जोर देने लगा।
1: यही बात न समाजी 36 में जो तरक्की पसंद दौर शुरू हुआ उसमें

0: सब चीजें सब लोगों के सामने भी हैं कि कौन कैसी रिसर्च कर रहा है, वैसे चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, लोगों को मालूम हो रहा है कि हमारा पहले क्या मेयार था और आज हम क्या कर रहे हैं और हमको आइंदा क्या करना होगा। तनकीद का सफर जारी है और तहकीक भी अपनी जगह पर हो रही है हमारी दानिशगाहों में, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो तरीक़ेकार है अच्छी रिसर्च कैसे की जाए, उसके लिए क्या क्या जतन करना पड़ता है, क्या क्या कुछ करने की जरूरत होती है, इसकी तरफ से थोड़ी हमारे नौजवानों में, हमारे स्कॉलर्स में गफलत भी है। तो शाह साहब आप कुछ फरमाएं कि क्या तरीका हो सकता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा संजीदगी के साथ इस बहुत मशक्कत आजमा वक्त काम को कर सकें लोग, इसके लिए आपके जहन में कोई तदबीर है, कोई तजवीज़ है?
1: देखिए असल में है क्या कि आजकल डिग्री हासिल करने के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं और उनके अंदर रिसर्च का मिजाज नहीं है उनका।
0: बहुत सही बात।
1: अच्छा पहले ये था कि वो लोग आते थे रिसर्च में जिनका मिजाज होता था तहकीक का, जो मेहनत शाख्ता कर सकते थे, बर्दाश्त कर सकते थे उसकी कुल्फतें, वो लोग आते थे मैदान में। अब हर एक आता है मैदान में, तो ये दोनों चीज रहेगी साथ साथ, मेयार कम रहेगा, लेकिन अब मसला ये है कि हम उसके उस मेयार को कैसे बढ़ाएं।
0: एक तो हमें
1: मौजू का इंतखाब करते हुए इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसे मौजूद को लें जिसमें रिसर्च की गुंजाइश है। बाज मौजूद ऐसे ले लिए जाते हैं जिसमें रिसर्च की गुंजाइश नहीं होती।
0: तो वो किसी और भी है डॉक्टर चंद्रंजन, कि हमारी दर्शगाहों में, हमारी दानिशगाहों में, शोभाजात में आज तनकीद की तरफ लोगों की रगबत ज्यादा है। हमारे असातिज़ा की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे असातिज़ा ज्यादातर तनकीदी मजामीन ज्यादा लिखते हैं, तनकीदी किताबें ज्यादा लिखते हैं, तहकीक की तरफ रुझान कम है। उसका सबब क्या है? हम असातिज़ा की बात कर रहे हैं, हम स्कॉलर्स की बात नहीं कर रहे।
2: बहुत आसान लफ्जों में अगर कहा जाए तो सस्ती शोहरत का जरिया बन जाती है तनकीद, लेकिन तहकीक सदर आजमा का
0: कोई इल्मी तकाजे नहीं है।
2: नहीं, तनकीद के इल्मी तकाजे हैं, लेकिन हमारे नक्काद जो हैं वो उन तकाजों को पूरा नहीं करते, ये हमें अफसोस है। और तहकीक के बगैर तनकीद मुमकिन नहीं है और तनकीद के बगैर तहकीक मुमकिन नहीं है। तो तहकीक की जो रफ्तार है, जैसा अभी शाहिद साहब ने फरमाया कि हम अच्छे मौजूद दें लोगों को मयार को ऊंचा करने के लिए, तो जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का इंतखाब करें पीएचडी के लिए खासतौर पर कि जिनके यहाँ तहकीक का मिजाज हो और जो तनकीदी शऊर भी हो जिनके।
0: मिसाल के तौर पर हमें देखिए कि हम जहाँ मिलिया में हमारे शोबे उर्दू में अहमद महफूज बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया है, मीर तकी मीर की कुल्लियात को मरतब किया है। इसी तरह से जफर अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है जिन्होंने अभी गालिब पर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये मेयार वो है जो हमारे माजी में लोगों ने कायम किया था, उसकी जाहिर की बाजगश्त होती है। लेकिन यह कि ऐसे मोटिवेटेड किस्म के असातिज़ा हमारी दर्शगाहों में कम होते जा रहे हैं, इसके मुकाबले में तनकीद लिखने वाले ज्यादा हैं। तो बैर नो, ये गुफ्तगू जो तनकीद तहकीक के रिश्ते पर यहाँ हम लोगों ने की, मेरे ख्याल में बहुत सर हासिल गुफ्तगू तो नहीं हो सकी और उसके तमाम इबादत जहाद को तो हम जाहिर के कवर नहीं कर सके मुख्तसर मुद्दत में, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस हद तक भी गुफ्तगू हमने की है और जितनी भी रोशनी आप सबने डाली है, वो उससे कुछ न कुछ नई बातें सामने आई। मैं आप तमाम हजरात का इस नहायत पुरनौस गुफ्तगू के लिए और कारामद गुफ्तगू के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ।
2: शुक्रिया।
3: आप सुन रहे थे अदबी नशिस्त प्रोग्राम के तहत ये मुज़ाकरा तहकीक और उसके बुनियादी अनासिर। शुरुआत हजरात थे प्रोफेसर अबुद रहमान, डॉक्टर शहनाज अंजुम, मोहम्मद नुमान खान और मोहम्मद शाहिद हुसैन। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शुरुआत फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामने की खिदमत में दुनिया की जानिब से पुरखलूस आदाब।

0: coming.
1: Sawin up तीसरी मंजिल फिल्म का ये दो गाने सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशु भोसले की आवाजों में। मिस्टर सुल्तानपुरी नवनिगार थे और मौसीकी तरतीब दी थी राहुल देव बर्मन ने। फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई थी। उनके नाम है इस तरह से किशोर नगर अमरावती के हिरामी शेंडे, शैला देवी शेंडे, सिद्धार्थ गोंडा ने। ताजमंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद हसनैन पवार। और इसके अलावा गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार की फरमाइश शामिल हूं। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, अनुषा सलमानी, बीबी आलिया और इनके घर में और बच्चे भी साथ में शामिल हैं। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शिवचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बट्टा बजाज। और ये फरमाइश हमें हर साल की है। रेलवे रोडगंज द्वारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमाबी गुमनाज, बीबी फातिमा गाजी, चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम, फरीदा बानो, रईसा खातून। फरमाइश इरसाल करने वालों के नाम और भी हैं, उनके नाम में शामिल करते हैं। और गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गुदारा, गंगा गुदारा और हिमांशु गुदारा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया और उनके साथ घर के कुछ और अफराद हैं। ये फरमाइश हमें इस साल की टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा ने। अहमदपुर के गांव खंडवा से कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली और वैदिका फूलमाली, साबना शोभान और रईसा खंडवा की तीनों बहुएं शामिल हुई है। और ये फरमाइश चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा जी की मौसूल हुई है। भटिंडा रोड मंडी डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग, मोहित नारंग। फरमाइश इस साल करते हैं तो उत्तम नगर दिल्ली से भोजराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश। जयराजपुर राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट।

निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक एआई की क्यादत वाली रियल टाइम पीडीएस मुस्तफिदीन का निजाम है। आशा एक कसीर लिसानी मसनूई जहानत का शिकायतों के अजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम एआई पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज़ के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा पीडीएस स्कीम की जगह नहीं लेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहद बंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस सिंह में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मौसर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि यह इकदाम पीडीएस के तहत फरामी लॉजिस्टिक्स और नकल हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मौसर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी न होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी साथ लेकर जाएं। गर्मी के बायस रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुंबे के अफराद और अजीज और अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्हें ज्यादा मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं। उन्हें तीसरे पैर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकोनियों में छतों पर दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। जनाब मोदी ने उन लोगों की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों और दुकानों के बाहर घरों में पानी भरकर रखते हैं ताकि कोई भी उनमें से पानी पी सके। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर आमा दीदी बाहिनी नामी खवातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ खवातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर खवातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद खवातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदा और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की सातवीं तकसीम इस्नाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमूई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर को 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। रियासत में यकसा सिविल कोड बिल के तहत रियासत के सभी बाशिंदों के लिए शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप से मुतालिक मामलों में यकसा सिविल कानून फ्रेमवर्क कायम किया गया है। दर्ज फहरिस्त जातों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि आईनी तहफ्फुज और रिवायती तौर तरीकों को बरकरार रखा जा सके। इस बिल के तहत सिर्फ एक शादी की इजाजत होगी और लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। चीफ मुजाकरात कार की क्यादत में एक अमरीकी वफद अगले महीने की पहली से चौथी तारीख के दरमियान भारत का दौरा करेगा। ये दौरा बाजार तक रिसाई, नॉन टैरिफ इकदाम जैसे मुतादद शोबों पर वसी तर दो तरफा तजारती माहदे के तहत मुजाकरात को आगे बढ़ाने पर मरकूज है। तजारत और सनत की वजारत ने कहा कि यह दौरा भारत और अमरीका के दरमियान अबूरी माहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए तजवीज किया गया है। इससे कबल भारत और अमरीका ने इस साल फरवरी में एक मुश्तरका बयान जारी किया था, जिसमें बाहमी तौर पर फायदेमंद तजारत के हवाले से एक अबूरी माहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया गया था।

0: एमडीएफ में मुनाकिदा आईएसएसएफ वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिन 50 पॉइंट्स में से 45 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। ईशा ने फाइनल के दौरान शुरू से ही अपनी बरतरी बरकरार रखी और शानदार अंदाज में टाइटल अपने नाम किया। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा वर्ष मुनक्द होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्द होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम के एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन की मीटिंग एशियाई अंडर 20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्द हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रूपये से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वसी और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है। वो इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। और भारत 2027 एशियन रिलेज और 2028 एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स की मेजबानी करेगा। इसी के साथ बरसगीर की खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ये समय पेश है फराशिफिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे।

सामीन, कुंडली फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे, शबीर कुमार का गाया हुआ। हमारे यार आनंद बख्शी और मौसीकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सामीन, इस नगमे की ख्वाहिश करने वालों के नाम मैं बताऊं, इससे पहले मैं आप कोई गोश गुजार कर दूं कि चूंकि ये हमारा प्रोग्राम सदाबहार और पुराने फिल्मी नगमों की फरमाइशी का होता है, चूंकि हज का एक खसूसी मौका है आज और हमारे प्रोग्राम सुनने वालों की यह फरमाइश थी, इस मौके पर इस नगमे को आपके समातों तक पहुंचाया। लेकिन आगे ख्याल क्या करें और पुराने ही नगमे हमें फरमाइश के लिए भेजा करें। समीन, इस नगमे की फरमाइश इस तरह है, निजामाबाद तेलंगाना से हमें वही रुमानी डॉक्टर मोहम्मद समीर और मोहम्मद फसी और इसके अलावा इस नगमे को सुनना चाहे। गोरेगांव फिल्म सिटी मुंबई से मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख। नरेश्वर नगर नरवेल विदर्भ से पी एस नाहौकर, निर्मला नाहौकर और सोपान ताड़े की फरमाइश। अरुण कुमार शर्मा, रेणुदेवी शर्मा, राहुल कुमार शर्मा और इनके अहले खाना। सरलाही सोकनाहा नेपाल से इस फिल्म जयहार नजफगढ़ से शाहरुख।

0: سامعین سلام، که ساعت فرمایش ببینید خبر مبنی پروگرام تامل شاد ختم ہوتا ہے. آکاشوانی آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی اشریا. لیسا میں نے پیش پروگرام سرخیوں میں
1: नमस्कार. सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है. मैं हूं निखिल कुमार और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णयों पर. हमारे साथ जुड़ी हैं लक्ष्मी देवी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं. लक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: लक्ष्मी, सार्थक पीडीएस योजना को दो अलग अलग योजनाओं को मिलाकर के एक तरह से अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कह सकते हैं कि इसे केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है उसमें एक बड़े सुधार की तरह लाए जाने की कोशिश की गई है. तो इससे जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय है और जो भी जवाबदेही होती है, जो भी व्यवस्था होती है, उस पर कैसा असर पड़ेगा?
2: इस स्कीम में जो मेन जो कंपोनेंट है, जो स्टेट एजेंसीज जो ग्रांट वितरण करने में लगे हैं, उसमें जो उनको दिक्कत आती थी वो जो कॉस्ट लगती थी, जो एक स्टेट से जैसे सेंटर से स्टेट तक जाता है फिर ग्रांट, वहां से फर्दर डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन और पीडीएस या राशन शॉप तक पहुंचाने का काम हर एक स्टेट का जवाबदारी है. वहां पे उनको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, अभी उससे वो उठा नहीं पा रहे थे. इस स्कीम के तहत वो वाला जो कॉस्ट, जो भी सपोर्ट है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इससे उनका थोड़ा सा पीडीएस में जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाएगा. और दूसरी इश्यू है जो डीलर्स का है. डीलर्स का जो रेमुनरेशन बहुत सालों से स्टैटिक था एंड वो अभी थोड़ा सा बढ़ेगा. इससे क्या है कि डीलर्स को भी वो स्टॉक्स चलाने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा एंड वो इंटरेस्ट के साथ ये काम करेंगे. और तीसरा है वो जो टेक्नोलॉजी है. ये तीन जो है, जो ऑप्शन है, उससे जो स्टेट और सेंटर का जो समन्वय से जो काम होना है उसमें और भी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ेगा.
1: आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री ने इस बारे में और क्या कहा है.
3: आज की कैबिनेट में एक ऐसा फैसला लिया गया है जो कि देश के 80 करोड़ नागरिकों को प्रभावित करता है. आप सब जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी फूड

0: सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है। फूड सिक्योरिटी से जुड़े जो विषय है उन सबके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने वाली जो व्यवस्था है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है, वो है सार्थक पीडीएस स्कीम। सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य में एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फोर पॉइंट शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बेयर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स है उन फेयर प्राइस शॉप्स में डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: अभी केंद्र सरकार ने इस सार्थक पीडीएस के अगले 5 वर्षों में लगभग 25,530 करोड़ रुपए के बड़े परिव्यय की मंजूरी दे दी है, तो इस राशि को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से काम करना होगा?
2: इसके लिए जो वेल्थ एंड बेनिफिशियरी डेटाबेस है जो निर्मल प्लेटफॉर्म के तहत ऑलरेडी है, इससे क्या है कि जो राइटफुल बेनिफिशरीज है और जो राइटफुल बेनिफिशियरीज है वो वीड आउट हो जाएगा, उसको निकाल देंगे। उस पैसे को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, इसमें एआई का और टेक्नोलॉजी का यूज किया गया ताकि वो पैसे सही तरीके से इस्तेमाल हो। एंड जो इरेगुलरिटीज जो होते थे पैटर्न को वो डिटेक्ट करना और उस डुप्लीकेट बेनिफिशरीज जो होते थे वो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम से ये सब वो डिटेक्ट होगा, तो इससे क्या है कि हमारा जो सब्सिडी है उसमें भी बचत होगी। और ये जो 25,000 है वो ज्यादातर हमें कमीशन जो डीलर्स के लिए जाएगा, जो स्टेट जो कॉस्ट उठा नहीं पा रहे तो उसमें ज्यादातर के खर्चा वो जो रेगुलर है, बट बड़ा जो सेविंग्स होगा जो ये डुप्लीकेट बेनिफिशरीज के लिए और इरेगुलरिटीज जो होता था उससे थोड़ा सा हमारा सब्सिडी जो खर्चा होता है जो इम्प्लीमेंटेशन में उसमें बचत होगी।
1: बिल्कुल, अभी आपने रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की, एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की भी बात की है सार्थक पीडीएस के तहत, तो नई तरह की प्रक्रिया एक अपनाई जा रही है जिसमें शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी और इसे पारदर्शी बनाया जाएगा। आइए सुनते हैं इस बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा।
0: 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए एआई की टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा, इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। तीसरा है सक्षम, इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे, हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, पीडीएस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यह टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाए।
1: लक्ष्मी जी, इस योजना में हम देख रहे हैं कि एआई, मशीन लर्निंग, एनएलपी और ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। अगर एक आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम समझने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वास्तव में बदलाव लाने का प्रयास करेंगी, जिसमें फर्जी लाभार्थियों की बात होती है, डुप्लीकेट राशन कार्ड की बात होती है या फिर खाद्यान्न लीकेज पर भी काफी चर्चा होती है।
2: देखिए, ये जो ग्रीवेंसेस है, जो भी कंप्लेंट्स है कंज्यूमर्स का और स्पेशली बेनिफिशरीज का, जो आशा एआई असिस्टेंट है, ये जो मल्टीलिंगुअल एआई ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो बेनिफिशरीज कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉट्स भी है, इसके तहत वो जो भी कंप्लेन है उससे वो फास्टर रेजोल्यूशन होगा और वो मल्टीलिंगुअल है, कोई भी लैंग्वेज में वो बेनिफिशरी वहां पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि इससे क्या होगा कि सिटीजन का जो बेनिफिशरीज का जो कंप्लेंट्स है, जो एनएलपी टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को प्रोसेस करके कैसे वो रिजॉल्व करे, इससे क्या है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी होगा इससे बेनिफिशरीज को, हाँ उनका जो कंप्लेंट्स है वो कोई समझ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है, उस लेवल के जो राशन जो लेते हैं वो बेनिफिशरीज है, ज्यादातर अलग ही सेगमेंट के कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो उनके लिए कई बार खाली लिखित में देना मुश्किल हो जाता है, वो कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप में वो वॉइस चैट भी कर सकते हैं, तो इस तरह का कंप्लेंट्स बहुत ही अच्छे से फास्टर वे में वो एड्रेस हो सकता है।
1: तरह की जब खाद्यान्न योजना की हम बात करते हैं तो हमेशा से सरकार सोच रही है कि लास्ट माइल डिलीवरी को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो देश के दूर दराज के निवासी हैं, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी या फिर जो भौगोलिक रूप से जो कठिन क्षेत्रों में रहते हैं उनके सामने अक्सर राशन की चुनौतियां आती हैं। तो इस मिशन में अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो अब जो सरकार ने एक अम्ब्रेला स्कीम तैयार की है, आपको क्या लगता है कि इसमें सफल होने के क्या क्या एलिमेंट्स हैं?
2: देखिए, चैलेंजेस ज्यादातर जो है रोड्स अच्छे नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिमोट एरियाज में इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से लास्ट माइल डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है। सो अभी क्या है कि ये जो डेटा इनएक्यूरेसीज और रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है और इसकी वजह से दिक्कत बहुत होता था कि वहां तक पहुंचाना। अभी जीपीएस टैग व्हीकल्स जो इस स्कीम के तहत होगा, रियल टाइम ट्रैकिंग होगा
1: जी,
2: यहाँ से अगर गाड़ी निकलेगी तो कहाँ पे वो स्टक है, रोड वहां पे लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पे रुका हुआ है, तो पता यू कैन मॉनिटर जीपीएस टैग व्हीकल्स कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे चोरी हो रही है, उस तरह का। और रूट ऑप्टिमाइजेशन भी यहाँ पे होगा, एआई एल्गोरिथम्स जो एआई यूज करके कौन सा रूट्स जो है बहुत एफिशिएंट है, जहां से ट्रैवल टाइम कम ले सकता है, तो वो वाला भी एल्गोरिथम के थ्रू वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो डिमांड पे फोकस कर सकते हैं कि कौन से सीजन में हम ज्यादातर लोगों का जो है ज्यादा ऑफटेक राशन में, कई बार लोग जल्दी ले लेते हैं पहले हफ्ते में क्योंकि वो उनका टाइम स्पैन होता है एक महीने में राशन, कभी भी आप महीने के स्टार्टिंग में उठा सकते हो या आखिर में भी उठा सकते, कई बार त्योहार के टाइम पे वो फर्स्ट वीक में उठा सकते, कई बार डीलर के पास उतना स्टॉक नहीं होता उसकी वजह से भी बेनिफिशरीज को टाइम से मिलना मुश्किल होता। तो टेक्नोलॉजी के वजह से वो डिमांड भी फोकस कर सकते हैं कि कौन से वीक या कौन से महीने में स्टॉक सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के वजह से प्री स्टॉकिंग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा है कि वो जो बैग के ऊपर क्यूआर कोडेड की वजह से वो टाइम पर कोई कर ही नहीं सकते, जो जिस सरप्राइज शॉप को जो राशन शॉप के लिए जाना है वो वहां पे पता चल जाता है कि ये वाला क्यूआर कोडेड कौन से राशन की दुकान में पहुंचा है और वो ट्रैक भी कर सकते हैं। और रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है ना वेयरहाउस से लेके राशन शॉप की दुकान तक एवरी स्टेप जो डिजिटली कहाँ पे गया, कहाँ पे रुका, कहीं पे दिक्कत हुई, सब कुछ वो ट्रैक कर सकते।
1: लक्ष्मी जी, सरकार का ये भी कहना है कि ये योजना एनएफएसए के तहत लगभग 81.35 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासनिक और वित्तीय दोनों ही दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इस बारे में केंद्रीय मंत्री क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
0: पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई होंगे, दूसरा सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, तीसरा किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपरली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूविंग रादर मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स विल रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-50%। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग हो और कार्बन एमिशन बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशन विल रिड्यूस 35%। ये सारे इसमें बेनिफिट।
1: लक्ष्मी जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार सीडिंग और ईपीओएस मशीनों के माध्यम से काफी सुधार हमें देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ तकनीकी बाधाएं भी सामने आई हैं और उन्हीं को दूर करने के लिए सार्थक पीडीएस की बात की गई। और इसमें हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते तो इंटर ऑपरेबल और सिटीजन सेंट्रिक पीडीएस ढांचे की बात की जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद इस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
2: वन नेशन वन राशन कार्ड ये बहुत इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, तो ये अच्छा है कि कहीं पे भी अगर आप जाए वहां पे आपको राशन उतारना चाहिए और उतारने का वो एक प्रोसेस भी होना चाहिए। सो अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से अगर आप कोई बॉम्बे जाते हैं वहां पे अगर राशन अगर लेना चाहते हैं तो वहां पे आप ले सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन अभी है विच इज गुड। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स है जो एक ही राशन होगा और कहीं वो ले सकते हैं।
1: जी लक्ष्मी जी, अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के हम देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई समस्याएं रही जिनमें भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका एक लंबे समय तक देखी गई, जिसकी वजह से इतने सारे बदलाव किए गए। आज जो बदलाव हम देखते हैं तो ये पारदर्शिता को काफी हद तक बढ़ा चुके हैं, सरकार को इसमें काफी सफलता भी मिली है। आगे की जो राह है उसमें और भी समस्याएं

0: प्रॉब्लम ना हो वो और भी अच्छे से काम करें, ताकि और कहीं कहीं पर जो शिकायतें आती हैं उनको दूर किया जा सके। तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि सरकार अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल हुई है?
1: हाँ, इस सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन इतना क्लोजली मॉनिटर करते हैं, अगर कोई भी अगर पॉलिसी डिजाइन करते हैं सोच समझ के करते हैं। और जहां तक मैंने पीडीएस इतने सालों से मैंने ट्रैक किया है
0: जी।
1: और जितना जो इनएलिजिबल बेनिफिशरीज को जो अचीव किया है वो वहां से लेके और इवन वेयर हाउस मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन है, एक के बाद एक बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड मुझे लगता है कि अभी ये जो एक ही स्कीम के अंदर जो ये दो कंपोनेंट्स को लाने के बाद टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, इससे और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और सब्सिडी भी कम होगा सरकार के लिए और बेनिफिशरीज को टाइम से उनका राशन मिलेगा और कुछ भी दिक्कत हो तो टाइम से उसका रेजोल्यूशन भी होगा। ये पूरा सिस्टम को पेपरलेस और डिजिटली मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन को बढ़ावा देगा।
0: जी लक्ष्मी जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा मैं। लक्ष्मी जी, सार्थक पीडीएस को वर्ष 2031 तक लागू रखने की योजना है, तो यदि इस योजना की सफलता को हम पीछे के वर्षों से मापना चाहें तो आपको क्या लगता है कि इस योजना ने किस तरह के बदलाव हमारे देश में लाए हैं?
1: देखिए, इसमें तो डीएलएफ का तो रोल है ही इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहले कुछ सपोर्ट नहीं था, अभी सपोर्ट थोड़ा बहुत मार्जिन देते थे, अब बेहतर देने से वो एक अच्छा बदलाव देगा, वो उनको भी प्रेरित करेगा कि उनका काम जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन के काम है वो अपना लगा के वो इम्प्लीमेंट करे। और दूसरा जो स्टेट कॉस्ट इनकर था वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन
0: जी। लक्ष्मी देवी जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मेरे तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजिए पेश है कव्वालियां, अहमद खान कव्वाल और हम नवाओं से आइए सुनते हैं नातिया कव्वाली।

नवीन पंडित रमेश प्रेम का विचित्र वीणा पर बजाया राग रागेश्वरिया सुन रहे थे। इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी का प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत। एग्जाम में पेश है सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिरी शब्द।

तो इन सुधार फिल्मी नगमों के इस प्रोग्राम में आप फिल्मी नगमे सुन रहे हैं। आपने सुशीला फिल्म का नगमा सुना था, तलत महमूद का गाया हुआ। उसके बाद ये बॉम्बे है फिल्म का नगमा सुनवाया आपको गीता दत्त की आवाज में। तलत महमूद को आपने फिर एक बार और सुना तराना फिल्म में, और सुरैया का नगमा आपने शान फिल्म का सुना। अभी आप सुन रहे थे शर्त फिल्म का ये नगमा हेमंत कुमार की आवाज में। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में आपको सुनवाते हैं आबरू फिल्म का नगमा, आवाज मुकेश की।

जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर देकर कहा कि वो अपने कुंबे के अफराद और अजीज व अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्हें ज्यादा मकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं। उन्हें तीसरे पैर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकोनियों में छतों पर दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। आसाम कानून साज असेंबली ने कल यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दी है, जिसके बाद आसाम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड आसाम बिल 2026 को पीर को 16वें आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने कल इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी। रियासत में यकसा सिविल कोड बिल के तहत रियासत के सभी बाशिंदों के लिए शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप से मुतालिक मामलों में यकसा सिविल कानून फ्रेमवर्क कायम किया गया है। दर्ज फहरिस्त जातों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है ताकि आईनी तहफ्फुज और रिवायती तौर तरीकों को बरकरार रखा जा सके। इस बिल के तहत सिर्फ एक शादी की इजाजत होगी और लड़कों के लिए शादी की कानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल होगी। बिल की मंजूरी के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस बिल को अब आसाम के गवर्नर के पास भेजा जाएगा और फिर उसके बाद मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया की मंजूरी के फौरन बाद रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका क्याम अमल में आया है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की क्यादत के तहत बीजेपी की क्यादत वाली रियासती सरकारें हर शहरी के लिए यकसा कवानीन बना रही हैं। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नई ख्वाहिशात का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह मुकद्दस सफर तमाम इंसानियत के माबेन मोहब्बत, हम आहंगे और इत्तेहाद के इकदार को मजीद मुस्तहकम करेगा। चीफ मुजाकरात कार की क्यादत में एक अमरीकी वफद अगले महीने की पहली तारीख से चौथी तारीख के दरमियान भारत का दौरा करेगा। यह दौरा बाजार तक रसाई, नॉन टैरिफ इकदाम जैसे मुतादद शोबों पर वसी तर दोतरफा तजारती मुआहदे के तहत मुजाकरात को आगे बढ़ाने पर मरकूज है। तजारत और सनअत की वजारत ने कहा कि यह दौरा भारत और अमरीका के दरमियान अबूरी मुआहदे की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए तजवीज किया गया। म्यूनिख में मुनक़िदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने मुमकिन 50 पॉइंट्स में से 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल यह रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बर्स मुनाकिद होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनाकिद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रआजम के एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रूपये से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है। वो इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। चीफ मुजाकरात कार की क्यादत में एक अमरीकी वफद अगले महीने की पहली तारीख से चौथी तारीख के दरमियान भारत का दौरा करेगा। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया और भारत 2027 एशियन रिलेज और 2028 एशियन इंडोर चैंपियनशिप्स की मेजबानी करेगा। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।

0: میرا کشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، شب کا ایک بجا چاہتا ہے. اردو سروس کی آج کی تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے. کل صبح 9:30 پر پہلی مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لے دیجئے اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
1: समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है. इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी.
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बात बढ़ाई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में. और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं. दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए. नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है. रिपोर्ट.
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी. फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है. इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है. समाचार कक्ष से वैष्णवी.
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है. पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया.
4: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है. राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है.
1: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है. पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है. मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी. पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है. अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है. इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री

ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 1:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें आप सुनेंगे गोल्डन एरा के वो गाने जो आज भी हमारे और आपके दिलों पर राज करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं, अब समाचार होंगे। पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाए। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यता को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसमें नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिनेक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोनोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila.

को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, न सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थका

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बात बढ़ाई है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाढ़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जेनेक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका सीडीसी ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य जीआई टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period with an outlay of 25,530 crore rupees, a central share.

तो अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम गीत और गजल, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। चार बजकर 15 सेकेंड हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तिरुनयना संबंधार की रचना पेडी अदान से।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं आए सुनते हैं नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के कार्यक्रम में। आप सुनेंगे अनन्या वेंकटेशन का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। सुबह के 4:53 हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं, आपको बताते हैं प्रोग्राम समरी, कौन कौन से वो कार्यक्रम है जो आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप जानेंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन के बारे में। 5:20 पर देशभक्ति फिल्मों से गीत सुनेंगे आप। 5:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरंजनी में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का राग भैरव में ध्रुपद गायन। 6:10 पर भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना, और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ। 6:55 पर आपके लिए लेकर आएंगे संस्कृत में समाचार, और 7:10 पर होगा कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और सुबह 8:00 समाचार प्रभात। 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे, और 8:30 पर आप उर्दू में समाचार सुनेंगे। 8:45 पर सुर गंगा शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, राकेश पाठक का राग शुभ सारंग में गायन होगा। 9:15 पर कार्यक्रम होगा उद्योग पत्रिका, और 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और जिसमें आप सुनेंगे आज डिजिटल इंडिया योजना सरबजीत सिंह के साथ, और लोकगीत होंगे यही आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5:00 को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਭੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਟਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਾਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਾਪਿਆ ਵੰਡ ਛਗਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਦਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਥਮਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ

जगपते गर्द की पाद पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान राहत दान बबेक दान वसाहा दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इस्नान चौंकिया झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुर धामा दे जिन्ना तो पंथ नू वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार तैसे बासंबार दादान खालसा जी नू बगसो हे नमानिया देवान लतानिया देतान ओटिया दियोटा तन तन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहिब जी विखे तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जियो जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करा प्रसार भेटा कीता गया है तिन्हां दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जियो सबत साध संगत नू अपने दरों करो सिखी सदक भरोसा नाम दान बगसना सोभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कराह प्रसादी देगा हाजर है दर प्रवान होवा प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बगसो सुख होवा नाम चित आवे सुख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

तगन इंद्री तगन नारी पलके थुक पवैन पड़ी तगन पैरी तगन हथी तगन जहवा तगन अखी वे तगा आपे वतै वतागे अवरा कतै ले पाड़ करे वे आओ कद कागल।

बड़ी साहब है दयाल कृपा करे ताई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए सी हुक्म मनया हुआ प्रवान तक उसमे काम हल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंगा सो फल पाई सी तांदर के पैदा जाय सी तांदर के पैदा जाय सी कोई गावे रग नादी बेदी भाव बात कर नहीं हर हर बिजय राम राम।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गो बर्तरण ना जाए। तोटी टिक्का तेज माली तान मले शाखाए। अंतर पूजा पड़कते बास संजम तुड़का पाए। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला।
1: मानस खड़े करे निवास श्री वगैरह तीन गल पाग तीन घर ब्राह्मण पूरे नाथ।
0: उना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कुड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा प्रभु।
1: मथे टिक्का तेड़ धोती कखाई हाथ श्री जग कसाई। नील वस्त्र पैर प्रवान मिले।

0: श्लोक महला पहला जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे वडिया है हाथ दलाल के मस्ती है करे नानक अगे स्व मिले जे खटे काले दे महला पहला
1: जो जोर से नावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित हो एक सुचे इना यकिया बहन जे पिंडा तोए सुचे से नानका जिन मन

0: सूत तक रखिए सूत पवैर सो नानक सूत के ना उतरे ज्ञान करे तो ये महला पहला मन का सूतक लोभ है देवा सूतक को अखी सूतक वेखना पात्र परतन रूप कन्नी सूत कन्न पहला इत बारी खाए नानक हंसाए आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाड़े आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितों जग संभाए नानक जनी गुरमुख बुझिया ना सूतक नाए पौड़ी सतगुरु वड्डा का सलाही है
1: जिस विच वड्डियां वड्डियां आईयां सह मिले तां नदरियां आईयां जात